0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और इस सुहानी सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, नई सुबह अपने साथ लेकर आई है नई उमंग, नए विचार और ढेर सारी यादें। नमस्कार, लखनऊ के इस खूबसूरत सफर में हम हैं आपके साथ आज के सफर को और भी खास बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सफर की। सबसे पहले देश और दुनिया की हलचलों पर डाल लेते हैं एक नजर। प्रातः के 6 बजने को है, तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ देश विदेश में समाचारों के माध्यम से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर

0: और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज सुनिए तिल की उन्नत कृषि तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर राम कुमार सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ के मौसम में तिलहन उत्पादन में जहां तिल की खेती करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप कृषि निदेशक डॉक्टर आर के सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। ये बताएं कि जहां तिल की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
4: किसान भाइयों सभी को मेरा नमस्कार। आप जानते हैं कि तिल की खेती हम लोग जो है खरीफ में करते हैं और तिल तिलहनी फसलों में एक प्रमुख स्थान रखती है। तिल की खेती को कैसे अच्छे तरह से किया जाए और कैसे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जाए, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और

0: आप जानते हैं कि तिल की खेती मिलवा के रूप में भी होती है और तिल की खेती शुद्ध फसल के रूप में
1: यानी
0: भी होती
1: फर्दा भी
0: है।
1: हो सकती है।
0: जी,
1: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिससे अच्छी पैदावार किसान भाइयों बहनों को मिले?
0: तिल उत्पादन में हम सभी जानते हैं कि प्रजातियों का बहुत ही योगदान होता है। जो प्रदेश के लिए संस्तुत प्रजातियां हैं उसमें टाइप 4 ये प्रजाति है, 90 से 100 दिन की, 40 से 42% इसमें तेल पाया जाता है और 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसके उत्पादन होता है। मैदानी क्षेत्रों के लिए संस्तुत की गई है। दूसरी प्रजाति है टाइप 12, ये 85 से 90 दिन की वैरायटी है, 5 से 6 क्विंटल उत्पादन होता है 1 हेक्टेयर में, मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए संस्तुत है। तीसरी प्रजाति है टाइप 13, ये 90 से 95 दिन की प्रजाति ये भी है और 6 से 7 क्विंटल देती है, ये बुंदेलखंड के लिए मुख्यतः जो है संस्तुत की गई है। टाइप 78 एक प्रजाति है, 80 से 85 दिन में होती है, 6 से 8 क्विंटल उत्पादन देता है और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ये इसकी बुआई की जाती है। इसी प्रकार शेखर है, इसकी 80 से 85 दिन की ये भी प्रजाति है, 6 से 8 क्विंटल उत्पादन देती है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत है। अगली प्रजाति है प्रगति, ये 80 से 85 दिन की ये भी प्रजाति है,
1: जी
0: 40 से 48% इसमें तेल होता है, 7 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है।
1: यानी 2.5 एकड़ में।
0: हाँ, और ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत की गई है। एक प्रजाति है तरुण, ये भी 80 से 85 दिन की प्रजाति है, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है, 8 से 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और पूरे प्रदेश के लिए जो है संस्तुत है।
1: और तेल की मात्रा भी अधिक है।
0: हाँ, तेल की मात्रा 50 से 52% है इसकी। RT 351 एक प्रजाति है, ये 50 से 52% इसमें तेल है, 80 से 85 दिन की प्रजाति है और इसकी उत्पादकता 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, यानी कि 4 क्विंटल प्रति एकड़ तक जो है उत्पादन दे सकती है।
1: जी
0: दूसरी प्रजाति है RT 346, ये 80 से 90 दिन की प्रजाति है, 52% इसमें तेल होता है, 9 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका भी उत्पादन है। एक गुजरात तिल 6 करके है, ये 87-88 दिन की प्रजाति है और ये 9 से 10 क्विंटल इसका उत्पादन है प्रति
1: प्रति
0: हेक्टेयर
1: हेक्टेयर
0: के।
1: यानी ढाई
0: हाँ
1: एकड़ में।
0: हाँ
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे तिल उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या कृषि निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 7905699045, 7905699045, 790-56-99-045।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का तिल उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाइयों को तिल के लिए अच्छे उत्पादन के लिए बुआई 15 से 20 जुलाई तक अवश्य कर दें। पानी निकास की उसमें समुचित व्यवस्था रहना चाहिए। बुआई के 15 से 20 दिन बाद बिरलीकरण अवश्य कर दें और 8 किलोग्राम गंधक या 80 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ की दर से अवश्य प्रयोग करें, इससे अच्छा उत्पादन होगा।
1: डॉक्टर आरके सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और तिल उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तिल की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे राम कुमार सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। इसी के साथ अब कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में, आइए सुने आज का सुविचार समर्पण।
3: समर्पण जिसे कहते हैं वो सर्वतो भावेन ईश्वर के समक्ष अपनी अहम वृत्ति को सौंपकर मुक्त भाव से एवं सच्चे हृदय से उसके कार्य को करने का सेवा विधान है। समर्पण में कुचेष्टा नहीं होती और जो होता है वो ईश्वर के समक्ष ही होता है, उसे ही बुद्धि अर्पित करके होता है।

0: ऐसा समर्पण जहाँ होगा वहां पर भीतरी आनंद और संतोषपूर्ण उल्लास की कभी कमी नहीं होगी। मन अविचल भाव से ईश्वर की अंतर्नाद को सुनेगा तथा चेतना फिर कभी विभ्रमित नहीं हो सकेगी। इसे ही समर्पण कहते हैं। पूजा या उपचार वाला समर्पण नहीं, येन केन प्रकारेण ईश्वर के समक्ष माथा टेक देने वाला समर्पण भी नहीं, तथा उसे अपने व्यवहार में ना उतार मात्र बाह्य गतिविधियों तक सीमित रखने वाला समर्पण भी नहीं। ईश्वर मिलता है हृदय की तीव्र उत्कंठा द्वारा, उसे प्रत्येक कार्य का आधार बनाकर जीवन जीने से। ईश्वर के बिना कुछ घटित ना हो सके ऐसी प्रबल धारणा बनाकर तथा उस अनुसार कार्य करने से समर्पण होता है। हमारी संपूर्ण चेतना ईश्वर को समर्पित हो सके इसके लिए अंतस की श्रद्धा पर एक दृढ़ विश्वास चाहिए। बिना रुके आगे बढ़ने की नीति, ईश्वर से सामीप्य स्थापित कर उसे ही प्रबलतम वेग से पुकारने की नीति, उसके सिवाय अन्य किसी को ऊंचा स्थान न देने की नीति एवं कुछ भी आपकी मानसिक शांति तथा स्वभाव को प्रभावित न कर सके, उस ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मान उसी के दिशा निर्देशों पर चलने की नीति ही समर्पण की नीति है। उसी की निराकार भूमि को हृदय से स्वीकार, मत भावों को उसी को अर्पण कर तथा अनेकता में एकता के दर्शन करने से हम ईश्वर से एक रूप होते हैं। यही ईश्वर के प्रति समर्पण की वास्तविक परिभाषा है। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि यदि ईश्वर में समर्पण ही सब कुछ है तो उसे कैसे कार्यों में, प्रयोगों एवं अनुसंधानों में लगाया जाए। यहीं पर हम इस तथ्य से परिचित भी होते हैं कि अपनी वास्तविक चेतना पर एकाधिकार प्राप्त कर स्वयं को जागरूक एवं संवेदनशील बनाकर हम अपना तथा विश्व और समाज का कल्याण कर सकते हैं। इसे ही प्रतिभा का जागरण तथा उसे लोक मंगल की रीति नीति को क्रियान्वित करना कहेंगे। यही होता है अपने अंदर के ईश्वरीय तत्व को बाहर लाने से, उसे समाज और संसार की गतिविधियों में उचित निर्णय लेने तथा आदर्श दिशाक्रम प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने से। हमारी चेतना से जो उच्चतम कार्य हो सकता है वो आत्म परिष्कार का है, और यदि इस परिष्कृत चिंतन से हम लोक कल्याण के निमित्त कुछ भी करते हैं तो वो धर्म है। इसे ही चेतना का अधिकार कहेंगे तथा ये स्वयं की उज्ज्वल संभावना के दिग्दर्शन से ही आता है। यही वो क्रिया है जिसे करने के लिए मनुष्य को यहां भेजा गया है, ताकि वो ये समझ सके कि वो एक महान तत्व जिसे हम ईश्वर कहते हैं उसी का प्रतीक और उसी का प्रतिनिधि भी है। ईश्वरीयता यदि हर ओर से ओतप्रोत हो तो जीवन धन्य बन जाता है। चेतना का जागरण तब इस जगत के कल्याण में नियोजित होने लगता है। यही परम कल्याण का मार्ग है और ईश्वर समर्पण ही इसका मूल आधार है।
1: अभी आपने सुना आज का सुविचार समर्पण। वाचन स्वर था डॉक्टर शीबा राकेश का। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ। श्रोताओं, जीवन के सभी कष्टों और समस्याओं का समाधान हमें केवल ईश्वर की शरण में ही मिल सकता है, तो आइए हम भी चले ईश्वर की शरण में और करें उस परमपिता परमेश्वर की आराधना।

श्रोताओं सुप्रभात। कहते हैं कि भक्ति और संगीत का जब सुंदर संगम होता है तो मन अपने आप ही ईश्वरमय हो जाता है। कभी कभी संसार से दूरी ही आत्मा को अपने असली स्वरूप से मिलाती है, अर्थात संसार से विरक्ति ही आत्मा की सच्ची शांति बन जाती है और इसका एहसास हमें केवल ईश्वर की चरणों में पहुंचकर ही होता है। तो आइए तेरा मेरा तेरा के फेर से निकलकर हम भी चले ईश्वर की शरण में और

जब मन से मैं और मेरा का भाव मिटने लगता है, तभी ईश्वर से सच्चा मिलन संभव होता है। श्रोताओं, प्रेम ही वह सेतु है जो जीव को परमात्मा से जोड़ देता है, और यकीन मानिए, प्रेम ही वह सेतु है जो प्रभु को उनके भक्तों से भी जोड़ देता है।

श्रोताओं, जीवन की भागदौड़ में अगर कोई सबसे सरल और अमूल्य सहारा है तो वो है प्रभु नाम का स्मरण। कहते हैं ईश्वर का नाम जपने से मन को शांति और जीवन को नई दिशा मिलती है। तो आइए सुबह सवेरे हम भी ईश्वर का नाम जपें, गोविंद का गुणगान करें।

गोविंद के गुण गाइए, गोपाल के गुण गाइए। श्रोताओं, आइए अब सुने परमात्मा की असीम सृष्टि, उसकी रहमत और करुणा का भावपूर्ण वर्णन करता एक भक्ति गीत। इसकी मधुर प्रस्तुति मन को श्रद्धा और आत्मिक सुकून से भर देती है।

श्रोताओं, माता शक्ति की आराधना हमारे जीवन में साहस, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। और माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मंगल की भी अधिष्ठात्री मानी जाती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करें।

माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। श्रोताओं, जब मन ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूब जाता है, तब संसार की हर चिंता छोटी लगने लगती है। भक्ति ही वो मार्ग है जो मन को शांति और हृदय को आनंद से भर देता है और इस नश्वर संसार से भी मोह कम होने लगता है।

आशा है इन भक्तिमय प्रस्तुतियों ने आपके मन को शांति, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से अवश्य भर दिया होगा। हम सभी प्राणियों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, राम नाम में है छुपा सभी दुखों का अंत, राम नाम में है छुपा सभी दुखों का अंत, राम ही पर्याप्त है कहते साधु संत। नमस्कार, लखनऊ में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 221।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे चतुर सेन एवं राजेंद्र कचरू और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में। प्रातः के 7 बजे हैं और समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। आज की चर्चा में नीना सोनकर से जानकारी सुनिए खट्टी मीठी गुड़कारी इमली के विषय में।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जो हमारे भोजन को खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके फायदे केवल स्वाद तक सीमित नहीं हैं। ये फल है इमली, जो भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा रही है। इमली न सिर्फ हमारे भोजन को लजीज बनाती है बल्कि इसमें ऐसे औषधीय गुण भी होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। इमली का नाम लेते ही मन में गोलगप्पे, चटपटी चटनियाँ और खट्टी मीठी टॉफियाँ याद आ जाती हैं। भारतीय व्यंजनों में इमली का उपयोग सदियों से किया जा रहा है, चाहे वो दक्षिण भारतीय व्यंजनों में सांभर और रसम हो, उत्तर भारत में आलू टिक्की की चटनी हो या फिर राजस्थान और गुजरात के व्यंजनों में इसका इस्तेमाल। इमली हर जगह अपनी खास जगह बनाए हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमली सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इमली में विटामिन सी, विटामिन बी, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद फाइबर हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। अगर कभी अपच हो जाए या पेट भारी महसूस हो तो हल्की सी इमली को पानी में भिगोकर उसका रस पीने से तुरंत राहत मिलती है। यही कारण है कि पारंपरिक घरेलू नुस्खों में इमली को पेट के रोगों के लिए खास तौर पर उपयोग किया जाता है। इमली का एक और महत्वपूर्ण गुण ये है कि ये हमारे हृदय के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम और फाइबर रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं, जिससे हृदय स्वस्थ बना रहता है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित करने में भी मदद करती है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। यदि आप अपना वजन नियंत्रित रखना चाहते हैं तो इमली इसमें भी मदद कर सकती है। इमली शरीर में अतिरिक्त वसा को कम करने में सहायक होती है। ये भूख को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे अधिक खाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसलिए यदि आप अपने भोजन में थोड़ा सा इमली का पानी शामिल करते हैं तो ये आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। इमली हमारे लिवर के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। शोध बताते हैं कि इमली का सेवन लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है और इसके कार्य को बेहतर बनाता है। खास तौर पर ये फैटी लिवर जैसी समस्या को ठीक करने में मददगार मानी जाती है। अगर आप नियमित रूप से बहुत तले भुने और भारी भोजन का सेवन करते हैं तो इमली को अपने आहार में शामिल करने से शरीर में अतिरिक्त वसा नहीं जमती और पाचन क्रिया दुरुस्त बनी रहती है। इसके अलावा इमली त्वचा और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी त्वचा को प्राकृतिक चमक प्रदान करते हैं और झुर्रियों को कम करने में सहायक होते हैं। ये त्वचा की सफाई करने और मुहासों को दूर करने में भी मदद करती है। इमली में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं जो हमें मौसमी बीमारियों से बचाते हैं। सर्दी, खांसी और गले की खराश में इमली का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। अगर गले में खराश हो रही हो तो गुनगुने पानी में इमली का रस मिलाकर गरारे करने से तुरंत राहत मिलती है। हालांकि इमली का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में खाने से ये एसिडिटी बढ़ा सकती है। इसलिए यदि आप इसे अपने आहार में शामिल कर रहे हैं तो इसे अधिक मात्रा में ना लें। इमली का उपयोग केवल स्वास्थ्य और स्वाद तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये आयुर्वेद में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पुराने समय से ही इसका उपयोग औषधीय रूप में भी किया जाता रहा है। आयुर्वेद में इसे पाचन शक्ति बढ़ाने, शरीर की गर्मी को संतुलित करने और रक्त शुद्धि के लिए उपयोगी बताया गया है। श्रोताओं इमली केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी एक बेहतरीन प्राकृतिक उपहार है। ये हमारे पाचन को सुधारती है, हृदय को स्वस्थ रखती है, वजन नियंत्रित रखती है और त्वचा और बालों की सेहत को भी बढ़ाती है। हमें इसे अपने आहार में संतुलित रूप से शामिल करना चाहिए।

0: ये ताकि हम इसके सभी लाभ प्राप्त कर सकें। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: खट्टी मीठी गुड़कारी इमली। आज की स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुनी नीना सोनकर से ये जानकारी। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अब आज की स्वास्थ्य चर्चा यहीं संपन्न होती है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, आज शाम 5:10 से सुनिएगा कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। रात्रि 9:30 से सुनिएगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती। आज रात 10 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय के ख्याल गायन का। ये तीनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में सुनिएगा उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा लखनऊ की जबान, पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। लोकरंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे राजेश त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। लोकरंग कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:50 और लोकमाधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 से। बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहने सुनेंगी फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम मन भावन। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता। बातचीत का विषय रहेगा भिंडी की उन्नत कृषि तकनीक। वार्ताकार होंगे धर्मेंद्र नाथ पांडे, भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 से। युवा तरंग ये कार्यक्रम आज युवा श्रोता सुन सकेंगे शाम 5:35 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार। वार्ताकार होंगे सुनील कुमार पांडे। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज खरीफ में सह फसली खेती इस विषय पर भेंट वार्ता सुनिएगा। बातचीत करेंगे सुशील कुमार राय, धर्मेंद्र कुमार सिंह जानकारी देंगे। शाम 7:31 पर कार्यक्रम होगा विज्ञान जगत। कार्यक्रम में आज डॉक्टर दीपक कोहली की वार्ता सुनिएगा फुटबॉल का विज्ञान, मैदान पर जादू या फिजिक्स का खेल। प्रस्तुति प्रवीण कुमार की होगी। रात 8 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज वार्ता सुनिएगा सहकारिता से सह अस्तित्व। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ललित मोहन जोशी। रात्रि 8:10 से आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कमाल अहमद खां की गाई गजलें।

जानकारी और मनोरंजन का खजाना लेकर आएगा कार्यक्रम आज सुबह प्रातः 7:31 पर। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत और चित्रपट से कार्यक्रम का भी आनंद ले सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसा भी दिन होता है जो किसी एक व्यक्ति के, किसी एक देश के या किसी एक की उपलब्धि का नहीं, बल्कि मिलकर आगे बढ़ने की भावना का उत्सव होता है? जी हाँ, हर साल जुलाई के पहले शनिवार को पूरी दुनिया विश्व सहकारिता दिवस मनाती है और इस बार ये दिन आज यानी 4 जुलाई को मनाया जा रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को विश्व सहकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बता दें कि विश्व सहकारिता दिवस की शुरुआत साल 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने की थी। बाद में इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दे दी। इसका उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को ये बताना होता है कि सहयोग और साझेदारी केवल एक विचार नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और मानवीय विकास का एक सशक्त माध्यम है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी गांव में एक किसान अकेले अपनी फसल बेचने जाए तो शायद उसे सही दाम ना मिले, लेकिन वही किसान अगर अपने जैसे 100 किसानों के साथ मिलकर अपनी उपज बाजार तक पहुंचाए तो क्या होगा? उसकी आवाज भी बुलंद होगी, मोल भाव की ताकत भी बढ़ेगी और मेहनत का सही मूल्य भी मिलेगा, है ना? और बस यही तो है सहकारिता की ताकत, जहां एक और एक सिर्फ 2 नहीं होते बल्कि कई बार 11 बन जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है,

श्रोताओं, सहकारिता शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में सहकारी समितियों का नाम ही आता है, लेकिन इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सहकारिता का वास्तविक अर्थ है एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना, अपनी समस्याओं का सामूहिक समाधान ढूंढना और लाभ को कुछ लोगों तक सीमित न रखकर सबके बीच में बांटना। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ सहकारिता का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। चाहे किसानों को सस्ती खाद और बीज उपलब्ध कराना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी हो या फिर दुग्ध उत्पादन में क्रांति लानी हो, सहकारी आंदोलन ने हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। लाखों लोग आज भी सहकारी समितियों से जुड़े हैं और अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। यहाँ आपको एक बात और बताना चाहेंगे

कि सहकारिता का लाभ केवल कृषि क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आज महिला स्वयं सहायता समूह हस्तशिल्प, मत्स्य पालन, बागवानी, लघु उद्योग, बैंकिंग और आवास जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में सहकारी मॉडल लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, तब सहकारिता हमें ये याद दिलाता है कि हर समस्या का समाधान अकेले संभव नहीं होता। चाहे जल संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो, स्वच्छता अभियान हो या फिर डिजिटल साक्षरता, जब समाज मिलकर काम करता है तब परिणाम कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यवस्था की सफलता केवल सरकार या किसी संस्था पर निर्भर नहीं करती, उसकी असली ताकत उसके सदस्य होते हैं। यही सदस्य यदि ईमानदारी, पारदर्शिता और सक्रिय भागीदारी से जुड़े तो कोई भी संस्था विकास का मजबूत माध्यम बन सकती है। इसलिए सहकारिता केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज जब हम विश्व सहकारिता दिवस मना रहे हैं तो ये अवसर केवल शुभकामनाएं देने का नहीं बल्कि अपने आसपास सहयोग की संस्कृति को मजबूत बनाने का भी है। तो आइए आज हम सब ये संकल्प लें कि जहां भी अवसर मिले वहां प्रतियोगिता से पहले सहयोग को महत्व देंगे, क्योंकि जब लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं तब केवल व्यक्ति नहीं पूरा समाज आगे बढ़ता है। याद रखिए, सहकारिता हमें सिखाती है मैं से आगे बढ़कर हम की सोच अपनाना। यही सोच समाज को मजबूत बनाती है, विकास को गति देती है और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देती है। अब इसी संदेश के साथ विश्व सहकारिता दिवस पर एक बार फिर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सहयोग, विश्वास और साझेदारी की इस भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को अनुमति फिर मिलने के वादे के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव

0: ना उसकी हार है। मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेश व्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार। सघन उपचार के लिए पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विशेषज्ञों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स तथा उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN द्वारा प्रस्तुत कार्य योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में प्रत्येक जिले तक कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में गोल्डन आवर के भीतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित करने के निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएं। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। समाचार कक्ष से रितेश।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 464 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी के नवीन परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में नवाचार और उत्कृष्टता का भाव होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर जनहितकारी नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
4: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने। ये जज्बा हम सब के लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना हो।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मैंगो टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए आम की सभी किस्मों की GI टैगिंग कराई जाएगी। महोत्सव में 50 ग्राम के अंगूर दाना आम और 5 किलो तक के वजन वाले गजानन आम आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल EV चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट की व्यवस्था लागू की गई है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। टैरिफ में यह छूट सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 3 दिवसीय परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों के AI कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET परीक्षा के अंतिम दिन आज एक पाली में परीक्षा आयोजित

0: होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड मिले, ये सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
0: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने कल रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को कल लखनऊ में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1,47,00,000 लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ चुके हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रसार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का आह्वान किया। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया है कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करने जा रही है। इन चिकित्सालयों में पशु को सघन उपचार के लिए भर्ती भी किया जा सकेगा। बनने वाले प्रत्येक आदर्श पशु चिकित्सालय में 2 पशु चिकित्सा अधिकारी और पर्याप्त संख्या में अन्य स्टाफ की तैनाती की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। राज्य के कई जनपदों में कल भारी बारिश से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी का दौर बना रहा। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपात स्थितियों में उपचार सुनिश्चित करने को स्थापित होगा प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी की नवीन परिसर का किया लोकार्पण, कहा जनहितकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करना प्रशासन का काम। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श पशु चिकित्सालय की स्थापना करेगी सरकार, सघन उपचार के लिए

0: पशुओं को भर्ती करने की भी होगी सुविधा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

0: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आज का दिन आपके जीवन में नई ऊर्जा, नए अवसर और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैं रिंकी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम आज सुबह में। आज के सफर में मेरे और आपके साथ है
1: आपकी रेडियो सखी श्रद्धा। कीजिए स्वीकार हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: दोस्तों, कहते हैं हर सुबह अपने साथ एक नया सवाल लेकर आती है। आज ऐसा क्या किया जाए जैसे कि शाम को खुद पर गर्व हो, और इसका जवाब जो है श्रद्धा वो भी सुबह ही देती है।
1: बिल्कुल,
0: कि बस शुरुआत कर दीजिए, पहला कदम आगे बढ़ा दीजिए, है ना?
1: और बिल्कुल, देखिए ना, शनिवार की सुबह का अपना ही अंदाज होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे आज थोड़ा आराम कर लिया जाए क्यों उनके, तो कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं भाई, अभी वीकेंड है, घर के सारे अधूरे काम आज पूरे होंगे।
0: बहुत लोग होते हैं भाई ऐसे, क्योंकि जो वर्किंग है
1: जी हाँ,
0: उन्हें शनिवार और रविवार का दिन अक्सर मिलता है, तो वो पूरे हफ्ते का जो काम होता है उसे निपटाने की सोचते हैं, और जरूरी भी है ऐसा
1: जी,
0: है
1: ना? तभी तो आने वाले दिनों की अच्छी से तैयारी हो सकेगी।
0: लेकिन श्रद्धा एक बात बताओ,
1: क्या
0: आज का दिन सिर्फ अधूरे काम पूरे करने के लिए नहीं है
1: बल्कि
0: कुछ और मायनों में भी खास है?
1: क्या
0: पता है, जरा सोचिए, अगर एक अकेला इंसान किसी मुश्किल काम में थक जाए लेकिन वही काम कई लोग मिलकर मुस्कुराते हुए पूरा कर ले। सोचिए जैसे ये कार्यक्रम ही अगर मैं अकेले बैठ करूँ या आप अकेले बैठ कर करें तो रोचकता आएगी?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन हम सब जब साथ मिलते हैं, और हमारे साथ भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ पाते हैं और उन तक हमारी बात पहुँच पाती है, है ना? तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो वो एक खास ताकत होती है, और उसी का नाम है सहकारिता या सहकार।
1: बिल्कुल, यानी साथ चलने की भावना। यही भावना साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियां दिलाती है। जब हाथ जोड़ते हैं तो सिर्फ काम नहीं बनते बल्कि रिश्ते भी बनते हैं, भरोसा भी बनता है, और विकास की नई राहें भी खुलती हैं, क्यों रिंकी?
0: बिल्कुल सही। तो आज यानी कि 4 जुलाई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रही है, और आज हम इसी विषय पर चर्चा भी करेंगे। और आज हम एक और खास विषय पर चर्चा करेंगे।
1: क्या
0: भाई? देखो बारिश आ चुकी है
1: जी,
0: ना?
1: हाँ,
0: और ऐसे में जल संचयन, जल का उचित प्रबंधन
1: करना
0: भी
1: बहुत आवश्यक है।
0: तो श्रोताओं, अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज बहुत सारे खूबसूरत सी बातें होंगी लेकिन जानकारियों के साथ, और बीच बीच में मनोरंजन तो होता ही रहता
1: जी
0: है,
1: हाँ,
0: है ना? तो हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की, और आज यानी 4 जुलाई को

0: हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं। ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है।
1: और इसकी शुरुआत सन 1923 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA द्वारा की गई थी और बाद में सन 1995 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी।
0: हाँ, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है। हाँ। ये लेकिन सहयोग समाज को आगे बढ़ाने की सबसे मजबूत नींव हो।
1: बिल्कुल, इसीलिए तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि मतलब सामाजिक और आर्थिक विकास बढ़ता है। सहकारी समितियां लाभ कमाने से अधिक अपने सदस्यों और समुदायों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
0: देखो ना श्रद्धा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे यहाँ पे भाई किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो या फिर छोटे बच्चे, उद्यमी या सहकारिता ने लाखों लोगों के जीवन में आत्मनिर्भरता और सम्मान का एक नया अध्याय जोड़ दिया है।
1: क्यों? बिल्कुल, ये गरीबी कम करने और रोजगार पैदा करने में भी मदद करती है रिंकी।
0: बिल्कुल, तो आज की सुबह सिर्फ सूरज की नई किरणों का ही नहीं बल्कि साथ मिलकर आगे बढ़ने के उस सुंदर विचार का भी स्वागत करती है जो कहता है, मैं से बड़ा होता है हम।

0: और इनकी हमारे देश में सहकारिता का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, है ना। जैसे हमारे देश में कई अधिक सहकारी समितियां हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समावेशी विकास जैसे दुग्ध उत्पादन, कृषि ऋण और आवास में अहम भूमिका निभा रही हैं। और पता है इनकी, भारत में आधुनिक सहकारिता आंदोलन की शुरुआत सहकारी ऋण समितियां अधिनियम पारित करके कानूनी दर्जा भी से दिया गया था। सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है
1: जी। लेकिन श्रद्धा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कोई भी नियम हो, कोई भी कानून हो, कोई भी योजना हो, कोई भी संस्था या संस्थान हो, वो तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसके सदस्य यानी हम और आप भी उसमें पूरी सहभागिता ना निभाए, ईमानदारी के साथ उसमें ना जुड़े, है ना।
0: बिल्कुल हाँ। तो तभी तो इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।
1: जी बिल्कुल। तो चलिए अपने श्रोताओं को फिर आगे बढ़ते हुए एक खूबसूरत सा नगमा भी सुनवाते हैं और बढ़ाते हैं, और जानकारियों के ये सिलसिला तो जारी
0: ही चलता रहेगा।

0: छाया इस फिल्म का यह खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महबूब के युगल स्वरों में। और श्रद्धा, कार्यक्रम का आरंभ तो हो चुका है, हमने ढेर सारी बातें भी अपने श्रोताओं से कर ली, आज सहकारिता दिवस के बारे में भी बात कर ली हम लोगों ने, लेकिन एक और खास चीज अभी बाकी है और वो ये कि आज का सुविचार क्या कहता है।
1: जी बिल्कुल रिंकी, आज का सुविचार कहता है कि जीवन में सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि अच्छा समय और अच्छे संबंध होते हैं। इन्हें संभाल कर रखिए क्योंकि यही हर कठिन राह को आसान बना देते हैं।
0: बिल्कुल, वाह क्या बात कही श्रद्धा। और रिश्ते जो होते हैं, ये अच्छे संबंध जो होते हैं, ये बहुत खास होते हैं। कई बार हम ना बड़ी बड़ी उपलब्धियों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन सच्ची खुशी तो अपनों के साथ बिताए कुछ पलों में ही मिलती है।
1: बिल्कुल, कहते ना एक मुस्कान, किसी का हालचाल पूछ लेना, ये छोटे छोटे काम रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और मन को सुकून भी देते हैं।
0: बिल्कुल, और ये भी तो कहा जाता है कि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो रास्ते की कठिनाइयों से घबराते नहीं बल्कि हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं।
1: जी हाँ,
0: और देखिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं, कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनों का साथ रहता है तो आप इन सबको आसानी से पार कर जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: और जब हम घर से बाहर होते हैं श्रद्धा, या हमारे साथ के जो बच्चे हैं वो भी बाहर होते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सावधानी भी रखने की ज़रूरत होती
1: है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल का जो समय है ना बेहद चुनौतीपूर्ण है और कब कौन सी परेशानी आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता।
0: जी बिल्कुल, जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी हमने कुछ न्यूज़ सुनी थी और यहाँ लखनऊ में भी एक हादसा हुआ था, और ये जो मौसम है गर्मी का, इसमें आग लगने जैसी जो समस्याएं हैं ये बहुत सामान्य हो जाती हैं, लेकिन इससे बहुत गंभीर नुकसान होते हैं, बहुत अपूर्णीय क्षति कभी कभी हो जाती है। दोस्तों ये भी कहते हैं ना कि आग की एक छोटी सी चिंगारी भी यदि समय रहते नियंत्रित ना की जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती है। ऐसे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आग लगने की स्थिति में घबराने की बजाय हम कौन कौन से आपातकालीन उपाय अपना सकते हैं जिससे हमारे जान माल की हानि ना हो। इसी विषय पर आइए सुनते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी वार्ता।
2: स्काउट और गाइड्स उत्तर प्रदेश की ओर से मैं प्रत्युष रत्न पांडे, लीडर ट्रेनर और प्राध्यापक माउंटफोर्ट इंटर कॉलेज महानगर, इस वार्ता में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। श्रोताओं, अभी हाल ही में लखनऊ में आग लगने की घटना में अनेक छात्र छात्राएं असमय काल के गाल में समा गए। हम अपने भारत स्काउट और गाइड संस्था की ओर से सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और श्रोताओं, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इस विषय में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, हमारे जीवन के इस भागदौड़ में काफ़ी समय बाहर बीतता है। घर के बाहर सदैव ही दुर्घटना होने का भय बना रहता है। भारत स्काउट और गाइड संस्था बालक बालिकाओं को बाह्य क्रियाकलापों की एक श्रृंखला उपलब्ध कराती है जिससे वे इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। आज हम आपको आग से बचाव करते हुए अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। आग लगने पर पहले प्रत्येक व्यक्ति को यह देखना होगा कि आग किस प्रकार की है। इसका अर्थ यह है कि आग कई प्रकार से किसी भी जगह को धूल धूसरित कर सकती है, जैसे किसी आग लगने की जगह पर बिजली के तार और उपकरण के कारण आग लग सकती है। आग रद्दी कूड़ा ये लकड़ी में किसी प्रकार से लग सकती है। आग किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण भी लग सकती है, जैसे घर की गैस, पेट्रोल और डीजल आदि के कारण। आग घर में जो मेटल के चीज़ें हैं उनमें भी पकड़ सकती है। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि यदि आग बिजली के उपकरण के कारण लगी है तो पानी फेंककर कभी भी आग को

जाने का प्रयास ना करें। खतरा बढ़ सकता है। अगर आग आपके कपड़ों में लग गई है तो आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, वह है SDR। SDR टेक्निक में हम S का अर्थ निकालते हैं स्टॉप। अगर आपके कपड़ों में आग लग गई है तो आप तुरंत दौड़ना ना शुरू करें और रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। D का अर्थ है ड्रॉप। ड्रॉप का अर्थ इस प्रकार से लिया जाना चाहिए कि आप जहां पर खड़े हैं रुकने के तुरंत बाद आप नीचे की ओर अपनी बॉडी को, अपने शरीर को डाल दें, ड्रॉप कर दें। और R से रोल, गिरने के बाद आप फर्श पर लगातार रोल करें इनवर्ड और आउटवर्ड। इसका मतलब है कि आप एक तरफ से जाएं और तुरंत दूसरी तरफ रोल करते हुए वापस आएं। इससे आग आपकी बुझ जाएगी और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। यदि आग किसी बिल्डिंग में लगी है और आप धुएं से भरे कमरे में फंस गए हैं तो तुरंत रुमाल, शर्ट या कोई भी कपड़ा गीला करें, कहीं से भी पानी लें, गंदा या साफ। उस समय आपकी जान बचाना जरूरी है, यहाँ तक कि कपड़े को गीला करने के लिए किसी भी प्रकार के पानी का उपयोग कर सकते हैं। मुंह पर उस कपड़े को लपेटें, पूरा मुंह ढक लें, जमीन पर पेट के बल लेट जाएं और धीरे धीरे उस स्थान से बाहर निकलने का प्रयास करें। किसी सकरी या छोटी जगह पर ना जाएं। स्काउटिंग में पानी से आग बुझाने के लिए दो प्रकार के व्यवस्थाएं सिखाई गई हैं। नंबर एक सिंगल चेन सिस्टम और नंबर दो डबल चेन सिस्टम। इसमें सोर्स ऑफ पानी के पास से आग लगने वाले स्थान तक एक मानव श्रृंखला बनाते हैं और बाल्टियों में पानी भरकर जल्दी जल्दी एक दूसरे को पास करते हुए आग लगने वाले स्थान पर पानी डाल देते हैं और उसी प्रकार बाल्टी एक दूसरे को पास करते हुए वापस सोर्स ऑफ वाटर के पास ले आते हैं। यह एक सुरक्षित और तेजी से होने वाला प्रभावशाली तरीका है। इसी प्रकार डबल चेन सिस्टम में आग पर पानी फेंकने के बाद खाली बाल्टी दूसरी श्रृंखला जो मानव श्रृंखला के द्वारा बनाई गई है उससे पानी के मुख्य स्रोत तक ले जाया जाता है। तीसरी स्थिति कुछ आग लगने पर इस प्रकार बनती है कि हमें बिल्डिंग में आग लगने पर दरवाजे बंद हो गए हों और बचने का केवल एक ही तरीका है कि बिल्डिंग से कूदना। यह स्थिति एक स्काउट को गांठ बांधना सिखाती है। तीसरी स्थिति में यदि बिल्डिंग में आग लग गई है और दरवाजे बंद हो गए हैं और बचने का केवल एक ही तरीका है बिल्डिंग से कूदना। इस स्थिति में एक स्काउट को हम गांठ बांधना सिखाते हैं, गांठ बंधन या साठें। उदाहरण के लिए यदि दूसरी मंजिल की आग से बचने के लिए बालकनी से नीचे कूदना अत्यंत जरूरी हो तो यहाँ पर हम गांठों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरी मंजिल की औसत ऊंचाई अधिकतम जमीन से 24 फीट हो सकती है। सभी 3-4 व्यक्ति अपना शर्ट निकाल लें, शर्ट की स्लीव राइट हैंड से दूसरे के लेफ्ट हैंड की स्लीव को आपस में किसी गांठ के द्वारा बांध दें। बांधने पर एक व्यक्ति लगभग 5.5 फीट की दूरी को कवर कर लेगा। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति की शर्ट से भी 5.5 फीट हम लोग कवर कर सकते हैं। 4 व्यक्तियों की शर्ट से लगभग 22 फीट की ऊंचाई को हम कवर कर सकते हैं। 2 फीट गांठ लगाने में कपड़ा कम हो सकता। अब 20 फीट लंबी रस्सी इन शर्ट को जोड़कर बन जाएगी और बालकनी में शर्ट फंसाकर इस शर्ट के सहारे हम बिल्डिंग से नीचे सुरक्षित निकल सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इस तरह के कार्य के लिए अपनी पैंट का भी उपयोग कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें इन शर्ट को जोड़ने के लिए उपयुक्त गांठ का चयन और उसे बांधने या लगाने की प्रक्रिया पता होनी चाहिए। यह काम स्काउट गाइड संस्था के प्रशिक्षक बखूबी कर रहे हैं और अन्य लोगों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। इसी प्रकार

0: किसी घायल व्यक्ति या आग में धुएं के कारण बेहोश हुए व्यक्ति को बाहर ड्रैग कर निकालने में इन गांठों का प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। कुछ बेसिक गांठ हमें जरूर जान लेनी चाहिए, जैसे शर्ट से रस्सी बनाने के लिए शीट बैंड, रीफ नॉट या शीप शैंक आदि गांठों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ड्रैग व्यक्ति को बेहोश की स्थिति में यदि बाहर निकालना हो तो हम लोग बो लाइन या शीप शैंक और फिशरमैन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। इन तकनीक के अलावा अन्य कई विधियां भारत स्काउट गाइड में सिखाई जाती हैं, जिससे हम लाइफ स्टाइल टेक्निक्स या स्किल्स कहते हैं। स्काउटिंग को साइंस ऑफ आउटिंग भी कहा जाता है, जहां 70% बाह्य क्रियाकलाप सिखाए जाते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जीवन में किसी भी आपदा में अपने आप को सुरक्षित रख सके। श्रोताओं, भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश आकाशवाणी का हृदय से आभार प्रकट करती है कि उन्होंने इस विषय पर ध्यान देकर एक कार्यक्रम बनाया और समाज में एक नव चेतना का संचार किया। हमारा मूल सिद्धांत यह है कि पहले स्वयं सुरक्षित हों, फिर दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। केवल प्रशिक्षित एवं सुरक्षित परिस्थितियों में ही आग बुझाने का प्रयास करें। संबंधित विभाग को तुरंत सूचित करें। हमारा संदेश आप श्रोताओं के लिए है, सेवा, सजगता और सुरक्षा की भावना के साथ प्रत्येक स्काउट एवं गाइड आपदा के समय अनुशासन और टीम वर्क का परिचय देता है। जय स्काउट, जय गाइड, जय भारत, जय हिंद।
1: तो श्रोताओं, ये थे प्रत्यूष रत्न पांडे जी, जो माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज लखनऊ में शारीरिक शिक्षा के प्रवक्ता हैं तथा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तर प्रदेश के लीडर ट्रेनर भी हैं। कार्यक्रम की प्रस्तुति रमनप्रीत सिंह की थी। आशा है कि आग से बचाव के ये सरल और व्यवहारिक उपाय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। याद रखिए, सतर्कता, सही जानकारी और समय पर उठाया गया कदम ही किसी बड़ी दुर्घटना को टाल सकता है। श्रद्धा, कैसी लगी ये जानकारी?
2: बहुत अच्छी है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता भी इससे लाभान्वित होंगे।
1: बिल्कुल।
2: और रिंकी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल।
2: आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस।
1: जी हाँ, अभी हमने इसकी चर्चा भी की और इसके साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 4 जुलाई 1776 को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था और इस ऐतिहासिक कदम के जरिए 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने ग्रेट ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से खुद को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया था। यानी कि आज अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है।
2: बिल्कुल। और पता है रिंकी, आज मनाया जाता है कटहल दिवस।
1: वावा, जैकफ्रूट डे।
2: बिल्कुल। इस दिन को दुनिया के सबसे बड़े पेड़ पर लगने वाले इस फल और शाकाहारी भोजन के रूप में इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है।
1: जी, देखिए, कटहल में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं और उन गुणों और लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत में ये दिन मनाया जाता है।
2: पता है रिंकी, सन 1776 में अमेरिका,
1: जी हाँ, 1776 में, अभी हमने अपने श्रोताओं को बताया कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी और इसीलिए आज के दिन अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है
2: बहुत ही धूमधाम से। और सन 1827 में न्यूयॉर्क को गुलामी की प्रथा समाप्त हुई थी
1: जी।
2: और भारत में 1947 में इसी दिन ब्रिटिश संसद में भारत की आज़ादी का विधेयक पेश किया गया था।
1: वाह, क्या बात है। और अपने श्रोताओं को बता दें, 1886 में फ्रांस की जनता द्वारा अमेरिका की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उन्हें स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बहुत फेमस है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, है ना, सभी जानते हैं उसके बारे में और कहीं ना कहीं फोटो में, टीवी पे या देखा भी है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस की जनता ने अमेरिका को उपहार स्वरूप दी थी, क्योंकि उनकी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हुए थे 1800।

0: 1986 में
1: और आज ही के दिन सन 2012 में वैज्ञानिकों ने जिनेबा में सर्न में हिंग्स बोसान नामक उप परमाणु कण की खोज की बड़ी सफलता की घोषणा की थी।
0: जी हाँ, एक और आज ऐतिहासिक उपलब्धि है। 1997 में अंतरिक्षयान मार्स पाथ फाइंडर ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जिसने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नया अध्याय जोड़ दिया था।
1: बिल्कुल, इतनी अच्छी जानकारी दिवस और इतिहास हमने अपने श्रोताओं को बता दी है, तो अब
0: मौसम की तरफ भी चल लेते हैं और अपने श्रोताओं को मौसम का क्या हाल रहने वाला है वो भी बताते हैं। और मौसम की जानकारी देने के लिए हर रोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी। तो आइए उनसे जान लेते हैं मौसम का क्या हाल रहने वाला है।
2: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
2: वेरी गुड मॉर्निंग सर। और मौसम बदल रहा है, बारिश ने दस्तक दे दी है लेकिन फिर भी गर्मी बनी हुई है, तो आने वाले दिनों में लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, हमारे श्रोताओं को बताइए।
3: जी मौसम की बात करें तो

0: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग सर। और मौसम बदल रहा है, बारिश ने दस्तक दे दी है, लेकिन फिर भी गर्मी बनी हुई है। तो आने वाले दिनों में लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी मौसम की बात करें तो जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से अच्छी वर्षा का दौर जारी था, लेकिन जैसा कि मानसून का अपने साउथ में शिफ्ट हो गया है, तो इस वक्त एमपी के ऊपर अच्छी बारिश हो रही है। यूपी के जो सदर्न पोर्शन है, जो एमपी से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर अच्छी वर्षा है। बाकी और जगह छिटपुट वर्षा की संभावना है और लखनऊ में थोड़ा बादलों की आवाजाही रहेगी। तो कुल मिला के थोड़ा गर्मी का सबब रहेगा दोपहर में, उमस वाली गर्मी थोड़ा रहेगा और ये सिलसिला आज और कल रहेगा। बाकी परसों से जैसे टफ लाइन है, फिर से ये अपने यूपी की तरफ बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि 2 दिन के बाद फिर से अच्छा वर्षा का दौर अपने उत्तर प्रदेश में जारी होगा।
0: जी, तो संक्षेप में अगर कहें तो अभी 2 दिनों का इंतजार लखनऊ वालों को करना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुबह सवेरे आपने समय निकाला और हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी मौसम से संबंधित। आपका बहुत बहुत आभार।
1: ओके, धन्यवाद मैम।
0: नमस्कार सर।
2: तो रिंकी भाई, हमारे श्रोताओं को इतनी सारी जानकारी हमने दे दी है, तो अब समय हो गया है मनोरंजन का, तो क्यों ना सुनवा दिया जाए एक प्यारा सा गीत।
3: बिल्कुल, आप कहें और हम मना करें ऐसा तो होता ही नहीं है।
2: बिल्कुल, तो सुनवा देते हैं।

0: तो श्रद्धा अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को यहीं पर विराम दिया जाए। बातें हमारे पास बहुत सारी होती हैं, नगमे भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं, जो हम बातें अपने श्रोताओं से करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है और सबको मानना होता है। तो जाते जाते आपसे बस यही कहेंगे कि बारिश का मौसम आ चुका है और ये इस मौसम में सिर्फ आनंद मत लीजिए बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाइए।
1: बिल्कुल, बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से रोकिए और उसे भविष्य के लिए उपयोग के लिए लाए ना, तो उसका संचयन जरूर करें।
0: याद रखिए, बारिश की हर एक बूंद महत्वपूर्ण है और इसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जानते हैं जल है तो कल है।
1: बिल्कुल, जल संरक्षण हमारी बुनियादी आवश्यकता है, इसलिए पानी की बर्बादी रोकिए और वर्षा जल संचयन हर हाल में अपनाएं।
0: बिल्कुल, और अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है तो जैसे भी संभव हो अपने घर की छतों पर, अपने घर के आसपास तालाब या गड्ढों में पानी जरूर इकट्ठा करने दें, लेकिन याद रखें कि वो पानी गंदा ना होने पाए, उसे ढक करके सुरक्षित जरूर रखें। अब दीजिए इसी के साथ अपनी दोस्त रिंकी और
1: श्रद्धा को अनुमति।
0: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। इसी के साथ नमस्कार लखनऊ का ये सफर भी अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने

0: पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय

0: करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ITIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक वित्तीय तकनीकी निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी।

0: पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजीमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra.

0: पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एल नीनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमे मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरे T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक रोजा दौरे पर जाएंगे। पहले वो राजस्थान जाएंगे जहां वो आज सुबह जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी बालोतरा जाएंगे जहां वो आज दोपहर तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे, इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों पर तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपये की लागत आई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: उम्मीद है कि रियासत के मगरबी ज़िलों में रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से सरमायाकारी, रोज़गार और सनअती तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट से MSMEs, पैकेजिंग, कपड़े की सनअतों, ऑटो कलपुर्जों और एग्री फिल्म जैसे शोबों को भी फ़रोग हासिल होगा, जिससे रियासत की मईशत में एक नई तकवीत पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के चैलेंजिंग सहरा में बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले से शुमाल जनूब राहदारी, खासतौर पर शहर की कसीर मॉडल कनेक्टिविटी को फ़रोग हासिल होगा। इस राहदारी से मेट्रो ट्रेन हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल से मरबूत हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस प्रोग्राम के रवां टेलीकास्ट के लिए रियासत के सभी ज़िला सदर दफ्तरों, शहरी बलदियाती इदारों और ग्राम पंचायतों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जोधपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: बाद में शाम को वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुजरात का दौरा करेंगे। यहां वो अहमदाबाद के सनंद इलाके में बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजुर्बाती मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये इफ्तिताह भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के सफर में एक अहम संगे मील है, जिसके तहत भारत के पहले शुरू से आखिर तक चिप पैकेजिंग यूनिट में कमर्शियल प्रोडक्शन का आगाज हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बाहर से मंगाए गए CG सेमीकंडक्टर के कलपुर्जों के तरतीब और तजर्बाती मरकज OSAT से एक खुद कफील टेक्नोलॉजी इको निजाम की जानिब भारत के सफर में एक बड़े संगे मील की अक्कासी होती है। इस यूनिट में मसनूई जहानत और आला कारकर्दगी वाली कंप्यूटिंग के शोबों में तेजी से तरक्की हुई है। ये यूनिट एडवांस्ड मेमोरी और स्टोरेज के लिए आलमी मांग को पूरा करने के मकसद से कायम किया गया है। सनंद में ज्यादा पैदावार से अहम सनतों में आलमी और घरेलू सारफीन को बराह रास्त फायदा होगा। इन सनतों को ऑटोमोटिव, सनती खुदकारी, 5G मवासलात और इंटरनेट ऑफ थिंग्स शामिल है। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। इन अफराद को गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से कल एक साथ की गई कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS के मुताबिक मुलजमीन पाकिस्तानी आकाओं के राबते में थे और अपनी दहशतगर्दाना सरगर्मियों को मजीद तौसी देने के लिए गुजरात में एक सरगर्म नेटवर्क कायम करने के लिए जैश ए मोहम्मद की जानिब से सरगर्म अमल थे। ये अफराद जैश ए मोहम्मद के नुक्ते नजर की तशहीर के लिए उनके मवाद को गुजराती जबान में तर्जुमा करने का काम भी कर रहे थे। कौमी राजधानी में अब तक 1,02,000 से ज्यादा शुमारियाती फॉर्म्स डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर के मुताबिक दिल्ली में इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के अमल के हिस्से के तौर पर तकरीबन 33,14,000 फॉर्म्स तकसीम किए गए हैं। दिल्ली में घर घर जाकर शुमारियाती फॉर्म्स तकसीम करने का काम फिलहाल जारी है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत $1 ट्रिलियन की बरामदात के अपने निशाने को हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके तहत रवां माली साल की पहली सहमाही में तकरीबन 15% सालाना बरामदात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है।

नई दिल्ली में तिजारती मीटिंग के बोर्ड से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इस निशाने को हासिल करने के लिए अशिया की बरामदाद में इजाफे की जरूरत होगी। ये बरामदाद अभी तकरीबन 480 अरब अमरीकी डॉलर्स की हैं, जिसमें इजाफा करके इन्हें तकरीबन 530 अरब अमरीकी डॉलर मालियत का किया जाएगा, जबकि खिदमात की बरामदाद में सरदस्त तकरीबन 421 अरब डॉलर की मालियत में इजाफा करके इसे तकरीबन 470 अरब अमरीकी डॉलर किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला जनाब अमित शाह और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने एलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और इसके असरात से मुतालिक सूरतेहाल का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के कुछ इलाकों में एलनीनो की वजह से मामूल से कम बारिश और खुश्क साली के इम्कानी हालात से मुतालिक सूरतेहाल पर लगातार करीबी नजर रख रही है। उन्होंने ज़राअत की वजारत और मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वह चौकन्ना रहें और रियासती सरकारों के साथ तालमेल रखें ताकि किसानों को सही फसल बोने के बारे में मशवरा दिया जा सके। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सदाकत, मोतबरियत और आला तरीन पेशावराना मेयारात पर अहदबस्ता रहना चाहिए। कल नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि जब मीडिया मुत्तला करता है, सवालात करता है और मोतबरियत बरकरार रखते हुए अवामी मुबाहसे को फरोग देता है तो जमहूरियत को फरोग हासिल होता है। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में हर रोज हजारों यात्री पहुंच रहे हैं। इस मौके पर अकीदतमंदों, सयाहों और मकामी लोगों के लिए नई दिलचस्प सरगर्मियां शामिल की गई हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तवी दरिया के किनारे कश्ती की सहूलत शुरू की है। इसके अलावा पैडल वाली कश्तियां, राफ्ट्स, मोटरबोट्स और शिकारा की सहूलियात से भी यात्री लुत्फानंदोज हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कल सालाना अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,168 यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। डिप्टी कमिश्नर और सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट्स ने बालतल के दो बेस कैंपों से यात्रियों को 3,880 मीटर बुलंदी पर वाकई पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वो पेशगी इंदराज के बाद उनके लिए मखसूस की गई तारीखों पर ही पवित्र गुफा के दर्शन के लिए जाएं। ईरान में साबिक रूहानी पेशवाए आजम आयतुल्ला सैयद अली खामनई की सरकारी तौर पर 6 रोजा आखिरी रसूम की तैयारियां जारी हैं। ईरान के सीनियर रहनुमा, फौजी कमांडर्स और गैर मुल्की शख्सियतों ने आयतुल्ला अली खामनई को ईरान के मुसल्ला अजीम में खराज अकीदत पेश किया। बिहार के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और खारिजी उमूर के वजीर ममलिकत पवित्रा मार्गरीता ने आखिरी रसूम में शिरकत की। उनके जसद खाकी का जुलूस अगले कुछ दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद मुकद्दस शहर मशहद में इस महीने की 9 तारीख को उनकी तदफीन कर दी जाएगी। सरकारी तौर पर यह सोग 40 दिन तक जारी रहेगा। भारतीय आला इंतखाबी कमिश्नर जनाब ज्ञानेश कुमार आज 2 रोजा दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। ओहदा संभालने के बाद उनका यह रियासत का पहला दौरा होगा। पहले दिन वो इंदौर पहुंचेंगे, जहां वो बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जनाब कुमार ओमकारेश्वर और महेश्वर के मजहबी और तारीखी मकामात जाएंगे। आयुर्वेदिक उलूम में तहकीक के मरकजी कौंसिल CCRAS ने कल नई दिल्ली में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की 5वीं मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग आयुष वजारत के सेक्रेटरी वैद्य राजेश कोटेचा की सदारत में मुनाकिद की गई। वजारत ने बताया कि यह मीटिंग शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस इको निज़ाम में आयुर्वेद की तालीम, तहकीक, साइंसी मवासलात और डिजिटल हुक्मरानी को फरोग देने के मकसद से 3 बड़े इकदाम किए गए हैं। CCRAS के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य ने कहा कि कौंसिल शवाहिद पर मबनी आयुर्वेद तहकीक के इको निज़ाम की तामीर का पाबंद है, जिससे आयुर्वेद को आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल होगी। भारत के महकमा मौसमियात IMD ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मगरबी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में शदीद से शदीद तर और कहीं कहीं पर इंतहाई शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी तरह मशरकी राजस्थान

0: राजस्थान, मशरकी मध्य प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले दो दिन के लिए शदीद से शदीद तर बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस दौरान आज दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कल दर्ज हरारत ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक और कम से कम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की पेशगोई की है। महकमे ने जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में अगले चंद दिनों में गरज चमक के साथ औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई के साथ इक्का दुक्का मकामात पर अचानक सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने का अंदेशा जाहिर किया है। महकमे ने लोगों को नालों, झरनों और चट्टाने खिसकने के खतरे वाले इलाकों से दूर रहने का मशवरा दिया है। उधर केरलम में आज इक्का दुक्का मकामात पर शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रियासत के 14 जिलों में से 11 में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फीफा आलमी कप में अमरीका के मियामी गार्डन्स में खेले गए नॉकआउट के एक सनसनीखेज मैच में इजाफी वक्त दिए जाने के बाद अर्जेंटीना ने कैबो वर्डे को 3-2 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई है, जबकि अमरीका के शहर एलिंगटन में खेले गए एक दूसरे नॉकआउट मैच में मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच जो चेस्टर स्ट्रीट में खेला जाना था बारिश के सबब रोक देना पड़ा था। तीसरा मैच 7 जुलाई नॉटिंघम में खेला जाएगा। ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन आखिरी 2 मैचों की मेजबानी करेंगे। ये सीरीज 11 जुलाई को खत्म होगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा बैन अलाक्वामी मैच की सीरीज खेली जाएगी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में होने वाली मीटिंग में हुकूमत ने 52,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दी, जिसे मुसल्ला फौज की सलाहियत बढ़ाने और उन्हें जदीद तरीन हथियारों से लैस करने की सम्त में बड़ा कदम माना गया है। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने खसूसी तौर पर शाये किया है। रोजा प्रताप ने वजारत खारजा की जानिब से जारी एक बयान को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसमें वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में बता दिया है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा होगा, फिर सिंध तास आबी माहदे पर बात होगी। आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी रसूम के आगाज की खबर पर आज के बेशतर अखबारों ने तवज्जो मरकूज की है, जिसमें शिरकत के लिए भारत समेत मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। आखिरी रसूम 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में अदा की जाएंगी।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वो बालोतरा में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड मरबूत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह करेंगे। दहशतगर्दी की रोकथाम के गुजरात स्क्वाड ने पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। मरकज ने एलनिनो के सबब मुल्क के कुछ इलाकों में मामूल से कम बारिश और खुश्क साली की इम्कानी सूरत हाल का जायजा लिया। भारत के महकमा मौसमियात ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा आलमी कप में अर्जेंटीना मियामी में कैबो वर्डे को एक सनसनीखेज मैच में 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में दाखिल हो गया है। मिस्र भी प्री क्वार्टर फाइनल्स में दाखिल हो गया है। और आज शाम मैनचेस्टर में दूसरी T20 में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती

0: घर आंगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। उम्मीद है कि आज की आपकी सुबह मुस्कानों से भरी होगी और आपका दिन भी कुछ अच्छे एहसास समेटने को तैयार होगा। स्वागत एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में, जहां आपकी बातें बनती हैं हमारी कहानी और आपकी पसंद बन जाती है संगीत की रवानी। जी हाँ, आप अपने खूबसूरत मेल हमें भेज सकते हैं, जिसमें लिख सकते हैं आप अपनी फरमाइश फिल्मी नगमों की। अपने संदेश भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो चलिए देखते हैं आज इस कार्यक्रम की खूबसूरत शुरुआत कौन सा मेल बना है। तो ये ईमेल हमें भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी ने। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से मेल आई है अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर। और श्रोताओं एक मेल हमारे पास आई है दिग्दर्शन और कविता गौड़ की, गांव शोभापुर मेरठ से। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप जी का भी मेल हम तक पहुंच चुका है। इन्होंने लिखा है आपका हर पल खुशियों से भरा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपका भी दिन खुशियों से भरा रहे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपकी फरमाइश के खूबसूरत से नगमे से। फिल्म कारवां से है ये गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के आवाजों में, संगीत आरडी बर्मन का है और बोल लिखे इस गीत के मजरूह सुल्तानपुरी ने।

दोस्तों कहते हैं हर दिन कुछ नया सीखने का मौका लेकर आता है, बस थोड़ी जरूरत है कि जिज्ञासा और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी जाए। कहते हैं चेहरे पर मुस्कान होगी तो हर मुश्किल आसान लगेगी। जी हाँ, चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी? जब आप सुनेंगे अपनी पसंद के नगमे और करेंगे अपनी पसंद के काम जो आप करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी आपकी पसंद का काम है उसे किसी को नुकसान ना हो, तभी वो काम अच्छा है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अगला मेल जो हमें भेजा है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप ने। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का मेल आया है। मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और रसीद वारसी का मेल आया है। किदवई नगर सिद्धपुर टाउन से जुबैर अली खान भी मेल कर रहे हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वद देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख का एक मेल हम तक पहुंच चुका है। तो आप सभी को सुबह सवेरे समय निकाल कर ये प्यार भरे संदेश हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा नगमा जो आप में से ही एक श्रोता ने फरमाइश की है। फिल्म कटी पतंग से इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

दोस्तों, हर गीत अपने साथ कोई ना कोई याद लेकर आता है। आप भी अपनी यादों का पिटारा खोलिए और उन्हें हमारे साथ साझा कीजिए। आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा का खूबसूरत सा मेल हमारे पास आ चुका है। और एक मेल जबलपुर मध्य प्रदेश से आया है अशोक सिंह, सुनीता सिंह और वेदा सिंह का। एक मेल हमें भेजा है धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू ने मेल भेजा है। और श्रोताओं, जब इतनी दूर दराज से इतने खूबसूरत से मेल प्यार के रूप में हम तक पहुंचे हैं तो हमें वाकई बहुत अच्छा लगता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। आकाशवाणी लखनऊ से ये प्यार ये मोहब्बत यूं ही बनाए रखिए। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का मेल हमारे पास आ चुका है। तो खूबसूरत सा नगमा, सदाबहार नगमा इसे कहे तो गलत नहीं होगा, आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कन्यादान से मोहम्मद रफी की मीठी आवाज़ में।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में 2 मिनट किसी अपने का हालचाल पूछ लेना भी बहुत बड़ी बात है। कभी कभी एक छोटा सा संदेश पूरे दिन की खुशी बन जाता है, और आपके ये प्यारे प्यारे संदेश हमारे लिए इसी खुशी का काम करते हैं। तो देर मत कीजिए, हमें अपनी फरमाइश अपने संदेशों के माध्यम से पहुंचाइए आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर। देखिए, हमारी बात को पूरा किया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, नरेंद्र तनेजा और मीनाक्षी तिवारी ने। इन्होंने कहा राम राम जी, तो भाई राम राम आपको भी। और रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का मेल हमारे पास आया है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर का मेल भी हम तक पहुंच चुका है। श्रोताओं, सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से मेल कर रहे हैं। वहीं प्रेम लाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा का मेल आया है, और रिंग रोड नर्मदा नगर से। तो आप में से एक श्रोता ने फरमाइश की है कि हमें खुद्दार फिल्म का एक गीत सुना दीजिए। तो ये लीजिए, खुद्दार फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट पर पहुँच रहा है। आपने की फरमाइश और हम कर रहे हैं उसे पूरा। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में, अनु मलिक के संगीत से सजा, राहत इंदौरी का लिखा ये गीत। जॉय कीजिए सुबह सवेरे अपनी चाय के साथ।
6: तुम

दोस्तों, बहुत खूबसूरत मौसम है। हमारे देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और कहीं कहीं बारिश का मौसम बना है। लेकिन ये मौसम जहां खूबसूरती लेकर के आता है, वहीं जिम्मेदारियां भी लेकर के आता है। जी हाँ, वर्षा जल संचयन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम सबको इस पर ध्यान रखना चाहिए। वर्षा की जो बूंदें हैं, वो एक एक बूंद बहुत कीमती है, तो इसे सहेजिए, इसे समेटिए, इसे सुरक्षित कीजिए। किसी भी तरीके से आप इसे संरक्षित कर सकते हैं तो इसे सुरक्षित रखिए और इसके जल का उपयोग आने वाले समय में कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं जल ही जीवन है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला मेल जो हमें भेजा है। ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने, इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म राजा हिंदुस्तानी का एक गीत। तो आपको ज़रूर सुनवाएंगे इस फिल्म का ये गीत। लेकिन कुछ और मेल भी हमें प्राप्त हुए हैं, उनके नाम भी अपने श्रोताओं के हम ले लें। तो ये मेल हमें भेजा है

फुले नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा ने। एक मेल हमारे पास आई है बलिया उत्तर प्रदेश से, फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, असमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार की। मोताला महाराष्ट्र से एक मेल आई है विजय सुरलकर, रतनमाला और कुमकुम की। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन शेंडे ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से हमें मेल कर रहे हैं। सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से मेल कर रहे हैं। वहीं प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा का मेल भी हमें मिल चुका है। तो आप सभी श्रोताओं को खूबसूरत सा नगमा सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज़ में। संगीत नदीम श्रवण का है और गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

0: दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपके साथ बिताया ये संगीत भरा सफर हमारे लिए हमेशा खास रहता है और हमें विश्वास है कि आपको भी ये पल अच्छे लगे होंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त रिंकी शर्मा को अनुमति। नमस्कार। वीडियो में 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए उन्नाव और हापुड़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं उन्नाव जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास शुक्ला का।
2: जनपद उन्नाव में बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत डीह में 570 करोड़ की लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम में पहुंचकर सर्वप्रथम सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया तथा बाल विकास सेवा एवं पोष्टाहार विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचकर दो गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर पोषण पोटली भेंट की गई व दो नवजात शिशुओं का अनुप्राशन कर उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डेमो चेक प्रमाण पत्र व

0: आवास की चाबी देकर सम्मानित किया। जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव आध्यात्मिक साहित्य व क्रांति की धरा है। उन्होंने कहा कि आज जनपद उन्नाव हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, विकास की हर योजना उन्नाव में लागू है। आज यहां की कनेक्टिविटी हर तरफ से 4 लेन हो गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए उन्नाव वासी लखनऊ को बाईपास कर सीधे दिल्ली प्रयागराज जा सकते हैं। कानपुर के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। उन्नाव व कानपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए गंगा नदी में अतिरिक्त ब्रिज की भी मांग पूरी की गई है। उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर व गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए लगभग 700 एकड़ और 200 एकड़ लैंड इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए उन्नाव जनपद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। चारों ओर रिंग रोड बनेगी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार 100 वर्ष की कार्य योजना को लेकर कार्य कर रही है।
1: यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने उन्नाव जनपद में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी कर दी है और तेजी के साथ नए उद्योग अब उन्नाव जनपद में लगेंगे। यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजगार प्राप्त होगा।
0: जिले के पुलिस लाइन ग्राउंड परिसर में राज्य ललित कला अकादमी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा व जिलाधिकारी घनश्याम मीना की उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, समाज सेवियों द्वारा सामूहिक योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग को मानव जीवन में महत्व के बारे में कहा कि योग स्वास्थ्य संतुलित एवं तनावमुक्त जीवन का आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान किया। जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोरामू में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने निराश्रित 108 बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान राज्यपाल ने बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन और उनके भविष्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि समाज के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना सरकार और समाज दोनों का ही सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने निराश्रित बालिकाओं की सुरक्षा, देखभाल और सुविधाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं के समुचित पालन पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि बालिकाओं को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाए। जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान का शुभारम्भ किया गया। जिला अस्पताल परिसर से शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दिया। जागरूकता रैली में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने हाथों में संचारी रोगों से बचाव संबंधी संदेश लिखी तख्तियां ले रखी थी। उन्होंने नारे लगाकर लोगों को अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। छात्राओं ने लोगों को जल भराव से होने वाली खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि घरों के आसपास पानी जमा होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
2: उन्नाव जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का।
3: इस सरकार की एक जनपद एक उत्पाद ODOP और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से हापुड़ के पेठा निर्माताओं और जनता में काफी हर्ष है। हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद हापुड़ में 6 इकाइयां स्थापित है जो तरह तरह के पेठे बना रही है। सरकार की इस पहल के तहत हापुड़ जनपद में लगभग 150 नई पेठा इकाइयां लगाई जाएंगी, जिससे पेठा उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक इकाई 10 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। अब हापुड़ के पापड़ के बाद हापुड़ के पेठे को भी नई पहचान मिल रही है।
4: ये जो ODOC में हापुड़ के पेठे को जो शामिल किया गया है, इससे न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी पेठे की पहचान बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार का, जिन्होंने हमारे हापुड़ के पेठे को भी ODOC में लिया।
3: विश्व योग दिवस के अवसर पर हापुड़ जनपद में जगह जगह योग शिविर आयोजन किए गए, जिसमें लोगों ने योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के गुर सीखे। योग क्रियाओं को करके स्वस्थ रहने और योग को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया। हापुड़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह पहुंचे, जिन्होंने योग क्रियाओं को करके योग से होने वाले लाभ के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक नई पहचान दी है। वहीं हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण ने अवैध भूमाफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। जिले में हजारों वर्ग मीटर में हो रही अवैध प्लाटिंग पर HPDA ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। HPDA की कार्रवाई से

0: अवैध प्लॉटिंग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण ने ऐसे कॉलोनाइजर को चिन्हित भी किया है जो अवैध प्लॉटिंग कर सरकार के राजस्व को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। एचपीडीए क्षेत्र में कई जगह भू माफियाओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। साथ ही राजस्व को ऐसे भू माफिया चूना लगा रहे थे, साथ साथ लोगों को भी धोखा दिया जा रहा था, जिसकी सूचना के आधार पर एचपीडीए के अधिकारी और कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर ऐसी अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित किया जो राजस्व को चूना लगा रही थी। प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम लोगों से अपील की है कि ऐसी किसी भी कॉलोनी या जगह पर प्लॉट न खरीदें जिसका मानचित्र स्वीकृत न हो, और ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो लोग मानचित्र स्वीकृति का वादा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचने का काम करते हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों ने यह भी अपील की है कि अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट खरीदें ताकि सुरक्षित रह सकें। जनपद हापुड़ में आयुष्मान योजना लोगों के स्वस्थ रखने में वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान योजना से लोगों को स्वस्थ होने का वरदान मिला है। 15 जून से आयुष्मान कार्ड के लाभ के लिए विशेष शिविर आयोजन किया जा रहा है। जनपद में कार्ड धारक इसका लाभ ले रहे हैं। अस्पतालों में आयुष्मान वार्ड बनाए गए हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड धारकों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान कार्ड का लाभ देकर जन जन को स्वस्थ रखने का काम किया, जिसके लिए जनता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रही है। हापुड़ जनपद में पल्स पोलियो अभियान के तहत 692 बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। जनपद हापुड़ में जिला अधिकारी कविता मीना के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 692 पोलियो बूथ का सफल आयोजन किया गया। अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा बताया कि जनपद में कुल 274,600 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। 15 जून से जनपद में आयुष्मान केंद्रों, सीएचसी, आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत सहायकों के द्वारा ऐसे लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं जो कार्ड बनवाने से छूट गए थे। ऐसे लोगों को कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मुहर्रम के पर्व पर ताजिया जुलूस और मातमी जुलूस निकाला गया। जनपद हापुड़ में अंजुमन हुसैनी के रजाकारों ने कर्बला के शहीदों की शहादत को याद करते हुए अकीदत पेश की। आगामी मानसून एवं संभावित बाढ़ की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हापुड़ द्वारा ब्रजघाट गंगा गढ़मुक्तेश्वर में व्यापक बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखना था, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण किया गया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी उन्नाव और हापुड़ जिलों की खबरें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
8: सामीन को इरम का आदाब। आज की ये मुलाकात किसी शहर की सैर भर नहीं, बल्कि एक ऐसी तहजीब से रूबरू होने का बहाना है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। लखनऊ, जी हाँ जनाब, लखनऊ भी क्या खूब शहर है। नाम लीजिए तो यूं महसूस होता है जैसे कोई पुराना दर खुल गया हो और यादों की पूरी एक अलमारी खुल गई हो। कहीं चौक की पुरअसरार गलियां, कहीं अकबरी गेट की रौनकें, कहीं कबाब की उठती हुई खुशबू, कहीं चिकनकारी की नर्म तहें, और इन सब के दरमियान एक आवाज आज भी फिजाओं में तैरती हुई सुनाई देती है। जनाब पहले आप। कहते हैं कुछ शहर नक्शे में बसते हैं और कुछ लोगों के दिलों में। लखनऊ उन्हीं शहरों में से एक है। यहाँ दीवारें भी गोया गुफ्तगू करती हैं, छज्जे भी अदब से झुकते हैं और दरवाजे भी दस्तक से पहले मुस्कुरा लेते हैं। लखनऊ वालों से अदब पर गुफ्तगू करना, जबान की बात करना, सुखन की बात करना कुछ ऐसा ही है।

0: से कस्तूरी मृग के सामने खुशबू का जिक्र करना, क्योंकि यहाँ जबान महज अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रिश्ते निभाने का सलीका है। नवाबी दौर से चली आती ये रवायत आज भी फिजा में मौजूद है। वक्त बदला, रफ्तार बदली, लिबास बदले, बाजार बदला, लेकिन लखनऊ की असल शनाख्त उसकी जबान आज भी वैसे ही है। और इसी दिलचस्प दास्तान के साथ आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जबान खाने वाली और बोलने वाली दोनों ही जिंदा हैं लखनऊ में। आपने देखा होगा आम शहरों में महज लोग बसर करते हैं, लेकिन लखनऊ में जनाब एक अंदाज जिंदगी रहता है। ये शहर महज सड़कों पर नहीं चलता, ये शहर बातों में धड़कता है। यहाँ क्या हाल है यूं ही नहीं पूछा जाता, हुजूर मिजाजे आली कैसे हैं आप? और बस यही एक जुमला इस बात की गवाही देता है कि आपके कदम लखनऊ की सरजमीन पर हैं। लखनऊ की ये शीरीन जबान जिसे जमाना लखनवी उर्दू के नाम से जानता है, उसमें सिर्फ उर्दू की नफासत ही नहीं बल्कि अवध की चाशनी भी घुली हुई है। यहाँ महज बात नहीं की जाती बल्कि लिहाज ज्यादा बढ़ता जाता है। हुजूर अगर नागवार ना गुजरे तो एक अर्ज करूं, जनाब नागवार गुजरना तो गैरों का काम है, आप तो अपने हैं। यही तो है लखनऊ का तर्ज बया। यहाँ शिकवा भी मुस्कुराकर अदब के दायरे में रहकर किया जाता है। अगर इजाजत हो तो एक इल्तिजा है, और रंजिश वो भी कुछ इस दिलकश अंदाज में बयां होती है। आपसे उम्मीद कुछ ज्यादा ही वाबस्ता कर ली थी हुजूर, यानी बात वही शिकवा वही, लेकिन लिहाज ऐसा शीरी कि सामने वाला नाराज होने के बावजूद मुस्कुरा उठे। यहाँ बहस तलवार की मानिंद तीखी नहीं होती बल्कि रेशमी रुमाल की तरह रूह को सहलाती है। इख्तिलाफ भी तहजीब के पैराहन में लिपटा होता है। पुराने लखनऊ में खवातीन की गुफ्तगू को बेगमाती जबान का रुतबा हासिल था। इतनी साफ, इतनी नफीस की जैसे गुफ्तगू नहीं हो रही हो बल्कि इत्र की खुशबू फिजा में घुल रही हो। बेगम साहिबा अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करने की जुर्रत करूं, फरमाइए आपकी बात सर आंखों पर, यानी घर के सहन और ड्योड़ियों में भी अदब की रवायत बरकरार रहती थी। मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठे बुजुर्ग हों या छज्जे से आवाज देती कोई अम्मा, हर पुकार में अपनायत का एक समंदर होता था, बेटा जरा इधर तो आइए, और बस इतना सुनते ही सामने वाले का दिल पसीज जाता था। यहाँ बच्चों को महज बोलना नहीं सिखाया जाता था बल्कि गुफ्तगू का सलीका और बातचीत का करीना घुट्टी में पिलाया जाता था। बरखुरदार बड़ों की आमद पर अदब से उठकर सलाम कीजिएगा, यानी लखनऊ में तहजीब किताबों के सफ़ों से कम घर के दालान, सहन और बरामदों से ज्यादा सीखी जाती थी। तो जनाब बोलने वाली जबान का ये हसीन सफर यहीं नहीं रुकता, क्योंकि लखनऊ में बातों की चाशनी सिर्फ दीवान खानों तक महदूद नहीं रहती बल्कि बाजार के कूचों तक चली आती है। अब जरा रुख करते हैं सब्जी मंडी की जानिब, क्योंकि यहाँ खरीदारी नहीं होती, यहाँ तो एक महफिल जमती है। मियाँ भिंडी किस भाव दी? तो सामने से पहले एक अदब भरी मुस्कुराहट मिलेगी और फिर कुछ यूँ जवाब आएगा, जनाब पहले तौल तो लेने दीजिए, दाम आपकी मर्जी और पसंद के मुताबिक तय हो जाएंगे। और अगर आपने कहीं शिकवे के तौर पर कह दिया मियाँ कुछ महंगी मालूम होती है, तो आगे से जवाब हाजिर होगा, अरे हुजूर महंगी कहाँ, आजकल सब्जियां भी इस शहर के मिजाज की मानिंद बेहद नाजुक मिजाज हो गई हैं। बस यही तो है लखनऊ, यहाँ खरीदो फरोख्त भी एक खूबसूरत गुफ्तगू में ढल जाती है। अब जरा रुख कीजिए चखने वाली जबान की जानिब, क्योंकि लखनऊ का जिक्र हो और यहाँ के जायके की बात ना हो तो दास्ताने लखनऊ अधूरी रह जाएगी। ये वो तारीखी शहर है जहाँ कबाबों की सुलगती खुशबू भी फिजाओं में अदब घोलती हुई उठती है, जहाँ शिरमाल महज एक मैदे की रोटी नहीं बल्कि मेजबान के खुलूस का खुला इकरार है, जहाँ बिरयानी सिर्फ एक पकवान नहीं अवध की पहचान बन चुकी एक मुकम्मल रिवायत है, जहाँ दावतें पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए दी जाती है। हुजूर थोड़ा और लीजिए, आप लाख मना करेंगे, अरे जनाब अभी तो दस्तरखान की रौनकें शुरू हुई हैं, ये तो महज इब्तिदा है, आप फिर इनकार करेंगे।
1: अरे हुजूर हमारी तवाज़ो को इतना भी कमजोर ना समझिए, जरा सा और।
0: और फिर आप बखूबी समझ जाएंगे कि लखनऊ की सरजमी पर मेहमान सिर्फ मेहमान नहीं होता बल्कि खानदान का एक फर्द हो जाता है। जब शाम अवध ढल रही हो और किसी कूचे से सीख कबाब की खुशबू परवास कर रही हो तो यकीन मानिए पेट भरने से पहले यादों को लगती है, यहाँ खाना सिर्फ लज्जत नहीं दे

खट्टा एक जमाना बयान करता है। हर रेसिपी के पीछे एक किस्सा है, हर दस्तरखान के पीछे एक जज्बा है और हर निवाले के साथ एक दुआ। यहाँ कई पकवान ऐसे हैं जो सिर्फ बावर्ची खाने में तैयार नहीं हुए बल्कि सदियों की तहजीब के चूल्हे पर पके हैं। सच तो ये है कि लखनऊ का दस्तरखान जितना वसी होता है उतना ही कुशादा इस शहर का दिल भी होता है। शाम के ढलते ही चौक के कूचों में तरह तरह के जायकों की खुशबू परवाज करने लगती है। कहीं कबाबों की महक, कहीं निहारी कुलचों की सौंध, तो कहीं शिरमाल की रंगत। हर दुकान जैसे अपने माजी की कोई दास्तान सुना रही हो। हुजूर, पहले चख लीजिए फिर फैसला कीजिए, यानी यहाँ खाने का फैसला भी जबान करती है और बात करने का सलीका भी। जब लखनऊ के जायकों की बात हो तो मक्खन मलाई का जिक्र किए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। सर्दियों की वो धुंधली सुबह, ओस की पाकीजा नमी और मिट्टी की सिकोरी में सजी हुई जाफरानी मक्खन मलाई, गोया किसी ने बादलों का कोई मखमली टुकड़ा जमीन पर उतार दिया हो। एक लुकमा मुंह में जाते ही यूं घुल जाता है जैसे कोई ख्वाब, और उसके साथ घुल जाती है पुराने लखनऊ की मीठी यादें। गुजरे जमाने के घरों के दस्तरखानों पर सिर्फ नेमतें नहीं चुनी जाती थीं, उनके साथ में अदब भी परोसा जाता था। नौनिहालों को तरबियत भी दी जाती थी, बेटा पहले मेहमान की खिदमत में पेश कीजिए। और यही वजह थी कि खाने वाली जबान सिर्फ लज्जत तक महदूद नहीं रही, वो रिश्तों की जबान बन गई, खुलूस की जबान बन गई, अपनापन जताने का जरिया बन गई। यहाँ किसी के घर जाना और बिना ज़ियाफ़त के लौट आना तकरीबन गुस्साखी में शुमार किया जाता है, क्योंकि लखनऊ में महफिल दस्तरखान महज खाने का नाम नहीं, दिलों को जोड़ने का बहाना भी है। और अगर किसी लखनवी ने आपको एक प्याली चाय के लिए रोक लिया तो समझ लीजिए वो सिर्फ चाय का इसरार नहीं कर रहा, वो अपने दिल का दरवाजा खोल रहा है, क्योंकि यहाँ चाय में शक्कर कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन मेजबान के खुलूस में कभी कमी नहीं आ सकती। हुजूर, एक प्याली और हो जाए। और बस यही ये बात वाजे होती है कि लखनऊ में चखने वाली जबान पेट से ज्यादा दिल का रिश्ता कायम रखती है। यहाँ जायका सिर्फ जुबान पर नहीं ठहरता बल्कि यादों में बस जाता है, और शायद इसीलिए जो एक बार लखनऊ की लज्जत चख ले वो उम्र भर भूल नहीं पाता। लेकिन लखनऊ सिर्फ जायके और अदब का शहर नहीं, ये सुखन का शहर भी है, नशस्तों का शहर भी है और अल्फाज को तहजीब का पैराहन पहनाने वाला शहर भी। तो आइए अब रुख करते हैं लखनऊ की उस सहरंगेज दुनिया की जानिब जहां अल्फाज सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि महफिलों में तराशे जाते हैं। लखनऊ की जबान का जिक्र हो और शायरी का जज्बा अंगड़ाई न ले, ऐसा भला कैसे मुमकिन है। ये वही सरजमीन है जहां कभी शामें महज ढलती नहीं थीं, बल्कि आरास्ता हुआ करती थीं, जहां चौक की गलियारों से लेकर नवाबों की कोठियों तक गजलों की सदाएं गूंजती थीं। यहाँ लोग सिर्फ शेर नहीं कहते थे जनाब, यहाँ लोग शेर जीते थे, अर्ज किया है। और बस इस एक सदा के गूंजते पूरी महफिल खामोश हो जाती। किसी के हाथ में चाय का प्याला होता, किसी के हाथ में पान की गिलोरी, और सबकी निगाहें शायर के तर्ज बयां पर टिक जाती थी। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था। लखनऊ की यही तो खासियत रही है, यहाँ अल्फाज को भी तहजीब का जामा पहनाया जाता है। यहाँ गुफ्तगू भी एक फन है और खामोशी भी एक हुनर। कहते हैं अगर किसी को टोकना भी मकसूद हो तो लोग यूं इल्तिजा करते हैं, हुजूर एक गुस्ताखी की इजाजत चाहूंगा, यानी शिकवा वही मगर अंदाज ऐसा कि सामने वाला नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दे। यहाँ की महफिलें सिर्फ सुखन और शायरी की नहीं थी बल्कि वो रिश्तों के आशियाने की भी थी। लोग एक दूसरे को पूरी तवज्जो से सुनते थे, समझते थे और फिर दिल से दाद देते थे। आज सोशल मीडिया के दौर में 2 मिनट की गुफ्तगू 2 सेकंड में खत्म हो जाती है, लेकिन उस सुनहरे दौर में महज एक अदद शेर पर पूरी महफिल घंटों तक दाद देती रहती थी। लखनऊ में अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल की गहराइयों में महसूस किए जाते थे। जनाब अगर लखनऊ की तहजीब को कहीं सबसे करीब से देखना हो तो किसी आलीशान इमारत में नहीं बल्कि किसी नुक्कड़ की छोटी सी चाय की दुकान पर बैठ जाए, वहाँ आपको पूरा लखनऊ सिमटा हुआ मिल जाएगा। यहाँ चाय सिर्फ पी नहीं जाती बल्कि बातों की चाशनी में घोली जाती है। एक कुल्हड़ चाय और घंटों की गुफ्तगू, किसी को सियासत

0: पानी का गिलास तो लाइए, मेहमान तशरीफ लाए हैं। भाई साहब आप यहाँ तशरीफ रखिए। देखिए महज दो लफ्ज हैं, लेकिन इन्हीं दो लफ्जों के साए में पूरा लखनऊ सांस लेता है। नए जमाने की एक नस्ल अंग्रेजी बोलती है, जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है, दुनिया भर में आला ओहदों पर फराइज हैं, लेकिन जब अपने आशियाने को लौटती है तो दादी अम्मा की दुआएं भी लेती है और बड़ों को निहायत अदब से तस्लीम भी करती है। यही तो हमारे लखनऊ की असल खूबसूरती है। ये शहर वक्त की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन अपने बाबा व अजदाद की विरासत को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखता है। आज नए लखनऊ में आलीशान मॉल्स हैं, कैफे हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, जगमगाती रोशनी है और एक तेज रफ्तार है, लेकिन पुराने लखनऊ का अक्स अब भी इसके कदम ब कदम साथ चलता है। रूमी दरवाजा आज भी अपनी अजमत के साथ सीना ताने खड़ा है, इमामबाड़े आज भी गुजरे दौर की दास्तान सुनाते हैं और चौक की गलियां अब भी मुस्कुराकर राहगीरी का इस्तकबाल करती हैं। ये शहर लिबास बदलता है, मिजाज बदलता है, मगर अपनी रूह कभी नहीं बदलता। तो जनाब लखनऊ महज एक शहर का नाम नहीं, लखनऊ तो एक एहसास है, एक दिलकश अंदाज है, एक पाकीज़ा रवायत है, फिजा में रची बसी एक सौंधी सी खुशबू है, एक मखमली आवाज है, एक लाजवाब जायका है, और इन सब से बढ़कर लखनऊ एक जीती जागती तहजीब का नाम है। यहाँ बोलने वाली जबान भी जिंदा है और चखने वाली जबान भी। यहाँ लफ्जों में शीरी बयानी है और पकवानों में बेपनाह लज्जत और मोहब्बत। यहाँ शायरी आज भी महफिलों में सांस लेती है और अदब रोजमर्रा की गुफ्तगू में नुमाया होता है। यहाँ पान सिर्फ एक गिलौरी नहीं, मेजबान की मेहमान नवाजी है। यहाँ चाय सिर्फ एक प्याली नहीं, दिलों को जोड़ने का बहाना है। यहाँ चिकनकारी सिर्फ कपड़े पर सुई धागे का हुनर नहीं, हमारी सदियों पुरानी साझी विरासत का अक्स है। और यहाँ पहले आप महज दो लफ्ज नहीं बल्कि जिंदगी बसर करने का एक मुकम्मल फलसफा है। कितना मुख्तसर सा जुमला है, पहले आप, मगर इन्हीं दो लफ्जों के साए में लखनऊ की सदियों पुरानी तहजीब सांस लेती है। दूसरों को तरजीह देना, खुलूस और अदब से पेश आना और रिश्तों को पाकीजगी से निभाना, यही इस शहर का असल हुस्न है। जब तक इस शहर के किसी कूचे में कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को दुआओं से नवाजता रहेगा, जब तक किसी आशियाने के दस्तरखान पर मेहमान की मिन्नत व असरार से तवज्जो होती रहेगी, जब तक किसी अदबी महफिल में कोई शायर अर्ज किया है कहकर आगाज गुफ्तगु करता रहेगा, जब तक किसी छोटी सी दुकान पर खरीदार को हुजूर कहकर पुकारा जाता रहेगा, और जब तक यहाँ के किसी मोड़ पर कोई अजनबी मुस्कुराकर कहता रहेगा जनाब पहले आप, तब तक हमारा लखनऊ जिंदा रहेगा, उसकी तहजीब भी, उसकी शीरी जबान भी, उसका बेमिसाल जायका भी और उसकी ये नायाब शनाख्त भी। इसी मौके पर अवध की इस नफासत को बयां करता एक दिलनशी शेर याद आता है। इस अदा से उसने मुझे सलाम किया, इस अदा से उसने मुझे सलाम किया, एक ही आन में गुलाम किया। इसी अदब, इसी नफासत, इसी बेपनाह मोहब्बत और इसी मुनफरिद लखनवी अंदाज के साथ इरम को इजाजत दीजिए। आदाब।
1: लखनऊ की बोलने और खाने वाली जुबान। अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू कार्यक्रम में। प्रेजेंटर थी इरम मिर्जा और कार्यक्रम की पेशकश थी आसिफ इकबाल की। श्रोताओं, आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से ही नशर किया जा रहा था। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजेश त्रिपाठी के गाए भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति में सुनिए ये निर्गुण।

लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं राजेश त्रिपाठी के गाए भोजपुरी लोकगीत। अभी आपने सुना इनके स्वर में ये निर्गुण, और लीजिए अब प्रस्तुत है ये देशभक्ति गीत।

0: लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजेश त्रिपाठी के गाए भोजपुरी लोकगीत, अभी आपने सुना इनके स्वर में ये देशभक्ति गीत। आपके साथ संगत करता थे ढोलक बजाई अनिल कुमार मिश्र ने, हारमोनियम पर संगत कर रहे थे संतोष तिवारी, बांसुरी बजा रहे थे दिगंत सैकिया और साइड रिदम दिया गौरव गुप्ता ने। श्रोताओं, अब आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 10:01 और 43, 44, 45 सेकंड्स हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम

इस संगीत का। तो आइए आपको 90s के दौर में एक बार फिर लिए चलते हैं और सुनवाते हैं फिल्म आशिकी का एक खूबसूरत सा नगमा अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजों में।

0: दोस्तों, कुमार सानू के गाए फिल्म दिलवाले के इसी गीत के साथ अब आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपने रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केइको फुजिमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब समाचार विस्तार से। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की 6 दिवसीय राजकीय अंतिम यात्रा तेहरान में आज से शुरू होगी। अधिकारियों को इसमें लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।
2: ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिगफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ

0: प्रतिनिधि वे अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। ये अंतिम संस्कार 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामनेई की मृत्यु के बाद हो रहा है। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय में पूर्व विदेशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि श्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में होंगे।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री मोदी की ये इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है। इस दौरान श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता जाने का भी कार्यक्रम है। योग्यकार्ता में श्री मोदी प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि मलक्का जलडमरू मध्य समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया ने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यात्रा के दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दोनों नेता इस दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के समापन में श्री मोदी 10 से 11 जुलाई तक न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान प्रमुख व्यापार और खेल जगत की हस्तियों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए दुर्गा प्रसाद।
1: गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ITIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। 51 वर्षीय फुजिमोरी पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी की बेटी हैं और चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं। थी इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के सर्वोच्च चुनाव प्राधिकरण ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेज को हराया। पहले दौर के मतदान में दोनों उम्मीदवार 33 अन्य उम्मीदवारों से आगे चल रहे थे। इस बार के चुनाव में अपराध एक प्रमुख मुद्दा था। मोल्दोवा के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मुंटेनू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अलेक्जेंडर मुंटेनू को राष्ट्रपति माया सांडू ने नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मुंटेनू ने अपने इस्तीफे का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। राष्ट्रपति माया सांडू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि जल्द ही नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तब तक मुंटेनू अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। राष्ट्रपति सांडू विभिन्न संसदीय दलों से परामर्श

0: के बाद नए प्रधानमंत्री का चयन करेंगी। अमेरिका आज अपना 250वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 4 जुलाई को 1776 में आज ही के दिन अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उस समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वाधीनता की औपचारिक घोषणा की थी। स्पेन और फ्रांस के कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी के कारण कई जंगलों में आग लगी हुई है, जिससे दक्षिण यूरोप में सूखे की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। स्पेन में कैटालोनिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जंगल में लगी भीषण आग अब भी बेकाबू है, जिससे लगभग 2300 हेक्टेयर भूमि की वनस्पति नष्ट हो गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में लू के कारण 3700 लोगों की मौत हुई है, जबकि स्पेन में गर्मी के कारण जून के अंत से अब तक 1000 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हरा दिया है। कोलंबिया के जॉन एरियास ने 14वें मिनट में मुकाबले का एकमात्र गोल किया। अंतिम 16 के मैच में अब कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उन्होंने अपने करियर की 105वीं जीत दर्ज की। 7 बार के चैंपियन जोकोविच ने फ्रांस के आर्थर रिंडर कनेच को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलियासिम ने अमरीका के माइकल झेंग को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस बीच महिला सिंगल्स में अमरीकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला और कोको गॉफ के साथ साथ जापान की नाओमी ओसाका भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की 6 दिन की राजकीय अंतिम यात्रा आज से। गुजरात के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रूढ़िवादी नेता केको फुजीमोरी ने पेरू का राष्ट्रपति चुनाव जीता। फीफा विश्व कप में कोलंबिया, अर्जेंटीना और मिस्र अंतिम 16 में पहुंचे। और नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में करियर की 105वीं जीत दर्ज कर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। श्रोताओं, समय है चित्रपट संगीत का, तो आइए आपको लिए चलते हैं नए तरानों की ओर और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म हाईवे के एक खूबसूरत से गीत के साथ। इस गीत में आवाजें हैं सुल्ताना और ज्योति नूरून की।

राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा का गाया गीत सुन रहे थे आप फिल्म माई नेम इज खान से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है तुम्हारा से। गीत में आवाजें अलका याग्निक, उदित नारायण की हैं, संगीत नदीम श्रवण का और बोल लिखे हैं समीर ने।

हैप्पी न्यू ईयर, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल तो पागल है से। गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। संगीत दिया है उत्तम सिंह ने और इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए फरमाइशी फिल्म नगमों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।

0: चंदन खेड़ा मोरावा उन्नाव से।
1: क्या नाम है आपका?
0: कृष्णपाल।
1: वाह कृष्णपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्रोग्राम में। फरमाइश के गीत बताएं
0: जी। आवाज सर कम आ रही है
1: जी। गीत बताएं, मुझे आपकी आवाज ठीक सुनाई दे रही
0: जी।
1: गीत बताएं, किस फिल्म का है, कौन सा गाना है?
0: मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया।
1: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ सर, नमस्ते
0: नमस्ते, कहाँ से फ़ोन किया है आपने?
1: हम सर

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: जी राकेश जी, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, मानसून 10 तक दे चुका है।
0: हाँ, अब तो जी। वैसे भी खूबसूरत हो गया है मौसम। कैसा लगता है ये प्रोग्राम आपको?
1: जी बढ़िया है, मौसम भी अच्छा है और अभी जो हमारे शाम शाम को बारिश हो जाती है और दिन को जो है हवा चल रही है।
0: हाँ
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आमद का। गाना बताएं कौन सा सुनवाना है?
1: जी सर, तुम बिन खास गाना सुनना है, छोटी छोटी रातें।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जामनगला काचियान पोस्ट औरंगाबाद जिला काचियान उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साहब से बात कर रहा हूँ।
0: वाह, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।

0: बेहतर, आप सुनाइए और आकाशवाणी परिवार में सब
1: सब लोग बहुत अच्छे से हैं।
0: और मौसम कैसा है लखनऊ में?
1: ठीक है, बेहतर है, अब तो थोड़ा सा ठीक है।
0: तो यहाँ तो धूप और छांव का खेल चल रहा है सर जी, हल्की बारिश हो रही है।
1: हाँ, कहीं कहीं बरसात भी हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका। गाना कौन सा सुनवाना है आपको?
0: मजबूर फिल्म है, मेरे सनम तेरे सर की कसम।
1: अच्छा।
0: और कुछ नाम ले सकता हूँ?
1: जी जी बिल्कुल बताएं।
0: अजय शर्मा, रोशनलाल साहब के हैं, वेदराम साहब के हैं, महिपाल सुरेश, मुन्नालाल और अनप्रिया और कुछ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: जय माता दी।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंश में लगोला।
0: जी पूरन जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर बढ़िया हूँ। और आपके वासन जोरी बच्चे हो गए?
0: घर में सब ठीक ठाक हैं?
1: सब बढ़िया, आप सुनाओ।
0: बस दुआएं, आपका आशीर्वाद है। गाना कौन सा सुनवा?
1: जी सर, फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है और गाने के बोले मौसम मौसम लवली मौसम और इस मौसम में एक दो मित्रों को याद कर लो आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताएं नाम बताएं।
1: जी सबसे पहले तो आप है।
0: अच्छा
1: हाँ जी, थैंक यू। आपके लिए रहेगा। और मेरा दोस्त है मिंटू तिवारी जी है, आपका कार्यक्रम लाइव सुन रहे हैं। जितने भी कॉलर लाइव आपके जुड़ने वाले हैं तमाम श्रोता के लिए
0: थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रही?
1: सर अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। कहाँ से फ़ोन किया आपने, कौन बोल रही?
1: कहती हैं सर, लोगों को हंसना हंसाना काम है मेरा, लोगों को हंसना हंसाना काम है मेरा, चांद सितारे रहते हैं मेरे झोली में, इसलिए शबनम अब्बासी नाम है मेरा।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हो और आपके परिवार में स्टाफ के सभी लोग कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, गर्म है मालिक का, बहुत अच्छे दिन, अच्छा मौसम भी अच्छा है।
1: आप आए और सॉन्ग बजाया, बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज कौन सा गाना सुनवाना है
1: जी?
0: आज कौन सा गाना
1: आपके लिए? दो लाइन है
0: जी।
1: जी कहते हैं, सुना है तेरे शहर में वफा मिलती है, सुना है तेरे शहर में वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है, बस यही सुनकर आए थे तेरे शहर में, सुना है तेरे शहर में दिल लगाने की सजा मिलती है। सर फिल्म का नाम है सूरज, जो गाने पे बोले आगे प्यार पीछे प्यार, प्यार का दे दे सिग्नल यार। सर दो नाम है जैसे,
0: हाँ,
1: मैं और सबसे पहले आप और सारू नूर अंसारी।
0: बहुत शुक्रिया, आप सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप?
1: सर जी मैं बढ़िया हूँ, आपकी दुआ पर, भगवान की कृपा से। और मैं इस बार से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
0: हाँ, ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है। आप सुनाइए
1: जी, जी।
0: गाना कौन सा सुनवाए आज?
1: फिल्म का नाम है फागुन।
0: अच्छा,
1: और गाने के बोल हैं बरसो रे बेरी बदरवा बरसो।
0: वाह, बहुत अच्छी फरमाइश है आपकी।
1: जी जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए गाना सुनिए।

0: जी विनीत कुमार बोलन, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर।
1: वाह, क्या हालचाल है आपके?
0: ठीक है, बढ़िया सर। धान की रुपाई चल रही मेरे खेत में।
1: अच्छा,
0: वाह पर
1: चलिए, बहुत धन्यवाद कि आपने काम। जी जी,
0: पेड़ की छाव में तो
1: आए है, क्या बात,
0: फोन लगाते लग गया।
1: वाह वाह, ईश्वर का धन्यवाद करना। गाना कौन सा सुनवाना है आज?
0: शुरू हो रही है प्रेम कहानी, दूध का कल फिल्म का गाना है।
1: अच्छा,
0: और दो तीन मित्र हैं।
1: हाँ बताएं, नाम बताएं।
0: ओमकार सीतापुर से, रिंकी पिंकी रायबरेली से हैं, सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से, पूनम कानपुर से हैं, ममता हरदोई से हैं, और संतोष मौर्य हरदोई से हैं, जिसे सुन रहे सभी के लिए।
1: आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, मुझे लगता है कि टेलीफोन में कहीं कुछ कनेक्टिविटी में गड़बड़ है, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही नहीं पहुँच रही। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, इतना इंतज़ार क्यों कर, बड़ी मुश्किल से तो फ़ोन कॉल लगता है।
1: जी सर, मैं ग्राम बिड़ोरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से लोकिन गुर्जर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद लोकिन जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल सर जी, बढ़िया है।
0: गाना बताएं।
1: सर जी, आपके आने से कार्यक्रम बहुत अच्छा हो जाता है। आज के दिन तो बहुत अधिकतर कार्यक्रम सुनता हूँ शनिवार को।
0: अच्छा,
1: क्योंकि आपकी ड्यूटी लगती है तो बहुत शानदार गीत आप बजाते हो, थोड़े थोड़े गीत बजाते हो और कॉल ज्यादा शामिल करते हो,
0: जी जी,
1: तो इससे बहुत मुझे खुशी होती है।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज गाना कौन सा सुनवाना है
1: जी सर?
0: गाना बताएं।
1: गाना सर जी, दिल ही की मानता नहीं का एक गीत है, मैनो इख्तियार लग गया रोग, मेरे बचने की नहीं है उम्मीद, और दो चार दोस्त है सर जी।
0: हाँ बताएं, नाम बताएं।
1: और जयपाल यादव जी हैं, और पहले तो आपको, फिर जयपाल यादव जी हैं, सतीश जी हैं फरीदाबाद से, और चांद मोहम्मद जी, उदिता और पूनम जी।
0: थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: देखिए, आपकी जो रेडियो सेट पीछे बज रहा है उसका आवाज़ थोड़ा सा कम करें ताकि आपसे बात हो सके ठीक से। जो आपके बैकग्राउंड में जो गाना प्ले हो रहा है उससे जरा सा आवाज़ उसको वॉल्यूम डाउन करें।
1: उत्तर प्रदेश से मूवी का नाम है हम गाने बोले कागज कलम दबा चलाइए सुनवा दीजिए सर जी। और गर्मी सर्दी की बारिश का मौसम चल रहा है तो अभी तो पकौड़े कौड़े खाना चाहिए।
0: थैंक यू।
1: चाय पीनी चाहिए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लीजिए गाना।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से फ़ोन किया है
1: मैं जबलपुर एमपी से अशोक कुमार बोल रहा था।
0: जी? अशोक जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छा, कैसे चल रहा है कारोबार? ठीक चल रहा है?
1: अभी ठीक है, ठीक ठीक है।
0: वाह, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी दूर से तशरीफ लाए हैं आप। गाना कौन सा सुनवाएं?
1: फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। दिल तो है, दिल दिल का एतबार
0: क्या
1: क्या।
0: बात, क्या बात।
1: और मैं ये कहना चाह रहा था सर कि
0: हाँ जी, हाँ
1: आपकी
0: जी,
1: प्रस्तुति बहुत अच्छी है और
0: अच्छा,
1: सबको
0: थैंक
1: थोड़ा
0: यू।
1: थोड़ा प्रसाद देते जा रहे
0: थैंक
1: हैं। क्या समस्या ये रहती है सर कि श्रोता जो है एक दूसरे का नाम भी लेते हैं, फिर शायरियां करते हैं, तो उसमें से टाइम खराब होता है।
0: टाइम वेस्ट होता है। जी,
1: पर बस उनसे यही विनती है कि बस अपना वो जो खास चीज है वही बोले, बाकी
0: बहुत बहुत
1: दूसरों को भी
0: शुक्र,
1: वक्त दें।
0: बहुत शुक्रिया आपका। लीजिए, गाना सुनिए।

0: हेलो
1: जी सर जी को नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? सर ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: रामबाबू जी कैसे हैं आप?
1: जी सर बहुत बढ़िया हूँ और बारिश भी हो गई है तो आनंद आ रहा है, मौसम चकाचक है इस समय।
0: फिर तो प्रोग्राम के क्या कहने, बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला इस प्रोग्राम के लिए।
1: जी सर क्या है, थोड़े फ्री हो गए हैं, अभी धान लगाने को तो रही है लेकिन फ्री समय में फोन लगाते हैं और ट्राई करते ही रहते हैं, लखनऊ के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाना बताएं।
1: जी सर नगीना का सुनवा दीजिए, भूली बिसरी एक कहानी, और सर कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा।
0: हाँ उनका नाम बताएं।
1: जी सर केसरी सिंह राजपूत जी सुन रहे हैं, गजराज सिंह लोधी जी सुन रहे हैं, भगवान सिंह परमार जी, भारत सिंह अहरवाल जी, आशुतोष देवनाथ जी, संगीता देवनाथ जी, अविनाश जी और हमारी पूनम जी सुन रही हैं और पूर्णिमा जी सुन रही हैं, और सर आपके लिए रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सब दोस्तों को, आप सबकी पसंद आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रही?
1: मैं पूनम बोल रही हूँ सर, कानपुर से। बताएं कैसे
0: हैं
1: सर?
0: पूनम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं?
1: बहुत बढ़िया है। और काफी दिनों बाद एक हफ्ते में आपसे बातें होती हैं और एक हफ्ते बाद आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
0: मुझे भी शनिवार का इंतजार रहता है और आप सबका, क्योंकि इतनी अच्छी बातें होती
1: हैं। मुझे भी रहता है क्योंकि आप एक हफ्ते में एक ही बार आते हैं। मैं तो सोच रही थी कि आप अगर हफ्ते में दो तीन बार आए तो कम से कम सभी का कॉल बहुत आसानी से लगेगा।
0: चलिए कोशिश करेंगे।
1: जी,
0: बहुत धन्यवाद।
1: और सर कैसा है मौसम आपके यहाँ?
0: हाँ ठीक है, थोड़ा बेहतर है, आज बेहतर है थोड़ा सा।
1: ज्यादा वैसे बारिश नहीं हो रही है।
0: हाँ, बरसात भी पिछले दिनों तो हुई थी।
1: जी बिल्कुल,
0: थोड़ा राहत तो मिली है।
1: बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो सर राहत मिली है, जैसा कि बारिश हर जगह हो रही है थोड़ी थोड़ी करके।
0: जी जी जी
1: तो बादल महाराज ना सभी जगह थोड़ी थोड़ी करके ही सभी को राहत दिला रहे गर्मी से।
0: थैंक यू पूनम जी। गाना
1: जी
0: बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: चलिए गाना बता देती हूँ सर। गीत है फिल्म का नाम सपने साजन के, और गीत के बोल हैं, कहता है ये मौसम छा रही है कहीं पे घटा और हर जगह पे घटा छा रही है सर।
0: जी
1: ये
0: जी
1: गीत
0: जी
1: सुना दीजिएगा और आपको गीत डेडिकेट है।
0: थैंक यू।
1: और हमारे जितने भी लाइव सुन रहे हैं कुछ तुम कहो कुछ हम कार्यक्रम को सभी को डेडिकेट।
0: थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग
1: जी। मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, आसाम से तालुकात है।
0: कैसे हैं आप?
1: जी मसाला बहुत अच्छा, बहुत ट्राई किया।
0: अच्छा,
1: मतलब आखिर आपने फोन उठा ही लिया। तो मेरा तो एकदम फर्स्ट में मेरा कॉल लगा था, रिंग हुआ।
0: अच्छा,
1: 11 बजे तो रिंग छूट गया।
0: ओके, लेकिन देखिए आपने कोशिश की तो कामयाबी मिल गई। जी जी।
1: और दुनिया के रैन बसेरे में, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितना दिन रहना पड़ेगा, रहना है। जीत ले सबके दिलों को, यही जीवन का गहना है।
0: वाह,
1: है ना?
0: वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आपका।
1: बहुत अच्छा लग रहा है आकाशवाणी लखनऊ में फोन लगाना, क्या होता है, बहुत बहुत एक गजब के क्षण होता है। और जब लाइन मिलता है, हेलो।
0: हाँ अनूप जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको।
1: हेलो
0: जी जी, अनूप जी बताएं, गाना बताएं।
1: हेलो,
0: हाँ अनूप जी गाना बताएं। हेलो अनूप जी गाना बताएं। हेलो हेलो, ओहो अनूप जी से बात करते करते डिस्कनेक्ट भी हो गया फोन। चलिए अनूप जी, आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का एक गीत।

0: इंद्र जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है
1: जी? बढ़िया है, आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपकी, बताएं गाना कौन सा सुनवाना है?
1: मूवी रहेगी मिस्टर आजाद, गाने के बोल रहे हैं कि दिया दिया ये दिल तो दिया। सर जी, कुछ मित्रों के नाम ले सकते हैं?
0: हाँ हाँ बताएं, बिल्कुल बताएं।
1: सबसे पहले तो आप हैं, दीप्ति मैम है, पूजा बिमल मैम है, और उसके बाद में बेटा सिंह यादव जी हैं, रोहित भाई हैं, ओमकार भाई हैं, मनकाई से फूलचंद पाल जी हैं, सुनील भाई हैं, दिनेश पाल जी हैं, और मिंटू तिवारी जी हैं, और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोग लिए, और हमारी बहन है गुड़िया देवी, प्रिया देवी।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबी फेहरिस्त है आपके दोस्तों की, सबको थैंक यू बोलना। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो। हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: माता जी नमस्कार।
0: बहुत बहुत नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित करीब 16 साल पुराना श्रोता मैं तिवारी बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा प्रोग्राम?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आप राजभाई बोल रहे हो।
0: हाँ राजेश्वरी नाम है।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी आवाज़ लगती है और बहुत समय के बाद आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ।
0: गाना बताएं।
1: जी गाना है बारिश फिल्म का गीत है और गीत की बोल इस तरह से है कि आग लगी तन मन में जब पानी ब...

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: सर एमपी मंडला से बबीता वघेल।
0: जी बबीता जी, कैसी हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपकी। क्या करती हैं आप?
1: जी
0: क्या काम, क्या करती हैं आप?
1: सर, हम तो हाउस वाइफ हैं।
0: अच्छा, ठीक। घर में सब लोग ठीक हैं?
1: सब बढ़िया है।
0: गाना बताइए, कौन सा सुनवाना है?
1: गाना है सर भयानक मूवी का, भीगा भीगा मौसम आया।
0: अच्छा,
1: और ये डेडिकेट रहेगा आपको और हमारे दादा अनुप कुमार भट्टाचार्य जी को, मांगीलाल चंदेल जी को और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: राम प्रसाद, ग्राम हरदी, जिला हरदोई से।
0: अच्छा, क्या हाल चाल है
1: सर? अच्छे हाल चाल है।
0: गाना बताएं।
1: गाना जरा मजनू का है। एक सिंह साजाद की झनकार के शब्द पर।
0: अच्छा,
1: और सभी को सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिल हिट रहेगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं जिला बैठक कैसर से हबीब मंसूरी बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या हाल है हबीब भाई?
1: हबीब मंसूरी
0: सब खैरियत से हैं?
1: ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। गाना बताएं भाई।
1: सर फिल्म का नाम है सरस्वती चंद, तो गाने का बोले फूल तुम्हें भेजा है खत में।
0: अच्छा
1: सर दो चार मित्र हमारे दे देकर करना
0: चाहते हैं। हाँ नाम बताएं, बिल्कुल बताएं।
1: सर सबसे पहले तो आप,
0: अच्छा
1: उसके बाद अभिनाश जी हैं, कानपुर से पूनम दीदी हैं, रायबरेली से रिंकी पिंकी हैं, अभिनाश जी हैं, गुजरात लोधी जी हैं। सर जितने लाइव पसंद है सभी को दे देकर।
0: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते
1: जी। सर नमस्कार,
0: क्या हालचाल है? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से फोन किया है?
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से आपका दोस्त मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। सर
0: बेटा जी, क्या हालचाल है?
1: बस सर बढ़िया है, और ये मानो 11 बजे सुनवाई करते करते पूरा पसीना छूट गया है और अभी जाके फोन लगा है सर।
0: चलिए, मेहनत रंग लाई, आपकी कामयाब हो गई आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो पूरा जो भी है वो तोड़ दिया था कि लगता है फोन नहीं लग पाएगा, लेकिन सर पकड़ ही लिए हैं आपको।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका भाई। गाना बताएं
1: जी सर। फिल्म खराब रहे अंदाज और गीत की बोल रहे का आए का मजा अब्बर साहब का, और मनीष चंदेल साहब जी हो गए, पूजन मनकारी से हो गए, जितेंद्र पाल हो गए, और मणिराम पाल हो गए, और चित्रकूट धाम से हमारे दिनकर भाई हो गए।
0: आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार
1: सर। राधे राधे।
0: जय श्री राधे राधे। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश।
0: वाह वाह वाह जी, केसरी जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, और आज गाना सुनेंगे सर, आंखें मूवी का।
0: अच्छा।
1: मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जो अपने देश के वीर जवानों को डेडिकेट रहेगा, जो
0: वाह वाह
1: सावन में रक्षाबंधन पर छुट्टी नहीं मिल पाती उनको।
0: बहुत अच्छा संदेश इस प्रोग्राम के जरिए आप उनके लिए भेज रहे हैं, सीमाओं पर जो लोग।
1: जी सर, और आप कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत सुपर फास्ट ट्रेन छूटी है 11 बजे से 12 बजे तक, और श्रोताओं को नाम भी लेने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब बहुत कॉलर जुड़ रहे हैं, और मैं भी ज्यादा समय जाया ना करते हुए बस राम बाबू शर्मा जी, गजान लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, और सारून अंसारी जी, और अविनाश तेली जी, और आप सुनेंगे।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दोस्तों का भी धन्यवाद, और जिन लोगों के लिए ये गाना आप भेजना चाहते हैं उन तक भी गाना पहुंच रहा है। लीजिए सुनिए।
1: थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की

श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने टेलीफोन भी किया और अपना कीमती वक्त भी दिया और प्रोग्राम भी सुना, इंतज़ार भी किया, धैर्य भी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ईश्वर ने चाहा तो अगले शनिवार को फिर आपसे भेंट होगी। आज आज्ञा दीजिए राजेश्वरी को। बहुत बहुत नमस्कार।

श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने टेलीफोन भी किया और अपना कीमती वक्त भी दिया और प्रोग्राम भी सुना, इंतज़ार भी किया, धैर्य भी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ईश्वर ने चाहा तो अगले शनिवार को फिर आपसे भेंट होगी। आज आज्ञा दीजिए राजेश्वरी को। बहुत बहुत नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। चित्रपट संकेत।

आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में मन फिल्म का एक गीत। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और धुन बनाई थी संजीव दर्शन ने। आइए अब राज फिल्म का एक गीत अलका याग्निक के स्वर में, शब्द रचना समीर की है और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म में भी आप उदित नारायण और श्रेया घोषाल को सुन रहे थे। गीत समीर ने लिखा था और धुन बनाई थी नदीम शमर ने। सपने साजन के इस फिल्म का गीत आपके लिए आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं, बोल समीर के हैं और धुन नदीम श्रवण की।

दिल तेरा आशिक। इस फिल्म में भी आप कुमार सानू और अलका याग्निक को सुन रहे थे। शब्द रचना समीर की थी और संगीतकार थे नदीम शौर्ण। आइए प्रोग्राम के आखिर में आनंद मिलन के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ ये गीत सुनिए। फिल्म का नाम है अनाड़ी और आवाजें उदित नारायण और साथियों की है।

0: उदित नारायण और साथियों की गाई फिल्म अनाड़ी के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। 12:30 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

कश्मीर की गली। इस फिल्म में भी आप मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले को सुन रहे थे। गीत के बोल लिखे थे एस एच बिहारी ने, धुन बनाई थी ओ पी नैयर ने। आइए अब साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। फिल्म का नाम है इज्जत।

इज्जत फिल्म का गीत आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में सुना। गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनते हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं। फिल्म का नाम है एक नज़र।

आपकी कसम, इस फिल्म में भी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत आर डी बर्मन का था। आइए अब थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म का एक गीत आपके लिए। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है खयाम ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म प्रेम कहानी के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमों का प्रोग्राम अब

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म प्रेम कहानी के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमों का प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। एक बजने को है, अब कुछ ही पलों में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉ अनिल मिश्रा द्वारा किए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की

0: एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। नौशाद अंसारी पुत्र श्री आलमगीर निवासी चौरी नई बस्ती भदोही से हमें सूचित करते हैं कि शकीला, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, कद लगभग 5 फीट, रंग गोरा है। शकीला पिछले 9 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी शकीला के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। नौशाद अंसारी पुत्र श्री आलमगीर निवासी चौरी नई बस्ती भदोही। राजेंद्र प्रसाद पुत्र श्री दयाशंकर निवासी इब्राहिमपुर थाना गोपीगंज भदोही से हमें सूचित करते हैं कि मनीषा कुमारी, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा है। मनीषा कुमारी पिछले 16 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी मनीषा कुमारी के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। राजेंद्र प्रसाद पुत्र श्री दयाशंकर निवासी इब्राहिमपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही। साहब लाल शर्मा पुत्र श्री अमृत लाल निवासी नागमलपुर सूर्यावा जनपद भदोही से सूचित करते हैं कि खुशबू, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गोरा और चेहरा गोल है। खुशबू पिछले 8 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी खुशबू के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। साहब लाल शर्मा निवासी अमृत लाल नागमलपुर पुलिस थाना सूर्यावा जनपद भदोही। हरिशंकर दुबे पुत्र श्री शिव प्रसाद दुबे निवासी ग्राम सरोई जनपद भदोही से हमें सूचित करते हैं कि जयप्रकाश दुबे, जिनकी उम्र 41 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। जयप्रकाश दुबे पिछले 15 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी जयप्रकाश दुबे के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। हरिशंकर दुबे पुत्र श्री शिव प्रसाद दुबे निवासी ग्राम सरोई जनपद भदोही। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।

घर आंगन माहे बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और

0: होए भरमार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के दो रोजा दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जनाब नवीन रियासती बीजेपी सदर पंकज चौधरी के साथ हवाई अड्डे से बीजेपी के रियासती दफ्तर तक रोड शो कर रहे हैं। पार्टी कारकुनों ने मुख्तलिफ मकाम पर उनका इस्तकबाल किया। नई रियासती बीजेपी टीम की तश्कील के बाद ये उत्तर प्रदेश का उनका पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और अहदेदारों से कई तंजीमी मुलाकात करेंगे। वो बीजेपी के अवामी नुमाइंदों और एनडीए कायदीन से भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान बीजेपी सदर तंजीम को मजबूत बनाने के लिए मुनक्कदा शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। जनाब नवीन रियासती कोर कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कल दोपहर वो प्रेरणा स्थल में शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महकमे सेहत और तिब्बी तालीम और मुख्तलिफ माहरीन के साथ एक आला सतही मीटिंग की और उत्तर प्रदेश स्टेट कैंसर टास्क फोर्स और उत्तर प्रदेश ट्रामा एंड इमरजेंसी नेटवर्क UPTEN की तरफ से पेश किए गए एक्शन प्लान का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के हर जिले में कैंसर के इलाज की सहूलियात की तरक्की और सड़क हादसात और दीगर हंगामी हालात में सुनहरी घड़ी के अंदर इलाज को यकीनी बनाने के लिए रियासत गिर मरबूत ट्रामा और इमरजेंसी नेटवर्क कयाम की हिदायत दी। एक रिपोर्ट।
2: उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाए। मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ी जाए। बैठक में बताया गया कि ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क के अंतर्गत एकीकृत चिकित्सा इकाइयों का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 95% आबादी को 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
1: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 रोजा मैंगो फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में आम की सयाहत को फरोग दिया जाएगा। इसे हासिल करने के लिए आम की तमाम इकसाम के लिए GI टैगिंग लगाई जाएगी। मेले में 50 ग्राम अंगूरदाना आम और 5 किलोग्राम वजनी गजानन आम तवज्जो का मरकज रहे। इस दौरान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
3: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाएं। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
1: वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर ज़रा शिवराज सिंह चौहान ने कल एक जायजा मीटिंग की, जिसमें अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों पर मामूल से कम बारिश और उसके असरात से मुतालिक सूरत हाल का जायजा लिया गया। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत अलनीनो की वजह से मुल्क के कुछ हिस्सों में मामूल से कम बारिश और मुमकिन खुश्क साली के हवाले से सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। उन्होंने वजारत ज़रात और तमाम मुतालिका वजारतों को हिदायत दी कि वह चौकस रहें और रियासती हुकूमतों के साथ तालमेल कायम करें ताकि किसानों को मुनासिब फसलों की बुआई के बारे में मशवरा दिया जा सके।

0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पीर 6 जुलाई 2026 को अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई अहम इंतजामी और माली मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें ट्रस्ट को मिलने वाले एहतियात की गिनती की जांच करने वाली खसूसी तहकीकाती टीम SIT के नतायज भी शामिल हैं। 8 जून 2026 को जारी करदा एक सरकारी नोटिस के मुताबिक ट्रस्ट के सदर की मंजूरी से खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी की तरफ से इजलास बुलाया गया है, क्योंकि इन मसाइल पर बहस और फैसले की जरूरत है। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे मनी रामदास छावनी अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश में होगी। एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से जमा कराए गए इस्तीफों पर गौर करना शामिल है। इस नोटिस में स्पीकर की इजाजत से किसी दूसरे मामले पर बहस का भी बंदोबस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट UPTET का दूसरा दिन कल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोजा इम्तिहानात के शफाफ और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। इम्तिहान के दौरान एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से AI कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तमाम इम्तिहानी मराकज की निगरानी की। कमीशन के चेयरमैन डॉ प्रशांत कुमार ने बताया कि UPTET इम्तिहान के आखिरी दिन आज एक ही शिफ्ट में इम्तिहान लिया गया। और श्री अमरनाथ यात्रा कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल रास्तों से शुरू हुई। तीसरा जत्था हफ्ते की सुबह यानी आज जम्मू के भगवती नगर में वाकई यात्री निवास से रवाना हुआ। कल रियासत के कई जिला में भारी से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कुछ जिला में मरतूब गर्मी जारी रही। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के मशरकी हिस्से के कुछ जिला में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। मगरबी जिला में गरज चमक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:15 हुए हैं। अब महिलाएं सुना अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम के सभी श्रोता पंचन का प्रतिभा त्रिपाठी की ओर नमस्कार और आप सभी के कुशलता की कामना के साथ कार्यक्रम में आप सबके स्वागत कर रहे हैं। और पंचो देखो इतनी बखत प्रकृति जोन है वही अपन उत्सव मनाए रही है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनावा जाते हैं। अच्छा प्रकृति जोन है देखो वही हम पच के हर सुख दुख उत्सव त्यौहार में शामिल होती हैं। बिरवन के पूजा के रूप में, नदी ताल कुइयाँ के पूजा के रूप में, पशु पक्षी के रूप में। अच्छा ऋतु परिवर्तन के जश्न जैसे कि होली है, संक्रांति है, जैसे पर्व जोन है यहोमा प्रकृति हमारे साथ शामिल होती। तो पंचों प्रकृति के हर रूप हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और जब यह प्रकृति हरी भरी रही तब है हम उपज फलप फूलप। तो यह से हम सब का अपनी प्रकृति का हमेशा सुरक्षित और संरक्षित करे का चाहिए और समृद्ध बनावे का देखो यह एक तरीका है भाई कि हरियाली जो है ना वही का खूब बढ़ावा जाए। काहे से कि प्रकृति के समृद्ध बनावे में हरियाली बहुत जरूरी है। हरे भरे जो वन है ना यह हमारे प्रकृति के हमारे धरती के धन है। काहे से कि देखो यह जो बिरवन है हरे भरे या बादल का देखो बरसात भाई नहीं के कारण आवत ये सब हम पंचन पढ़े हैं हाँ। और जोन बरसात के पानी होत है वही का धरती में रोके रखे की क्षमता होती इनके अंदर। तो एक तरह से हम कह सकी थन कि यह हमारे धरती मैया की प्यास बुझावत हैं। उनका जोन है धूप और जोन अनुपयोगी किरणें हैं जोन खतरनाक किरणें हैं उन्हों से देखो हम पंचन का बचावत है ना या बिरवन। तो भाई एक बिरवा से कितने लाभ होते हैं, कितने ज़्यादा प्रदूषण जो आजकल हो रहा है वह का या बिरवन जोन है सोखत है हमारी हवा का शुद्ध करते हैं। तो जब एक बिरवा से इतना फायदा होते हैं, इतना लाभ होते हैं, यही से हमारा जीवन स्वस्थ होते हैं। तो भाई हम सब का भी चाहिए ना कि हम अपनी प्रकृति से जो उनकी हमका उपहार स्वरूप इतने अच्छे अच्छे फल हैं, फूल हैं, वृक्ष हैं यह सब दे रही है। तो फिर हमहू जो उन्हें अपनी प्रकृति का वही के उपहार स्वरूप में एक दुईठो बिरवा भाई कम से कम अपने पूरे जीवन काल में जरूर लगाई है। और बिरवा लगावे के लिए यह समय जोन है मानसून के समय जगह कहा जाता है जोन मत को मानसून कहूँ कहूँ आए भी गवा है कहूँ आवे वाला है। तो सबसे सर्वोत्तम समय यह होते अनुकूल।

कुछ समय यह होते हैं काहे से कि यह मौसम में जोन बिरवा लगाए जाते ना तो वही अच्छे से चल जाते हैं, उनकी देखभाल बहुत ज़्यादा नहीं करे के पड़ा थी। तो आप सब भाई एक संकल्प जरूर लियो कि यह माँ कम से कम एक बिरवा तो जरूर लगाओ, और खाली लगावे का नहीं ना, जैसे हम कहे हैं कि वही का देखभाल भी करे के चाहिए। जोन तरह से हम पंचन छोट लड़कन के देखभाल करी थन ना, तो वह तान या बिरवन के भी देखभाल करे का चाहिए हमका, जौन की वही जीव जाए हैं। और एक बिरवा जौन है जब वही बड़ा हो जाते ना तो आप देखो वही जीवन पर्यंत हमका काका फाल फायदा देते, या तो हम सब जानी थे ना। यह से हमरे जोन बूढ़ बुजुर्ग हैं, जोन हमरे वेद पुराण है वही में बिरवन का पुत्र के समान कहा गया है, यानी हमरे संतान के समान होती बिरवा, तो वही की देखभाल भी करे का चाहिए। अच्छा चलो कार्यक्रम में आगे बत कही हम यह विषय पे करबे, कहे से कि बहुत लोगों के सामने यह समस्या होती कि भाई हमरे पास जगह नहीं ना, हम कौन से बिरवा लगाई कैसे लगाई, तो यहो पे चर्चा करबे। लेकिन अबहिन कार्यक्रम में जैसा कि आप सबका पता है आज शनिवार के दिन है, हमरे श्रोता पक्ष जो है ढेर सारी पाती और मेल हमका मिला है, अपने पसंद के गीत गवने सुना चाहते हैं, तो पहले उनके मेल शामिल कर ली, पाती शामिल कर ली, एक गीत सुन ली जाए फिर कार्यक्रम में आगे बत कही। तो सबसे पहला मेल जो हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में या हमारे पास भेजी नहीं, विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा, रिचा, सुरभि यादव, ग्राम व पोस्ट ललहुआ, जिला खीरी से, और लिखी नहीं कि इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, बहुत ज्ञानवर्धक होता है ये कार्यक्रम। और 18 जून के कार्यक्रम में जोन सुनवावा गवा वार्ता कि बेटी का दहेज नहीं शिक्षा और सुरक्षा करे भेंट, या वार्ता इनका बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी, बहुत पसंद आई। और साथ ही एक फरमाइश लिखी नहीं कि कोई भी विवाह गीत सुनवा दिया जाए। तो चलो भाई देखो लगन तो चलिन रही है, बहुत जने के घरे में गौन विवाह ठना भी हुई, तो आप सब श्रोता पंचन के लिए हम सुनवा रहे हैं एक सुहाग गीत, स्वर है श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी के।

और श्रोता पंचों, देखो भाई, हमका आशा है कि या जौन सुहाग गीत हम सुनवाएं वही हमारे श्रोता पंचन का पसंद आई हुई और कार्यक्रम में आगे बढ़ी। और जैसन कि हम कहते रहे कि भाई बिरवा हम कौन से लगाई, तो सबसे अच्छे बिरवा जौन होते हैं भाई, देखो वही हम सब हमेशा से सुनत चले आ रहे हैं कि पीपल है, बरगद है, आम है, या हमारे सेहत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लेकिन आज है क्या कि हमारे पास जगह नहीं ना, बहुत लोगों के पास भाई जगह की कमी है, काहे और कमी भी हम ही देखो किए हैं, कहे से कि हम हर जगह से भाई मिट्टी जो है ख़त्म कर करके का किए हैं कि ईंट गारा के जंगल बनाए लिए हैं ना, कंक्रीट के जंगल जगह कहा जाते हैं। तो अगर आपके पास जगह है तो हम तो यह कहेंगे कि भाई कम से कम अपने द्वारे पर, अपने सामने बाग बगीचा में एक ठो पीपल बरगद जरूर लगाओ, या पीपल जो है या आइस बिरवा है जिमा की सर्वाधिक ऑक्सीजन जैसे हमका मिलत ही। हाँ अभी देखो, जब कोनो घर परिवार में या कोनो आप अस्पताल में जाओ और कोनो मनई के ऑक्सीजन की जरूरत अगर पड़त ही, तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते छोट छोट वही कितने महंग मोल लेवे का पड़त है ना। जबकि प्रकृति की तरफ से हमका ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं बलुक हम या कहे कि पूरा कारखाना जो है वही हमका दिया गवा है, लेकिन हम पंचन यही कर मोले नहीं समझी था ना। और जहाँ देखो बस लगत है कि बिरवा है एका काट के खत्म करो, यहाँ एक जो है कोनो मकान बनाए लीन जाए, कमरा बनाए लीन जाए, हाँ यही के मोल नहीं समझी था। तो देखो अब भाई चेते के समय आए गवा है, तो अगर आपके पास जगह की कमी नहीं ना, तो आप जरूर लगाओ, एक ठो पीपल लगाओ, बरगद लगाओ, आम लगाओ। देखो आम जो है इसमें बड़ी शुभता होती, बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती, जब भी कोनो शुभ कामकाज घरे में होते है तो देखो आम के तोरण बांधा जाते, आम के पल्लों की जरूरत पड़ती थी, आम के लकड़ी की जरूरत पड़ती थी, कैसे कि आम के जो वृक्ष है पूरा ना वही के पंचांग यानी कि वही कर फल फूल पत्ती जड़ छाल सब कुछ जो है बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा होते हैं। तो आम के बिरवा भी लगा सकते हो आप, तो अपने भाई सुविधा अनुसार कोई एक बिरवा जरूर लगाओ। आगे ये के बाद हम और बात करेंगे कि यह के अलावा और कौन से बिरवा हम लगाए सकी थन, लेकिन पहले एक पाती ले ली और पसंद के गीत सुनवा दी। तो यह पाती हमारे पास आई है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। भेजे वाले हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू और रोही और स्वाति मौर्य। और यह लिखी नहीं कि कार्यक्रम इनका नीक लागत है और किसी भी गीत में शामिल कर ले, मैंने कि कोनो भी गीत के फरमाइश करी नहीं। तो चलो हम आपका सुनवाए रहे हैं पूजा सिंह तोमर के स्वरमा या दादरा।

और श्रोता बंजो, देखो आज जब हम बात कर रहे हैं प्रकृति संरक्षण की, और वही में अपन योगदान भी हमका देवे के चाहिए, लेकिन जैसा कि हम बताया कि बहुत लोगों के पास भाई जगह की कमी आजकल है, तो देखो गमला में कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि हर घर में लगाए जा सकते हैं, और पहले तो यह अनिवार्य रूप से हर घर घर में मिलतो रहन। वही में जो सबसे पहला पौधा है वही है तुलसी के बिरवा है। तुलसी के बिरवा देखो सिर्फ हमारे आस्था के प्रतीक नहीं ना, बल्कि हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। तो आप भी अब से भी भाई जिनके पास नहीं है, कोशिश करो कि एक तुलसी के बिरवा जरूर लगाओ। इसके अलावा आप जो इनका कहा जाता है ना लेमन ग्रास, जो उनकी नींबू वाला खुशबू जो ने पौधा में से आवा थी, और ये का देखे में कुछ कुछ या जैसे होते ना कुसा के बिरवा वैसे देखे में लागत थी, लेकिन बड़ी अच्छी खुशबू ये में होती। ये मक्का लोग जो है चाय में भी डाल के पिए थे, ये का काढ़ा बनावत हैं। तो तुलसी हो गवा, लेमन ग्रास हो गवा, यही का आप अपने गमला में लगा सकते हो। करी पत्ता है जेका कि मीठी नीम कहा जाते हैं, तो यह सब बिरवा जो है भाई बड़े आराम से आप गमले में लग भी जाते हैं, और यह कर आप नियमित उपयोग अगर करते हो तो यह हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। तो कोशिश करो कि नहीं ज़्यादा तो भाई यह बिरवा लगा लो, और बिरवा जो है भाई हरियाली तो हरे भरे तो लगभग करते देखे माँ, और स्वास्थ्य का भी लाभ पहुँचावत है, सुकून भी देते हैं। तो जरूर यह लगावे की कोशिश करो। और चलो यह के साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और मेल शामिल कर ले रहे हैं। यह मेल हमारे पास आवा है जिला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से। भेजे वाले हैं रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार, रक्षा मौर्य, रामसागर साहू, रसूलपुर वाले, रामचरण प्रजापति, और यह सब जने भाई जो मिलके लिखी नहीं मेल भेजी नहीं लिखी नहीं कि 2 जुलाई के जो कार्यक्रम रहा वही में इनका बहुत अच्छा लग, जो लोकगीत सुनावा गया वह बहुत पसंद आवा, और साथ में डॉक्टर नवनीत जायसवाल भैया जो जानकारी दीन मसूड़ों की बीमारी के कारण लक्षणों और बचाव के बारे में वही जानकारी इनका बहुत पसंद आई। तो भैया आप देखो इतने विस्तार से कार्यक्रम के बारे में प्रतिक्रिया भेजो, एक के लिए धन्यवाद, लेकिन आप अपन फरमाइश के गीत जो है वही नहीं लिखे हो। तो चलो जब अगली बार हमका मेल करो तो अपनी फरमाइश भी जरूर लिखियो। तो फिलहाल हम आप सबका सुनवाए रहे हैं संजोली पांडे के स्वरमा या झूबर गीत।

अच्छा देखो भाई, या लोकगीत सुनत भय हम या सोचत रहे कि जोन हमरे पेड़ पौधा हैं वो ही तुलना भी करे के बड़े काम आवत है, जैसे कि ननद जोन है वो मिर्ची जैसे लागत रही। खैर, या लोकगीत हैं, यह इनकी खासियत भी होती, यह इनकी सुंदरता भी है। और जैसे कि आप बताते हैं कि देखो

मल्ले में हम बहुत कुछ बिरवा लगाए सकित हन। वही सजावटी बिरवा हो सकत है, वही फूल वाले पेड़ पौधे हो सकत हैं। और गमले के लिए काम और किया जा सकत है कि देखो हमरे घरे में अक्सर कई के पुरान डब्बा है, कनस्तर है, जो उनकी बेकार हो जाते हैं ना, तो हम वही का भाई गमले के रूप में इस्तेमाल कर सकित हन। बस वही में का करे का है कि देखो मिट्टी और गोबर के से गमला तैयार कर लो, और वही में फिर चाहे कोनो फूल के बिरवा है, चाहे कोनो सजावटी बेल है, जैसे कि मनी प्लांट है, विष्णुकांता है, बोगनवेलिया है, या सब पौधे जो उन्हें ना देखे में सुंदर लगते हैं और घर की शोभा भी इनसे बहुत बढ़ जाती है, तो या बिरवा जरूर लगावे के चाहिए। और ये साथ साथ जो हमारे घर के पुराने डिब्बा डुब्बी हैं बहुत इस्तेमाल हो जाते हैं। तो भाई आप भी बताओ कि ये आप किए हो कभो कि नहीं। और चलो यह के साथ कार्यक्रम में हम अगला मेल भी शामिल कर रहे हैं। यह मेल आवा है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। भेजे वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा। रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा। मैं देखो इतने सारे लोग मिलके मेल करी नहीं, एक मैंने सब जने मिल के कार्यक्रम सुने थे, तो यह हमका बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम लिखी नहीं कि बहुत नीक लागत है इनका। और साथ ही मैं एक फरमाइश लिखी नहीं कि प्रिया पाल के स्वर में कोई लोकगीत सुनवा दिया जाए। तो चलो भैया आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं प्रिया पाल के स्वर में या लोकगीत।

माँ कि जोन जब पकत है ना तो आस पड़ोस तक हवा के साथ है मिलके जो ने चुगली कयावत है वो सबका पता चल जाता है कि भाई आज फला चीज जो ने घरे में पक रही है। हाँ, और अपनी रसोई में ऐसा है एक मसाला हम आज ले के आए हैं जो उनके सिर्फ मसाला नहीं है बल्कि या कहा जाए कि या शुभता और स्वास्थ्य के पर्याय आए या सेहत और रंगत के साथी आए, वह है हल्दी। और हल्दी लगभग भाई देखो हर घर में प्रयोग होती और जैसा कि हम कहें कि भाई शुभता के प्रतीक आए तब है तो देखो जब कोनो शुभ काम काज होते तो वही माँ हल्दी जरूर इस्तेमाल होती है। अब चाहे चिट्ठी पाती अगर आई हो और शुभ समाचार लेके आई है तो वहीं पर देखो हल्दी के छींटा पड़ा रहते हैं। यह तान से अगर शुभ काम काज के कपड़ा लत्ता मने लिए थे तो वह पे तनी से कोना में हल्दी लगा के तब पहरे थे। और सेहत की बात करी तो देखो हल्दी जो ने हमारे सेहत के लिए बड़ी फायदेमंद है, कोनो भी तरह के संक्रमण है कोनो तरह के चोट चपेट अगर लग जाती तो वही के भी यही माँ जो है कारगर इलाज मिलत है। और आप सबका याद भी हो कि देखो हमारी दादी अनानी हरे का करत रही कि हल्दी में प्याज पकाए के तेल पकाए के जो है चोटे पे बांध दें और भाई देखो नीको हो जात रहा। यह तरह से अगर मुंह में कोनो संक्रमण है दांत में कोनो समस्या है तो हल्दी नमक तेल मिला के और इसे दांत साफ करा जाए तो भाई हमारे मसूढ़े जो है दांत जो है वही स्वस्थ रहते हैं। जैसे कि हम कहा रंगत की बात तो देखो हल्दी जो है वही हमारी त्वचा के लिए भी बड़ी फायदेमंद है, हमारी त्वचा की रंगत निखार थी। और यह से शादी ब्याह में देखो हल्दी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म भी होती और शादी ब्याह से पहले जो बिटिया है वही का खूब हल्दी लगाई जाती जो कि दुल्हन के रंग रूप खूब निखर के आवते हैं। तो यह सब हल्दी के इतने गुण हैं कि जेका जितना भाई बखान किया जाए कम है। और यही के साथ साथ एक बात और भी है कि हल्दी वाला दूध जो है वो आप सब सुने हुई हो कि अगर कुछ भी नहीं अगर कर रहा है और अगर वो हल्दी वाला दूध ले रहा है तो वही से बहुत सारी तमाम समस्या से जो है वही का निजात मिल जात रहा। और हल्दी यही के अलावा समृद्धि के प्रतीक भी है। तब है तो देखो आप सब भी खूब अच्छे से यही का देखे होइयो जानत भी होइयो कि जब हमारे घरे की बिटिया विदा होती तो वही के खोइछा माँ सब चीज़ के साथ 5 गांठ हल्दी भी रखी जाती हैं जोने से भाई यह आशा है कि हमारी जो बिटिया है वही का घर द्वार सब जो है हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहे। तो देखो या तो बात भाई हल्दी के और आपका बताए कि हल्दी के बिरवा भी आप लगा सकते हो। जैसे कि आज हम बात किया कि भाई आप गमला में कुछ कुछ लगा सकते हो बिरवा तो वही में हल्दी भी है, बहुत से लोग लगावत हैं और बहुत सुंदर लगा थे यह बिरवा देखे में। और यही के फूल तो भाई का कहा जाए बहुत मुश्किल से देखा का मिलत है, कहे से कि लोग लगो भी नहीं करते ना। तो आप अब की बार एक काम करो कि हल्दी के बिरवा लगाओ और जब वही के फूल निकले तो आप जरूर बतायो हमका और साथ में भाई ईमेल में यह बतायो कि हल्दी के उपयोग आप कौन रूप में करत हो। तो चलो या तो भाई हल्दी के बारे में जानकारी और यह के साथ कार्यक्रम में एक और गीत हम सुन ले रहे हैं विदाई गीत इंदु सारस्वत के स्वर में। तो आप सब आनंद उठाओ या गीत के आरंभ।

और श्रोतापन जो चलो जरा आप एक फेरा अपने रसोई के लगा लिया जाए। देखो जो हमारी भारतीय रसोई है ना, वही सुगंध स्वाद और सेहत के खजाना होते हैं। ऐसे सुगंधित मसाले होते हैं हमारी रसोई।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और श्रोता पंचू, आप सबका याद दवाई दे ये भाई चलत चलत कि अगला शनिवार यानी कि 11 जुलाई के जो शनिवार है वही में कार्यक्रम हम लेके उबे। शब्द एक, गीत अनेक, जोने के कि शब्द है मेघ या फिर बादल। तो या शब्द से जुड़े भाई फिल्मी गीत के फरमाइश आप हमका मेल पर भेज सकत हो। तो बस यही के साथ कार्यक्रम के बिरिया समाप्त हो रही है। तो आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी का दियो अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, यह आकाशवाणी लखनऊ है। 1:50 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौज भाई, ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम था बेटी बेटे। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की थी। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का ये गीत साजन फिल्म से है। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। गीत आनंद बख्शी के और धुन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की है।

चरित्रहीन। फजू भाई, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आइए अब आशा भोसले के साथ किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है अभी तो जी लें, बोल नक्श लायलपुरी के हैं, धुन सपन जगमोहन की।

अभी तो जी लें। आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे नक्श लायलपुरी ने और धुन बनाई थी सपन जगमोहन ने। आइए फौजी भाइयों, कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी,

फौजी भाइयों, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के गाए मन की आंखें फिल्म के गीत के साथ ही आज के फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: ये था कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 2:15 होने को हैं। अब दोपहर समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने

0: संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त

0: उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर

0: अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 2:30 हुए हैं। विज्ञान और किसान श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में भिंडी की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर श्री धर्मेंद्र नाथ पांडे के साथ की गई एक भेंटवार्ता आपको सुनवाते हैं। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन जहां आप कर रहे हैं वहां इस मौसम में भिंडी की खेती कैसे करें, इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं बागवानी विशेषज्ञ डीएन पांडे साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। पांडे साहब, ये बताएं कि जहां भिंडी उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन इस मौसम में, तो क्या सलाह है?
4: किसान भाइयों बहनों, सादर नमस्कार। भिंडी हमारी जायद और खरीफ दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये पौष्टिक भी होती है और बहुत ही इसकी स्वादिष्ट भी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें भूमि का चयन करना चाहिए, किस तरह की भूमि में हम इसको लगाएं। तो उचित जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। और हम अगर इन जनरल बात करें तो रोगरोधी किस्में, सही समय पर बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, अगर ये सब किया जाए तो हम भिंडी की सब उन्नत विधियों का उपयोग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
3: तो शुरुआत करें कि खेत का चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
4: इसके लिए खेत की तैयारी में हमें 3-4 बार उसकी जुताई करके बढ़िया मिट्टी को भुरभुरी बना लें। उसके बाद हम इसमें जो है कंपोस्ट और जो खाद का प्रयोग करना है वो करें। मुख्य रूप से खेत की तैयारी हमें इसी प्रकार से करनी चाहिए।
3: और बुआई का समय?
4: बुआई का समय गर्मी की फसल का तो खत्म हो चुका है, बरसात का समय अब यही चल रहा है। जितनी जल्दी हो सके 15 जुलाई से पहले अगर हम बुआई कर लेंगे तो हमें अच्छी फसल पाने की संभावना बनी रहे।
3: पांडे साहब, उन्नत किस्मों का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी विविध किस्में भी आ गई हैं।
4: भिंडी में एक बीमारी जो लगती है पीला मोजैक की, तो हमें येलो वेन मोजैक वायरस से रेजिस्टेंट वैरायटीज का ही चयन करना चाहिए। और उसके लिए जो पुरानी प्रजातियाँ हैं पूसा की, A4, परभनी क्रांति और अर्का, अनामिका, पंजाब पद्मिनी, ये वैरायटीज़ हैं। हाइब्रिड वैरायटीज़ बहुत सी इस समय मार्केट में आ गई हैं जिसको हम अपने क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर हम कर सकते हैं, जिसमें राधिका, सम्राट, देवा, कई प्रजातियां हैं जो किसान उपयोग कर रहे हैं
3: और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं।
4: इसके अलावा जो हमारा आप सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी है वहाँ की कुछ प्रजातियाँ हैं, काशी चयन, काशी लालिमा, काशी क्रांति, ये प्रजातियाँ भी बहुत अच्छी उत्पादन दे रही हैं।
3: तो बीज की मात्रा प्रति एकड़ कितना लगेगा और बुआई के पहले बीज शोधन और भूमि शोधन भी करना है क्या?
4: बिल्कुल, बहुत जरूरी प्रश्न आपने किया है। भूमि शोधन और बीज शोधन दोनों आवश्यक है। बीज शोधन के लिए हमें एक कार्बेंडाजीम केमिकल आता है, उसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, बीज शोधन हम करना चाहें तो एक जो ट्राइकोडर्मा एक बैक्टीरिया होता है,
3: मित्र फफूंद,
4: हाँ मित्र फफूंद है, जिसके द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो उसको हम 8-10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसका बीज शोधन कर सकते हैं।
3: और भूमि शोधन?
4: भूमि शोधन के लिए हमें, अगर हम केमिकल के द्वारा करते हैं तो हमें जो है ये कार्बरिल एक दवा आती है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं जहाँ दीमक वगैरह का प्रयोग होने की संभावना हो। और नहीं तो हमें ट्राइकोडर्मा जो है 4-5 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला करके उसको अगर हम खेत में डाल देंगे तो फफूंद वाले बीमारियां जो हैं उनसे हम बचाव कर सकेंगे।
3: यानी अंतिम जुताई के समय?
4: अंतिम जुताई से पहले।
3: और बीज की मात्रा प्रति एकड़?
4: बीज की मात्रा प्रति एकड़ अगर हम देसी प्रजातियां बो रहे हैं तो उसमें हमें 4-5 किलोग्राम प्रति एकड़, और अगर हम

0: हाइब्रिड प्रजातियां बो रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड प्रजातियों में पौधे को बढ़वार ज्यादा होती है, तो वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज पर्याप्त होता है।
1: बुआई का अंतरण क्या होगा पांडे साहब?
0: अगर हम हाइब्रिड लगा रहे हैं तो उसमें जो है 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधा, और जो हमारी और उन्नत प्रजातियां हैं उसमें 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधा बीज से बीज लगाएं तो हमें उसकी बढ़वार अच्छी मिलती है।
1: यानी जो संकर भिंडी की प्रजातियां हैं उनका अंतरण लगभग 1.5 फीट होगा?
0: 1.5 फीट रखना चाहिए जी।
1: और जो सामान्य प्रजातियां हैं उनकी 1 फीट?
0: 1 फीट रख सकते हैं।
1: बरसात में क्या कुछ दूरी और बढ़ा लें क्या?
0: हाँ, बरसात की ही दूरी हमने बताया है, अगर हम गर्मी में करते तो इस दूरी को करीब 40% कम करके लगाना चाहिए।
1: और बुआई में कौन कौन सी खास सावधानियां हैं?
0: बुआई में सावधानी ये देखने की जरूरत है कि अगर हम बीज को बोने के पहले ये देख लें कि खेत हमारा अच्छी तरह से तैयार हो, दूसरा ऐसी भूमि का चयन पहले ही हमने बताया जहाँ पानी न रुकता हो, क्योंकि भिंडी अगर पानी रुक गया तो इसमें उठा रोग आने की संभावना भी रहती, कई बार पौधे सूख भी जाते हैं, तो पानी न रुकने वाला हो। तीसरा, बुआई के ठीक पहले हमें अगर सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट हमारे पास उपलब्ध है 10 से 12 टन प्रति एकड़ हम मिला लें,
1: यानी 100 से 120 कुंतल,
0: 100 से 120 कुंतल
1: अगर अच्छी तरह से मिला दें तो खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा?
0: हीमोग्लोबिन ही कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर हमें उर्वरता बढ़ जाती है और उसके अंदर जो है जीवांश तत्व बढ़ जाते हैं तो बिल्कुल हीमोग्लोबिन ही कहा जा सकता है उसको, और उसमें पैदावार अच्छी होने की संभावना रहती है।
1: ये तो कार्बनिक खाद के प्रयोग की बात हो गई, फसल की भूख मिटाने के लिए कुछ रासायनिक खाद भी देना होगा?
0: रासायनिक खादों का जो रिकमेंडेशन है वो है 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़। अब इसको अगर हम उपलब्ध खाद के रूप में देखें तो करीब 20 किलोग्राम यूरिया, 40 किलोग्राम डीएपी और 32 किलोग्राम मेरोटा पोटास अगर हमको मिल जाए तो उससे हम इस मात्रा को पूरी कर सकते हैं।
1: तो ये जो भी रासायनिक खाद की मात्रा है बेसल डोज में देनी है, कुछ टॉप ड्रेसिंग भी करनी?
0: इसमें पोटास और यूरिया इस बेसल ड्रेसिंग के रूप में, और 50% या 50% जो हमारी यूरिया की मात्रा है उसको हम दे दें। शेष जो 50% यूरिया है उसको बुआई के 40 दिन बाद और 60 दिन बाद इसको हम लगा सकते हैं।
1: यानी यूरिया की आधी मात्रा डीएपी और पोटास की पूरी मात्रा बेसल डोज,
0: बेसल ड्रेसिंग में,
1: और फिर टॉप ड्रेसिंग दो बार में किस्तों में कर लें?
0: दो बार में करें।
1: बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगाते हैं, तो खर पतवारों का प्रबंधन कैसे हो भिंडी की फसल में?
0: खर पतवारों के प्रबंधन के लिए एक दवा है पेंडीमेथिलीन के नाम से आती है, जिसको बुआई के 24 से 36 घंटे के अंदर पेंडीमेथिलीन का छिड़काव कर दें तो बहुत सारे खर पतवार नहीं आएंगे
1: जी।
0: उसके बाद भी अगर कुछ खर पतवार आ रहे हैं तो बुआई के 15-20 दिन के बाद पहला गुड़ाई निराई कर दें, और अगर फिर उसके बाद आते हैं तो 2-3 बार बरसात, क्योंकि बरसात में खरपतवार ज़्यादा आते हैं इसलिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता पड़ती है।
1: शुरू में ही आपने कहा कि पीला सिरा मोज़ेक रोग की समस्या आती है भिंडी की फसल में, तो खड़ी फसल में कैसे प्रबंधन करें किसान भाई बहन कि इस रोग से निजात मिले?
0: इसका कोई इलाज तो अभी तक नहीं है, चूंकि वायरस है ये एलोवेन मोज़ेक वायरस जो है, इसमें तो बस ये है कि जैसे ही दिखाई पड़े कुछ पौधों में उन पौधों को उखाड़ करके और या तो ज़मीन में गाड़ दिया जाए या उनको जला दिया जाए, और इसका इलाज बस वही है कि हमें इनकी रोगरोधी प्रजातियों का ही प्रयोग किया जाए। बहुत सारी रोगरोधी प्रजातियां इस समय आ गई हैं मार्केट में, खास करके जो हाइब्रिड प्रजातियां हैं वो प्रायः रोगरोधी हैं, तो उनसे बचने का एक ही उपाय है कि हमें प्रजातियों का चयन करते समय ही ध्यान देना चाहिए।
1: और चूंकि वाहक में सफ़ेद मक्खी है, जैसीड है या रस चूसने वाले कीट हैं?
0: हाँ, रस चूसने वाले कीटों का प्रबंधन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही बाद में मोज़ेक फैलाते हैं
1: जी।
0: तो उसके लिए हमें नीम आधारित अगर मिल जाए हमें तो जैसे इकोटीन के नाम से एक दवा आती है 5%
1: जी।
0: उसका स्प्रे कर सकते हैं, या इमिडा क्लोप्रिड 0.01% का स्प्रे कर सकते हैं, इनसे जो है ये एफिड जैसिड या वाइट फ्लाइज जो हैं ये कंट्रोल हो जाती हैं।
1: पांडे साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे भिंडी की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारा नंबर नोट कर लें किसान भाई बहन, 97-94-99-66-99, 97-94-99-66-99, 97-94-99-66-99।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का भिंडी की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में पांडे साहब?

0: दो लाइन में अगर हम कहें तो भिंडी इतनी पौष्टिकता से भरी हुई सब्जी है कि किसान भाई इसको लगा करके अपना स्वास्थ्य ही नहीं अपना अर्थ उपार्जन भी इससे कर सकते हैं। बुआई का समय सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम समय से बुआई कर ले जाएं और सही प्रजाति का चयन कर ले जाएं तो कम खाद और कम देखभाल में भी हमें अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है।
1: डीएन पांडे साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और भिंडी की उन्नत कृषि तकनीक क्या है, खेत का चुनाव किसान भाई बहन कैसे करें, उन्नत प्रजातियां कौन कौन से चुनें और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भिंडी की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर अभी आप श्री धर्मेंद्र नाथ पांडे के साथ की गई है भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियो वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी लखनऊ है। 2:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। नूर सलाम पुत्र श्री मोमिन निवासी रामराजपुर जनपद भदोही से हमें सूचित करते हैं कि सितारा खातून, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, पद 4 फुट 8 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल है। सितारा खातून पिछले 1 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। जिस किसी को सितारा खातून के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। नूर सलाम पुत्र श्री मोमिन निवासी रामराजपुर जनपद भदोही। राम सजीवन गौतम पुत्र श्री राम आधार निवासी तुलसीपुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही से हमें सूचित करते हैं कि अनिल कुमार गौतम, जिसकी उम्र 37 वर्ष है, कद 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल है। अनिल कुमार गौतम पिछले 7 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी अनिल कुमार गौतम के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। राम सजीवन पुत्र श्री राम आधार निवासी तुलसीपुर थाना ज्ञानपुर जिला भदोही। रविशंकर पुत्र श्री श्यामाधार निवासी रामापुर पुलिस थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही से हमें सूचित करते हैं कि रंजना देवी, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, कद 5 फीट 5 इंच, रंग सांवला है, चेहरा लंबा है। रंजना देवी पिछले 10 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को रंजना देवी के बारे में कोई सूचना हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। रविशंकर पुत्र श्री श्यामाधर निवासी रामापुर पुलिस थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही। रिजवान अली पुत्र श्री अब्दुल हमीद ग्राम चकमान पुलिस थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही से प्राप्त सूचना के अनुसार अमान अली, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। अमान अली पिछले 29 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को अमान अली के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। रिजवान अली पुत्र श्री अब्दुल हमीद ग्राम चमयान थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही। प्रमिला देवी पत्नी कल्लन निवासी कंटनापुर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही से प्राप्त सूचना के अनुसार सुशीला देवी, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल है। सुशीला देवी पिछले 15 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी प्रमिला देवी के बारे में कोई जानकारी हो या मिली, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रमिला देवी पत्नी कल्लन निवासी कंचन थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही।

खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। गायक कलाकार हैं राजेश त्रिपाठी। पहले सुनते हैं ये लोक भजन।

इस समय आप सुन रहे हैं राजेश त्रिपाठी के गाए हुए भोजपुरी लोकगीत। इस लोक भजन के बाद आइए सुनते हैं एक खेमटा।

लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं राजेश त्रिपाठी। आइए अंत में एक किसान गीत।

0: आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थे राजेश त्रिपाठी। आपके साथ ढोलक पर संगति की अनिल कुमार मिश्र ने, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर थे दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर गौरव गुप्ता। इसके साथ ही आज का लोक संगीत का यह कार्यक्रम लोक माधुरी संपन्न होता है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ, 8700014242।

0: वे 1-4-2-4-2 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी लखनऊ है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

3 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ हो रही है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। ये राज्य में अवसंरचना, ऊर्जा, परिवहन और रोजगार सृजन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का परिचायक है। अपनी एक दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक ऐसा औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे बिल्कुल नई और पहले से इस्तेमाल न की गई जमीन पर बनाया जाता है। 90,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजार

0: टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस परिसर की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। संशोधन में केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल सुधारों के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा लिखित एक लेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ई जागृति को परिष्कृत किया गया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों का संरक्षण करना है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास के ह्यूस्टन में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। शाम के 5:05 हुए। लीजिए सुनिए इस सभा के और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। सबसे पहले जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आज रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे, शाम 5:10 पर कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये सभी कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 पर। इसमें स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा लोक स्वर, माटी की महक से मार्केट तक, गांव की सुनहरी पूंजी। शाम 6:30

फेसबुक पर लोकायतन कार्यक्रम में सुनील कुमार पांडे की वार्ता होगी ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनिएगा। विषय होगा खरीफ में सह फसली खेती। इस विषय में धर्मेंद्र कुमार सिंह से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम विज्ञान जगत। इसमें भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी फुटबॉल का विज्ञान, मैदान पर जादू या फिजिक्स का खेल। इस विषय में डॉक्टर दीपक कोहली से बातचीत करेंगे प्रवीण कुमार। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर ललित मोहन जोशी से वार्ता सुनिएगा सहकारिता से सह अस्तित्व। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा गजलें। कलाकार होंगे कमाल अहमद खान। ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब जानकारी कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल शाम 6:30 पर सुनिएगा ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में लंदन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेले जाने वाले फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर। सवेरे 9:15 पर कार्यक्रम सामयिक चर्चा। सवेरे 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम सुनिएगा। इसमें विषय होगा मूंगफली उत्पादन की उन्नत तकनीक। आराधना कार्यक्रम सुनिएगा सवेरे 6:15 पर। 6:43 पर श्रीरामचरितमानस गान प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 7:00 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर की जानकारी का विषय होगा भिंडी, स्वाद भी सेहत भी। सवेरे 7:10 पर विविधा कार्यक्रम का विषय होगा धरती का अभिशाप, बढ़ती जनसंख्या। सवेरे 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में मीता पंडित का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 9:50 पर और दिन में 2:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी। इसमें कलाकार होंगे राजकुमार यादव व साथी, इनसे सुनिएगा आल्हा। कार्यक्रम आपकी पसंद के लोकगीत सवेरे 10:00 प्रसारित किया जाएगा। दिन में 12:00 बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल मंच। दिन में 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज इतवार है। इसमें साक्षमा पांडे की लिखी लघु नाटिका सुनिएगा एक सवाल तुम ठीक हो, निर्देशक अतीश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिएगा। विषय होगा घर की हरियाली, जीवन की खुशहाली। इस विषय में अतुल दुबे से भेंट करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। जवानों के लिए ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:50 पर। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर ललन सिंह यादव से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत का विषय होगा खरीफ में समन्वित नाशी जीव प्रबंधन। अभी आप सुन रहे थे हमारे इस सभा के और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए।

0: जी
1: और समाज में बड़ा परिवर्तन आया।
0: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
1: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गांव में या खेतों में ही बीता है, हम प्रकृति से जुड़े हुए थे। लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में, और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं भर्ती हुआ,
0: अच्छा,
1: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहां की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहां बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहां से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
0: तो ये कब शुरुआत की आपने?
1: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया, राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया, प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
0: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
1: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
0: जी,
1: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
0: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
1: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
0: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
1: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
0: अच्छा।
1: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारी स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
0: अच्छा।
1: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उसपे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
0: अच्छा।
1: और उसपे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के, अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृ शक्ति ने, वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल, सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
0: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
1: सोनीपत में है।
0: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
1: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते हैं, उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अगर भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है, पेड़ लगाना, वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे

0: समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव-गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
1: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
0: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर। जो भी हमारी छुट्टियां होती है, लंबी छुट्टी, या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का, इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा। अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
1: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
0: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है। और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है, तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
1: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
0: जब हम पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है, तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े। जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग, भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है, उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
1: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
0: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं, उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए, और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है, और पूरा देश अपना एक मातृभूमि, अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं, क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
1: आपने जीव जंतु की बात की, तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
0: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है, और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा हुआ विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई, और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को, विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते हैं जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था, और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी हो

0: होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे अक जहाँ पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया अक हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहनें युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतड़ प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटे ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूँ जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं बहने बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े थैलों का प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ।

0: थैला क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है। व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं, और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो अपना जीवन में, पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है।
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव, जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ हैं या गांव में पंचायत को मिलती है, या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम, या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहां देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े, और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े, और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने, और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो

0: पक्ष में तब्दील हों, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
1: ज्यादा करें जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे, और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है, और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है ऑक्सीजन बाग की, और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है एक दो पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
0: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
1: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया, और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए, और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना, और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
0: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
1: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
0: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: भारत के नागरिक को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
0: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए, और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast@airnews.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। दोस्तों, कहा जाता है कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी कि जब कई हाथ एक साथ मिलते हैं, जब कई लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं, जब सबकी तरक्की को अपनी तरक्की समझा जाता है, तो हर व्यक्ति का जीवन आसान हो जाता है, हर मुश्किल चुटकियों में हल हो जाती है और यही से जन्म लेती है सहकारिता की भावना। दोस्तों, ये प्रतियोगिता का दौर है, हर व्यक्ति एक रेस में आगे निकलना चाहता है और शायद इसीलिए तनाव महसूस करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम सहकारिता

शब्द के मतलब को जानें, सहकारिता की भावना को समझें, इसके महत्व को जानें और हम युवाओं के जीवन में इसका क्या महत्व है इसको समझें। क्योंकि दोस्तों, मैंने कहीं पंक्तियां पढ़ी थी कि अकेला दीप भले ही थोड़ा उजाला करे, पर हजारों दीप मिल जाएं तो अंधकार मिट जाता है। यही संदेश देती है सहकारिता की भावना। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको कोई बड़ा स्टार्टअप शुरू करना हो, लेकिन आपके पास आइडिया तो हो पर पैसे नहीं हो, वहीं आपके दोस्त के पास पैसे हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, किसी तीसरे के पास तकनीक है तो चौथे के पास मार्केटिंग का हुनर है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये चारों लोग अलग अलग संघर्ष करेंगे या फिर मिलकर कुछ बहुत बड़ा करेंगे। यही सोच है साथियों सहकारिता की, क्योंकि जब लोग जुड़ते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं जुड़ते, सपने जुड़ते हैं, ताकत जुड़ती है और परिणाम क्या होता है, सफलता की संभावनाएं कई गुना आगे बढ़ जाती हैं। दोस्तों, आज की ज़िंदगी में हर कोई जहाँ सफल होना चाहता है, हर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, कोई खेती में नया प्रयोग करना चाहता है, तो कोई अपने ज़िले के स्थानीय उत्पाद को दुनिया भर में पहुँचाना चाहता है। अब चाहत तो है लेकिन एक चुनौती भी है। ये चुनौती लगभग हर युवा के सामने आती है, वो है संसाधनों की कमी, यानी कि रिसोर्सेज की कमी, कम पूंजी, कम अनुभव, कम संपर्क और कभी कभी आत्मविश्वास की भी कमी होती है। इन सभी कमियों पर जीत हासिल होती है जब हम सहकारिता की भावना को समझते हैं, क्योंकि सहकारिता हमें समझाती है, हमें सिखाती है कि अगर अकेले कमज़ोर हो तो साथ जुड़कर मजबूत बनो। क्योंकि साथियों, सहकारिता का मतलब ही यही है, साथ मिलकर आगे बढ़ना, जहाँ लाभ केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समूह का होता है, जहाँ निर्णय मिलकर लिए जाते हैं और जहाँ सफलता भी साझा होती है और जिम्मेदारी भी साझा होती है। अब साथियों, कल्पना कीजिए कि किसी गांव में 10 किसान हैं, प्रत्येक किसान के पास केवल एक एक एकड़ भूमि है, अकेली खेती करने पर उनकी लागत अधिक आती है और लाभ कम मिलता है, लेकिन जब यही किसान मिलकर एक सहकारी समिति बनाते हैं तब वे बीज, खाद और कृषि उपकरण सामूहिक रूप से खरीदते हैं। इससे क्या होता है साथियों, इससे उनकी लागत कम हो जाती है, वे अपनी फसल को भी एक साथ बाजार में बेचते हैं, इससे उन्हें बेहतर मूल्य मिलता है, यानी जहां अकेले संघर्ष था वहीं मिलकर सफलता मिल जाती है और यही है सहकारिता की असली ताकत। दोस्तों, सहकारिता की भावना सिर्फ किसानी में ही नहीं है, आज सहकारिता का दायरा बहुत बढ़ चुका है। अगर 5 युवा मिलकर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करें, अगर 10 छात्र मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की लाइब्रेरी चलाएं, अगर कुछ लड़कियां मिलकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करें, अगर कोई समूह अपने जिले के स्थानीय उत्पाद को ऑनलाइन बेचना शुरू करे, तो ये भी सहकारिता की भावना है साथियों। दोस्तों, आज सरकार भी युवाओं को समूह बनाकर उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जैसे कि कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, ड्रोन सेवाएं, जैविक खेती, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाएं, पर्यटन और स्थानीय उत्पादन के विपणन। ऐसे अनेक क्षेत्रों में समूह आधारित कार्यों की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दोस्तों, सहकारिता का सबसे बड़ा फायदा ये है कि छोटे छोटे संसाधनों को मिलाकर बड़े लक्ष्य हासिल किए जाते हैं और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं और आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसा आइडिया है, आपके दोस्त के पास भी कुछ स्किल्स हैं, तो साथ आइए और साथ मिलकर काम करिए और सहकारिता की भावना से सफलता हासिल करिए। कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक गीत का, आइए सुनते हैं गीत।

दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। जब युवाओं को सही अवसर, बेहतर कौशल और सम्मानजनक रोजगार मिलता है तभी राष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने शुरू की है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और इस योजना का मकसद है कि देश में नए रोजगार के अवसर बढ़ाना, पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना और उद्योगों को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित करना। इसके माध्यम से युवाओं को सामाजिक सुरक्षा से भी जोड़ा जा रहा है ताकि उनका भविष्य अधिक सुरक्षित बन सके। दोस्तों इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आधिकारिक माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी संदेश के साथ अपनी दोस्त सुरभि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान। और एक देखिए, जब उड़ान की बात होती है ना तो एक बात हमारे दिमाग में आती है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नई सोच को आगे बढ़ा सकते हैं और क्या नया कर सकते हैं। और देखिए, आज के समय में जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो है स्टार्टअप को लेकर, कि कैसे हम अपनी एक नई शुरुआत करें, कैसे अपना नया काम

शुरू करें। और जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो दो तीन बातें हमारे दिमाग में होती हैं। एक बात तो ये होती है कि नया काम तो करना है, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी धन है वो कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। और उसके बाद ये कि जो हम काम करना चाह रहे हैं उस काम के लिए जो ज़रूरी संसाधन है वो कैसे पूरे होंगे। तो इन दो चीज़ों में कई बार जो है काम फंस जाता है और कई बार लोग पीछे भी हट जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर ये स्किल है, तुम्हारे अंदर ये हुनर है, तो चलो हम पैसा लगा देते हैं, आप काम शुरू करिए। और ये जो दूसरी वाली सोच है ना, ये साथ में काम करने वाली सोच है कि आप काम करिए, आपके साथ में हम लगे हुए हैं और इसमें हम दोनों लोग मिलकर तरक्की करते हैं। तो इसमें फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर एक फेल हुआ तो दूसरा आपके साथ में खड़ा है। और यही जो प्रक्रिया है इसी को हमने एक नाम दिया है और वो है सहकारिता। यानी कि हम साथ में काम करें और साथ में मिलकर काम करने से एक उद्देश्य जो है वो क्लियर हो जाता है। और देखिए, कहते हैं ना कि अकेला इंसान अगर बहुत तेज़ चलता है तो वो बहुत आगे निकल जाएगा, तो वो तो आगे निकल जाएगा लेकिन उसके साथ में जो लोग हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें अपना काम शुरू करना है तो हम भी काम कर सकते हैं, हमें आगे भी बढ़ना है, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हमें अपने साथ के लोगों को भी आगे साथ में लेकर चलना है। और ये जिम्मेदारी देखिए हम तो निभा सकते हैं, साथ में इसमें सहयोग भी तो हमारा सरकार बाकायदा कर रही है हर तरीके से। हम गांव की बात कर लें या शहरों की बात कर लें, किसान की बात कर लें या महिलाओं की बात कर लें, किसी भी उद्योग से संबंधित हो, देखिए हर चीज़ में सरकार पूरा साथ दे रही है। और अब तो जो सरकार की समितियां हैं, जो सहकार से संबंधित हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी पूरी तरीके से डिजिटल किया जा रहा है ताकि जो सुविधा मिल रही है योजनाओं के माध्यम से वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, और विकास का जो लाभ है वो भी आप तक पहुँचे। तो कई बार अगर आपको लोग साथ देने के लिए ना मिले तो आप सरकार की योजनाओं से जुड़ जाइए, वो बखूबी आपका साथ देंगी और उससे साथ में मिलकर आपको काम करने में भी मजा आएगा और आगे बढ़ने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि घर के ही दो लोग होते हैं और घर के ही दो लोग मिलकर अगर आपस में काम शुरू कर दें कोई, तो उसमें भी बहुत तरक्की हो जाती है। जैसे कि हमारे घर में अगर हम कुछ सामानों की बात करें तो वो अक्सर हमारे साथ में रहती हैं, जैसे एक सुई धागा। सुई और धागा दोनों मिलकर जब काम करते हैं ना, तो जो हमारे कपड़ों में बीच में एक जगह खाली हो जाती है ना, उसको भर देते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे कई बार जगह खाली हो जाती है, उसको भरने के लिए हमें दो व्यक्ति चाहिए होते हैं जो साथ में मिलकर काम करें। और शायद ये आने वाला टाइटल ट्रैक जो फिल्म का है, ये भी शायद यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो एंजॉय कीजिए इस गाने को और मिलते हैं इस गाने के उस पार।

साथियों, जब हम लखनऊ के किसी अलग अलग जगह पर जाते हैं, जैसे कि चिनहट पे कभी गए या कभी गोमती नगर में कहीं गए, तो वहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमें चीनी मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं और मिट्टी के बने जो घड़े हैं वो मिल जाते हैं। तो याद आता है कि ये क्या शहर में ही बनते हैं, लेकिन नहीं, पता चलता है कि नहीं, ये तो आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर ही बनाए जाते हैं और मिट्टी की जो महक है वहाँ से शहरों के बीच में आती है। फिर याद आता है कि जो ऑनलाइन हम लोग ऐप से खाना मंगा लेते हैं, और आज की जनरेशन को तो शायद बहुत सारा ये भी भ्रम है कि कहीं ऐसा तो नहीं उनको आने वाले समय में ये लगने लगे कि खाना ऐप में ही बनता है या ऐप से ही आता है। तो हमें उनको ये भी बताना होता है कि नहीं नहीं ये खाना ऐप में या किसी उसमें नहीं बनता है, ये शहर में नहीं, ये भी जो है गांव की मिट्टी से ही जो अनाज है वो निकलकर शहरों तक आता है और तब ये शहरों में पहुंचता है, तब हम तक ये पहुंचता है। इन सब के बीच में हमें याद आता है कि कहीं ना कहीं अंतोगत्वा सारा जो है, जो ये सुनहरापन हमें शहरों का दिखता है, जो ग्लैमर दिखता है, वो आता गाँव से ही है, बस उसको थोड़ा सा और फाइन कर लिया जाता है शहरों में। तो गांव की वो मिट्टी जिसकी महक की हम बात तो खूब करते हैं, वो मिट्टी शहरों तक कैसे पहुंच रही है और उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, क्या उसका फ़ायदा जो है गांव के लोगों को जो गांव में रह रहे हैं, वहां के लोगों को जो छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, वहां के लोगों तक पहुंच पा रहा है, ये सारा कुछ जो अनुभव है ये जानने के लिए हमारे साथी शोभित ने तमाम लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि जो हमारे गाँव की मिट्टी है उसकी महक जो है वो बाज़ार में के माध्यम से कमर्शियल रूप में किस तरीके से महक रही है और उसका फायदा किस तरीके से पहुंच रहा है, आइए जानते हैं।

0: जब मिट्टी किसी कुम्हार के हाथों में आकार लेती है, जब जूट के साधारण रेशे खूबसूरत हस्तशिल्प में बदलते हैं, जब सुई धागा केवल कपड़ों को नहीं बल्कि उम्मीदों को जोड़ता है, तब जन्म लेती है आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी। लेकिन क्या केवल हुनर होना ही काफी है? कई बार सबसे बड़ा सवाल यही होता है, बनाना तो सीख लिया लेकिन बेचना कहाँ है, रोजगार शुरू कैसे करें, बाजार तक पहुँचे कैसे? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम पहुँचे हैं खादी ग्रामोद्योग के मंडल कार्यालय, जहाँ प्रशिक्षण केवल हाथों को हुनर नहीं देता बल्कि सपनों को दिशा भी देता है। तो आइए चलते हैं आपको लेकर ग्रामोद्योग के प्रशिक्षण केंद्र पर हमारी आज की श्रृंखला लोक स्वर के अंतर्गत विषय मिट्टी की महक से मार्केट तक गांव की सुनहरी पूंजी को लेकर के। खादी ग्रामोद्योग के इस प्रशिक्षण केंद्र में हर कमरे की अपनी एक कहानी है। कहीं मिट्टी नए आकार ले रही है, कहीं जूट से उपयोगी और आकर्षक उत्पाद बन रहे हैं, कहीं सिलाई मशीनों की रफ्तार भविष्य बन रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम चीज है सीखने का उत्साह। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों से जिन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण लिया है।
1: मेरा नाम है रंजना श्रीवास्तव।
2: आपने माटी कला का ही प्रशिक्षण क्यों चुना है?
1: क्योंकि मैं लखनऊ में ही रहती हूँ, तो यहाँ पे मिट्टी की भी प्रॉब्लम है, और क्योंकि मुझे मिट्टी संबंधित चीजें, मिट्टी से बहुत लगाव है, और मैं क्ले से कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ, तो आप इंटरेस्ट भी बोल लीजिए कि मुझे ज्यादा है।
2: तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों का आपको प्रशिक्षण मिला होगा।
1: बिल्कुल, तभी तो मैं सीख पाई, वरना मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में।
2: इस प्रशिक्षण के दौरान आपने कौन सी ऐसी नई टेक्निक्स हैं या डिजाइन सीखी हैं जिससे आपके उत्पाद दूसरे की तुलना में बेहतर होते हैं?
1: मैंने जो वहाँ पे मैजिक दिया देखा कि आप तेल डाल दो उल्टा करके और सीधा करो तो तेल बहता नहीं है और अच्छा, दिया बहुत आराम से जलता है, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा वो।
2: अच्छा, ये जो आपने अभी एग्जांपल दिया दिया का, जो एक यूनिक सी चीज मुझे सुनने में लगी, तो अगर इस तरीके के उत्पाद अगर आप लोगों को देश भर के लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है, तो को कैसे पहुंचाएंगे, बाजार तक कैसे आपका ये हुनर पहुंचेगा?
1: ऑनलाइन बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है, लोगों को बिजनेस को इम्प्रूव कर रहा है।
2: अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात आप कर रहे हैं?
1: हाँ जी, ऑनलाइन।
3: मेरा नाम शर्मावती।
2: जूट से बनने वाले कौन कौन से उत्पाद आप यहाँ पर तैयार करना सीख रहे हैं?
3: सर, जूट से हमने जूट बैग बनाना सीखा, और वो हाथ में पर्स बनाना सीखा, और पावदान बनाना सीखी, चटाई भी बनाना सीखी, यही 3-4-5 काम सीखा।
2: अच्छा, ये बताइए, कभी आपने प्रयास किया कि आपका ये जो भी आप बनाती हैं ये बाजार तक पहुंचे, बड़े बाजारों तक, सुपरमार्केट तक पहुंचे और लोग इसको खरीदें? कभी आपने कोशिश की इसकी?
3: सर, कोशिश तो की लेकिन अकेले तो नहीं हो पाएगा।
4: मेरा नाम शशि गौतम है।
2: अच्छा, ये बताइए किस चीज की ट्रेनिंग आप लेती हैं यहाँ पे?
4: मैं जूट बैग की ट्रेनिंग ली थी।
2: जूट के सामान बनाने की ट्रेनिंग क्यों ली आपने?
4: उस टाइम यही सिखाया जा रहा था, हमें पता चला तो हमने फॉर्म फिल किया, फिर हमारा नाम आ गया, मैम आई तो सिखाया उन्होंने।
2: अच्छा, ये बताइए जूट से बनने वाले कौन कौन से सामान आपको बनाने आते हैं?
4: जूट से जैसे कि बॉटल के बैग बनाना, और जैसे कि हम लोग थैला वगैरह यूज करते हैं तो वो भी बनाना सिखाया उन्होंने, फाइल फोल्डर, हाँ वो बना लेते हैं हम।
2: अगर आपके बनाए हुए जो भी उत्पाद हैं अगर किसी बड़े शहर में या ऑनलाइन अगर बिके तो आपको कैसा लगेगा?
4: बहुत अच्छा लगेगा, बिकेगा तो, अगर हम मेहनत करेंगे और हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा तो हमारा बेनिफिट भी होगा और हमें अच्छा भी लगेगा।
2: तो कभी आपने इस तरफ कोशिश नहीं की?
4: कोशिश तो की, बट ये है कि अकेले कैसे सफर थोड़ा मुश्किल होता है, गाँव एरिया से बाहर निकलना, इस वजह से।
0: अब चलते हैं सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की ओर, जहां कई महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं।
2: क्या नाम है आपका?
5: पूनम।
2: क्या क्या बना लेती हैं आप?
5: सूट बना लेते हैं और फ्रॉक।
2: अच्छा, तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको क्या इससे कुछ आमदनी कभी हुई है?
5: हाँ, थोड़ी बहुत भैया हुई है, मशीन अभी नहीं हमारे पास है तो हम बना लेते हैं।
6: आरती नाम है मेरा।
2: अच्छा, क्या सीखा आपने ऐसा जो आपको मदद मिल रही है ये सीखने से?
6: मदद मिल रही है, थोड़ा बहुत हमारा काम भी होता है, हम सीख गए हैं तो पैसे भी आते हैं, बनाते हैं, कपड़े सिलते हैं।
2: आने वाले समय में अगर आपको अपना कोई सिलाई केंद्र या घर पे ही अच्छा सा बुटीक, अच्छी दुकान खोलने की अगर कोई आपको मन में विचार आता है तो आप क्या करेंगी, शुरू करेंगी अपना काम?
6: हाँ, शुरू करेंगे।
2: तो ये बताइए, यहाँ से कभी आपको मौका मिला कि अपना सिलाई कढ़ाई या अपना व्यवसाय कैसे शुरू करना है, इस चीज की ट्रेनिंग कभी इस केंद्र से मिली है आपको?
6: हाँ, मिली तो है।
2: क्या नाम है आपका?
7: नीलम देवी सर।
2: नीलम जी, ये बताइए आप किस चीज का प्रशिक्षण यहाँ पर ले रही हैं?
7: जरी जरदोजी का।
2: ये

0: जरदोजी जैसी जो ये पारंपरिक कला है, इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों सीखना चाहती थी आप इसको?
1: हस्तकला है, इसमें मतलब सीखा जाता है इसलिए कि कुछ हम अपना हुनर कर सके आगे, या बढ़ना चाहते हैं, या कोई बिजनेस व्यवसाय अपना बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सके।
0: तो ये जो आप बनाती हैं उत्पाद, इसको कभी मार्केट में पहुंचाने की कभी कोई ट्रेनिंग या इस तरीके का कोई प्रशिक्षण आपको यहाँ से मिला है?
1: सर मिला है अभी, ये सर बताए थे कि ट्रेनिंग करिए फिर हम अपना बनाइए सब लोग, तो हम
0: हाँ,
1: बाहर से बात करेंगे।
2: हर प्रशिक्षु के मन में एक सवाल लगभग समान है, अब आगे क्या? क्या प्रशिक्षण के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, या फिर बाजार तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाया जाता है? इसी सवाल के साथ हमने बात की प्रशिक्षण देने वाले विशेषज्ञ से।
0: आप अपना परिचय मैडम बताइए।
3: मेरा नाम राम कुमारी त्रिवेदी है।
0: और आप यहाँ पर सेंटर पे आप किस पद पर कार्यरत हैं?
3: मैं यहाँ पे खादी ग्रामीण उद्योग में मास्टर ट्रेनर हूँ
0: तो मैडम ये बताइए, यहाँ पर मैंने भी बहुत सारे प्रशिक्षुओं से बात की, तो सबका
3: जी
0: लगभग यही कहना है कि ट्रेनिंग तो उन्होंने कर ली है,
3: जी
0: लेकिन अपने उत्पाद को कैसे बाजार तक पहुंचाना है, उस

0: विशेषज्ञ से।
1: आप अपना परिचय मैडम बताइए।
2: मेरा नाम राम कुमारी त्रिवेदी है।
1: और आप यहाँ पर सेंटर पे आप किस पद पर कार्यरत हैं?
2: मैं यहाँ पे खादी ग्रामीण उद्योग में मास्टर ट्रेनर हूँ।
1: तो मैडम ये बताइए, यहाँ पर मैंने भी बहुत सारे प्रशिक्षुओं से बात की, तो सबका लगभग यही कहना है कि ट्रेनिंग तो उन्होंने कर ली है, लेकिन अपने उत्पाद को कैसे बाजार तक पहुंचाना है उसका कोई अभी इनको ठीक से रास्ता नहीं दिखाया गया है। तो क्या ऐसा कोई प्रशिक्षण है, क्या ऐसी कोई स्किल यहाँ पर दी जाती है जिससे ये अपने उत्पाद को बाजार तक पहुंचा सकें?
2: हाँ सर, मतलब ट्रेनिंग हर चीज की दी जाती है। रही उत्पाद बेचने के लिए तो सर प्रदर्शनी लगती है, तो प्रदर्शनी के जरिए से उत्पाद बिकता है।
1: अच्छा मैडम ये बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो भी ट्रेनिंग है ट्रेनिंग लेकर के गए हैं और वो अपना अपने गाँव में लगाना चाहते हैं, उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऋण वगैरह की भी बैंक से सुविधा होती है? क्या प्रोसीजर है उसका?
2: प्रोसीजर ये ट्रेनिंग इसलिए निशुल्क चलाई जाती है, ट्रेनिंग होने के बाद सर यहाँ से जो है सबसे पहले लोग ट्रेनिंग करते हैं, सबसे पहले उनके लिए प्राथमिकता होती है कि ट्रेनिंग इसलिए चलाई जाती है। जैसे सिलाई का ट्रेनिंग उन्होंने किया तो यहाँ से सरकार की तरफ से मतलब जो है बिना ब्याज के पैसे मिलते हैं, जिससे आप लेकर के आप अपने घर से छोटा सा रोजगार स्थापित करिए।
0: यानी यहाँ केवल उत्पाद बनाना ही नहीं सिखाया जाता बल्कि ये भी बताया जाता है कि कैसे गुणवत्ता बढ़ाई जाए, कैसे पैकेजिंग की जाए और कैसे ग्राहक की पसंद समझी जाए और कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना काम शुरू किया जाए। अब समय है उस महत्वपूर्ण सवाल का जो हर प्रशिक्षु के मन में है, अगर कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे सहयोग कौन देगा? इसी विषय पर हमने बात की खादी भवन में कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय के सहायक निदेशक एवं माटी कला बोर्ड के नोडल अधिकारी श्री एस के पांडे से।
1: सर आपका हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
3: जी धन्यवाद।
1: सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी की महक से मार्केट तक, इस टॉपिक को आप माटी कला के संदर्भ में कैसे देखते हैं?
3: देखिए माटी कला उद्योग दुनिया का प्राचीनतम उद्योग है, सभ्यता की शुरुआत से ही माटी कला के क्षेत्र में कार्य होता रहा है और सबको इसकी आवश्यकता रही है, गृह निर्माण के लिए हो या घरेलू बर्तन के लिए हो, सजावटी सामान के लिए हो, इस रूप में इसका इसमें सृजन होता है और वो बाजार तक पहुंचता है, लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसको क्रय करते हैं। तो इस तरह ये बहुत बड़ा और विस्तृत उद्योग है।
1: अच्छा सर, पहले जहाँ मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सीमित था, आज उनमें क्या बदलाव आया है?
3: शुरू में केवल मिट्टी के बर्तन ही हुआ करते थे, उसके बाद धातु युग आया, फिर धातु के बर्तन होने लगे और धीरे धीरे आज हम स्टील और प्लास्टिक तक पहुंच आए। आज हम लोग जिस रूप में जागरूक हुए हैं, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों को समझ में आने लगा है कि मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल से हम अपने पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकते हैं और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं।
1: सर माटी कला बोर्ड ग्रामीण कारीगरों को किस तरह से मदद करता है?
3: जी माटी कला बोर्ड ग्रामीण कारीगरों ही नहीं, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लेकर चलता है। शहरों में भी हमारे कारीगर हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी, तो दोनों जगह, हम तो कहेंगे कि शहरों में ज्यादा वस्तुओं का उपभोग हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है। और माटी कला बोर्ड की हमारी एक कार्यक्रम है, हमारा माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम, जिसमें 6 योजनाएं हैं। तो 6 योजनाओं में पहली योजना है टूल किट्स वितरण योजना। इसके तहत जैसे पहले परंपरागत रूप से जो टूल किट हुआ करते थे, बड़ा सा पत्थर का चाक हुआ करता था या हाथ से मैनुअली लोग मिट्टी गूंथते थे, इसके स्थान पर जो नई टेक्निक आ गई है उसको लोगों में उसका प्रचार प्रसार कराने के लिए हम लोग 3 दिन का प्रशिक्षण भी देते हैं और एक टूल किट फ्री में उनको दिया जाता है कारीगरों। तो एक हमारी योजना ये है।
1: प्रशिक्षण सर कहाँ पे दिया जाता है?
3: ये मंडली प्रशिक्षण केंद्र है हमारे, प्रदेश में 11 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हैं जो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के केंद्र हैं, वहीं पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण उन कारीगरों को दिया जाता है जिनका हम टूल किट देने के लिए सिलेक्शन करते हैं।
1: अच्छा ये सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ही होता है?
3: नहीं, सिलेक्शन ये जिला स्तर पर जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी है, 4 सदस्यीय कमेटी, जिसमें हमारे विभाग के भी अधिकारी होते हैं और मुख्य विकास अधिकारी महोदय इसके चेयरमैन होते हैं हर जिले में, तो उनके स्तर से चयन होता है।
1: आज के युवाओं को माटी कला जैसे पारंपरिक व्यवसाय से कैसे जोड़ा जा सकता है?
3: देखिए आजकल माटी कला के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। एक तो जो लोग परंपरागत रूप से इस कार्य को करते हैं वो लोग तो समझ ही रहे हैं और आ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन बाकी वे लोग भी आ रहे हैं, वो लड़के भी आ रहे हैं जो इस उद्योग में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ तो एक तरह से भीड़ है इसके लिए कि हमको इसमें फाइनेंस हो जाए, हमको टूल किट मिल जाए, हम इसको करना चाहते हैं, हमको प्रशिक्षण मिल जाए, क्योंकि हमारे जो भी संसाधन है उसके तहत ही हम चयन कर पाते हैं और उतना हम अपनी योजनाएं संचालित कर पा रहे हैं।
1: जो इस तरह के उत्पाद होते हैं उनकी बाजार में सफलता किन किन

0: बातों पर निर्भर करती है।
1: एक तो ये है कि उपलब्धता हो, जो चीज वो चाहते हैं बाजार में उपलब्ध हो। जैसे आजकल मिट्टी के बर्तनों में कुकर की मांग है, थोड़ा सा हम लोग उसको लेकर डरते हैं कि वास्तव में वो बढ़िया मजबूत बना है नहीं बना है, कहीं फट ना जाए, तो थोड़ा सा खुले हुए बर्तन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जो लोग जानते हैं उसके प्रति आकर्षित है, साथ ही लोग खोजते हैं कि वो उपलब्ध कहाँ हो, तो जो लोग वास्तव में बना रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं उसको हम लोग रिकमेंड भी करते हैं। इसके अलावा सजावटी आइटम जो भी है बाजार में बहुत मांग है, जैसे ब्लैक पॉटरी जो आजमगढ़ का है, इसकी बहुत मांग है, बहुत एक्सपेंसिव चीजें इसमें बन रही हैं। इसी तरह टेराकोटा भी था, इसी तरह सिरेमिक के पॉट, इसकी मांग बहुत है।
0: अच्छा सर, आज के समय में गांव की इस सुनहरी पूंजी को आप किस रूप में देखते हैं?
1: मैं इसका अच्छा भविष्य देख रहा हूँ। इस क्षेत्र में लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं और नए नए तरह के उत्पाद आजकल देख रहे हैं कि दीपावली के अवसर पर जो दिए बन रहे हैं इतने डेकोरेटिव और इतने बढ़िया बन रहे हैं और उसकी मांग भी हो रही है, लोग को सजा रहे हैं, फूलदान वगैरह एक एक तरह से आ रहे हैं। तो जब इतना लोगों में जागरूकता आई है तो इसका भविष्य अच्छा है।
0: एक और सर अहम सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं की और जो स्वयं सहायता समूह है इनकी भूमिका किस तरह से आप देखते हैं, इनकी क्या भूमिका है?
1: देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं को विशेष प्रशय दिया जाता है, हमारी योजनाओं में भी है कि उनको प्राथमिकता दी जाए, और जो इस उद्योग करते हैं उसमें हम महिलाओं को विशेष महत्व देते हैं। टूल किट के लिए जो चयन करते हैं उसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व रखने का प्रयास करते हैं।
0: आज वोकल फॉर लोकल और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बढ़ती मांग से माटी कला को क्या नए अवसर मिल रहे हैं?
1: माटी कला उद्योग निरंतर बढ़ रहा है। जहां 2018 में हम लोगों ने शुरुआत की थी माटी कला बोर्ड के तहत अपनी योजनाओं का, तो पहले साल आपको बताएं कि केवल 54 यूनिटें ही हम स्थापित कर पाए थे पूरे प्रदेश में, और आज हम 300 के लगभग यूनिटें स्थापित कर पा रहे हैं
0: पूरे प्रदेश में
1: पर ईयर 300 के लगभग 250-300, तो निरंतर ही बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग हम 1300 से 1400 यूनिटें स्थापित कर चुके हैं, साथ ही लगभग 20,000 टूल किट यानी विद्युत चालित चाक बांट चुके हैं, पगमिल मशीनें बांट चुके हैं, तो निरंतर इसकी मांग हो रही है और निरंतर इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: सर, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: मिट्टी की खुशबू, जूट की मजबूती, सुई धागे की बारीकी और कारीगर के हाथों का विश्वास, ये केवल उत्पाद नहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत भी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव भी। उम्मीद है ऐसी पहलें और ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हजारों सपनों को नई उड़ान देते रहेंगे और मिट्टी की महक देश विदेश के बाजारों तक पहुंचती रहेगी। तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी अपने साथी शोभित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: साथियों, ये थे हमारे रेडियो साथी शोभित, जिनके द्वारा बातचीत आप सुन रहे थे की गई, और ये बातचीत ये बताती है कि देखिए किस तरीके से लोग कितनी मेहनत करते हैं और उस मेहनत के दम पर वो इन सामानों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि मल्टी स्टोर में जो आप बिना किसी बहस के सामान खरीद लेते हैं उसकी बजाय आप सड़क पर जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हों और इस तरीके के सामान बेच रहे हों रोड पर, तो उनसे बहुत ज़्यादा हम लोग बहस करते हैं, तो वो ना करके उनसे सामान लेने की कोशिश करिए, क्योंकि एक तरीके से ये मिट्टी को, अपने घर की अपने गांव की मिट्टी को सम्मान देना है, और हम तो वो लोग हैं जो मिट्टी को सर माथे पर लगाते हैं। तो ऐसे कोशिश करिए कि इस तरह के लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी एक सहायता मिलती रहे और उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता रहे। फिलहाल फिल्म केसरी से आपके लिए ये गाना, और मिलते हैं इस गाने के बाद और करते हैं थोड़ी सी और बातचीत।

साथियों, हम तो कहते हैं कि जब कुछ भी करने का आप विचार ठान लेना कि हमको ये करना है, तो उसके पीछे बस लग जाइए, शुरू कर दीजिए उस काम को। क्योंकि कई बार हम पीछे हट जाते हैं और हो सकता है कि वो काम आप कर सकते हों, लेकिन पीछे हटने से वो काम नहीं हो पाता है। और देखिए, इसमें आप अकेले नहीं हैं, सरकार अलग अलग तरीके से आपकी सहायता भी कर रही है, चाहे कौशल और रोजगार को लेकर हो, लगातार उस पर फोकस है। और राज्य सरकार जो है वो उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण दे रही है, प्लेसमेंट और अन्य सुविधाएं भी दे रही है, और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तमाम अलग अलग कार्यक्रम भी संचालित कर रही है। ठीक इसी तरीके से महिला स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ाया जा रहा है, और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़कर स्वरोजगार और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। हम आपसे वादा करते हैं कि मिलेंगे फिर से किसी नए दिन एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, ये आकाशवाणी लखनऊ है। लीजिए एक सूचना सुनिए। रविवार 5 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे सुनिए कार्यक्रम आज के मेहमान। हमारे मेहमान होंगे श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्त, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश, और इनसे बातचीत करेंगे सुभाष खन्ना। तो सुनना ना भूलिए FM 100.7 MHz, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर कल प्रातः 10 बजे कार्यक्रम आज के मेहमान। फोन इन प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 की दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य। इसमें विशेषज्ञ होंगे चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राहुल कुमार राठौर। तो आप सभी इनसे बातचीत कर सकते हैं इन फोन नंबरों पर। फोन नंबर है 0522-223-8845 और 0522-223-8852। तो पाइए अपने स्वास्थ्य और समस्याओं का समाधान, और सुनना न भूलिए कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस रविवार 5 जुलाई 2026 की दोपहर 12 से 1 बजे के मध्य FM 100.7 MHz, न्यूज ऑन AIR और DTH पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार।

0: से शुक्रवार दोपहर 12 बजे।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रुप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इज़राइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने 1.05 लक्ष कोटि रुप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च

0: विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां, ऊर्जायां, परिवहने, उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
1: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर, इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
0: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रांतरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः, कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2,000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं 30,000 रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते 300 रूप्यकेषु एव सुरक्षितम्। अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघुनगराणां सुदूरक्षेत्राणां च कृते वैमानिक संपर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु च नियुक्तानां 45,000 युवकानां कृते नियुक्तिपत्राणि अपि प्रधानमन्त्रिणा वितरितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। एते सर्वे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा इत्यादिभिः आतंकवादी संगठनैः सह सम्बद्धाः आसन्। मन्त्रालयेन निगदितं यत् देशस्य नागरिकाणां सुरक्षायै सर्वकारः प्रत्येकं आतंकवादी संजालं विनष्टुं कृतसंकल्पः वर्तते। अद्य उद्घोषितेषु 23 आतंकवादिषु 17 पाकिस्तान देशस्य नागरिकाः, 6 च भारतीय नागरिकाः सन्ति। परञ्च साम्प्रतं इमे पाकिस्तानात् पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीराच्च आतंकवादी गतिविधीन् संचालयन्ति। एते आतंकवादिनः भारतविरोधि कृत्येषु, शस्त्रास्त्र तस्करेषु, निधिसंग्रहादिषु संलग्नाः सन्ति। अस्याः घोषणायाः परं राष्ट्रियान्वेषण अभिकरणेन एतेषां वित्तीय स्रोतांसि अवरोद्धुं शक्यन्ते, सम्पत्तिश्च स्वायत्तीकर्तुं शक्यते। अवधेयमिदं यत् 2019-2020 वर्षे UAPA अधिनियमे संशोधनस्य कार्यान्वयनानन्तरं केन्द्रीय सर्वकारेण 80 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनावृत्तमाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलिग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। आधिकारिकस्रोतेभ्यः प्राप्तानुसारं प्रशासनेन टेलिग्राम संस्था वञ्चना प्रसारितेभ्यः चलच्चित्रेभ्यः

0: पंचो जय हिंद।
1: राजेश भैया।
0: हाँ कृष्णा भैया।
1: अरे बहुत दिन बाद मुलाकात भाई है। हम तो कहे राजेश भैया कहाँ चले गए, लेकिन राजेश भैया बैठक में आए गए बड़े।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से आए तो गए बैठक में, कहे था आज आप कहो बहुत दिन बाद मुलाकात वाकई में हो रही है।
1: हाँ
0: तो और भैया बताओ हाल चाल अपन।
1: अरे भैया का बताए जोन भाई, ये समय आम एक मौसम चलता ही है और जोन बाब खूब आम खावा जाता है और दशहरी तो अपन यहाँ है ये भैया, तो जोन बाब बड़ा आनंद आवत है। अब एक का ही दिक्कत है भैया, गर्मी जोन बन है बहुत सता रही है, बरखा तो धीरे धीरे देखो आवत है, लेकिन वह है कि बुनियाद चला जाता है जैसे बरखा हो के, वो बरखा होता ना है भैया।
0: बिल्कुल भैया सही कहो, कहा से बुनियाद जब चला जा रहा है तो अति गर्मी लागत है, समझ लो का कहा जाए कुछ कहा नहीं जा सका, फिर हाँ। सब गए गए ठंडी ढूंढे पड़ते हैं।
1: चलो भैया ये तो चलो मौसम का हाल चाल है, तो हम देखत रहे कि हमारे गाँव में ना वही तालाब जोन पुराना वाला रहा दक्षिण कहते।
0: अच्छा तो क्या मतलब गड्ढा खोद दिए?
1: हाँ वही खोद खाद के हम पंच तैयारी कह दे हैं कि जब बरखा हुई तो उसमें पानी जोन बा जो भर जाए
0: तो यानी कि
1: साल भर एक काम चलाते
0: जल गए हैं, बचाए के पूरी उम्मीद कर लिए हो, कहे से वो अपन मतलब अगली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा रहता है, जब अगर हम इसका इस्तेमाल अच्छे से करवा तो और भी बढ़िया बढ़िया रहते।
1: बिल्कुल भाई देखो पानी जोन है ना वो जोन बा का ही गवाह है, एक चीज अनमोल होता है एक चीज होता बहुमूल्य होता।
0: बिल्कुल भैया सही,
1: तो पानी तो भैया बहुमूल्य है, ऊपर कोनो मोल ही नहीं है। अब रही बात ये कि हम पंच

0: के वर्षा जल के पूरी तरीके देखो संरक्षित करके रखा ही चाहे कहे के कि जौन बा आई उ पानी तो 12 महीना जौन बा बरसत ना दयु। तो अब जब बरसत है तो हम पंचन के चाहे कि जौन ताल है तलैया है या तो जौन भी हम लोग पानी के संरक्षण वाला उपाय बनाए है वो पानी पूरी तरह से संरक्षित करी उपयोग करी तो
1: बिल्कुल
0: यू बड़ा निक रहता है।
1: बिल्कुल भैया सही, क्योंकि ऐसे देखो पानी चाहे तलौ में अगर संरक्षित किन जाए, या फिर अगर हम देखे थे बहुत लोग ऐसे का करते हैं, हम लोग टोटी खोलें ब्रश कर रहे हैं, ब्रश कई के बाद में टोटी चलत रहा था पानी, तो इनसे भी बचत किन जा सके
0: भैया
1: भैया।
0: यू तो लापरवाही देखो
1: हाँ
0: यू तो हम बराबर कही थे यू तो लापरवाही है। वो देखी थे तमाम पंच भैया ऐसे हैं पहले देखो जब बाल्टी लोटा थे नहात रहे वो कुआं वाला बात रहे
1: अच्छा
0: तो खींचे के परत रहा तो एक ही बाल्टी में नहा लेते रहे। अब फिर नलका आए तो नलका से 4 बाल्टी में नहाए लागे। अब वही बिजली के बल्ब के उठकना ही पुट से दबाए दे तो पता चला 100 बाल्टी पानी गिरत है वहीं से अपन लगाए के गाना गावत हैं और पानी सब बहत है।
1: बिल्कुल भैया, तो ऐसा नहीं करेगा, क्या है हमका अपना जो अगली पीढ़ी है वह के लिए जल बचावे के तभी बहुत अच्छा रहे, वरना समझ लो फिर पानी के लिए दिक्कत हुई है। क्या है अभी हम देखत रहन कि लगभग लगभग जो रहते है 70% जो मतलब 71% जो जल है ठीक है धरती पर, वहीमा से भी 3% जो जल है ना, तो वो 3% जो जल पेय वाला रहता है शुद्ध, अगर वही का
0: हाँ
1: अगर खर्च
0: पिए
1: कर दिए तो
0: वाला
1: भी दिक्कत हो
0: तब
1: जाते
0: भैया
1: हैं।
0: देखो खारा पानी थोड़ो पिया जाता है। समुद्र का पानी दई दो तो पता चला कि एक घोंट पियाए तो जो पिए वाला पानी है ना जैसे आप बता रहे हो 3% है
1: हाँ
0: तो भाई देखो वो तो है ही है लेकिन जो भगवान वाला जल होता है ना वह सुनी थी एकदम शुद्ध होता है
1: बिल्कुल
0: तो हम
1: आशुत जल
0: पंचों के
1: होती है।
0: सुरक्षित करी संरक्षित करी और अपने लिए अपने आवे वाली पीढ़ी के लिए सबके लिए भाई जो बा अब भविष्य गढ़ी तो नुकसान न करे चाहे जल और जल पूरी तरह से हम पंच जोन बा संरक्षित करके रखी बरखा के एक एक बूंद यू कहले संरक्षित करे चाहिए।
1: बिल्कुल भैया सही, क्यों कहा हम देखे थे ना हमारे अपने खेती उत्पादक बतावा आपके यहाँ अपने ओम प्रकाश भैया है ना, कभो कभो खेत में पानी ऐसे चला के छोड़ आवते हैं
0: अरे भैया ओम
1: तो
0: प्रकाश भैया का कहियो इनके
1: हाँ
0: गांव में हम गए रहे थे एक
1: हाँ
0: दिन हम बैठे तो हम गए यू बताओ भैया कि जौन बा ऐसे ही जब टोटी बही तो पानी कहाँ तक रहे तो ये जौन बा कहे ना भैया हम 3-4 लोग मिल के एक टीम बनाए ना
1: अच्छा
0: अब पूरी तरीके के पानी के संरक्षित करी था बचाई था जौन पानी पिए वाला है ओके पिए के उपयोग है जौन सिंचाई वाला है सिंचाई क्यों। हम तो कहे यार भैया तो ये बड़ा काम अच्छा कर रहे हैं 3-4 लोग मिल के पूरा जौन बा विधान बनाए हैं और इनके गाँव के उत्तर कही थी हमें ले आए गए तो कहे आवा चली ओहरे चला जाए तो तोहन बा वहाँ गए तो देखा तो हूँ तालाब उलाब खुदवाए रहे तो हम
1: यानी कि
0: कहे चलो
1: वो
0: यू
1: आम
0: वहाँ
1: का
0: से
1: बाग
0: गए।
1: रहा है वही के बगल में तलौवा खुदवा
0: हाँ
1: रखे
0: गए
1: हैं
0: रहा
1: तो
0: पर हमें लगा था आम खिया ले गए रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: चलो ठीक है तो यहाँ बार ओम प्रकाश भैया ही तो हमहू कह दे भैया हमहू के ले आया हो आम
1: बिल्कुल
0: अपने
1: भैया
0: गाँव
1: सही
0: वाला।
1: कहा, तो कैसे देखी थे यही चक्कर माँ मतलब कि अपन जो गांव की तस्वीर भी चेंज होत रहा था बदल जात
0: बिल्कुल
1: रहा था।
0: भैया बदल जाए या सब बदल जाए गांव में देखो खड़ंजा जोन रहा वो पक्की सड़क हो गई और जहाँ जोन बा चकरोड़ रही और वहाँ खड़ंजा हो गई तो अपन
1: बिल्कुल
0: गांव का
1: भैया। अरे
0: विकास
1: भैया
0: तो
1: अब
0: होता ही है।
1: खड़ंजे ही नहीं, अब तो रोडें बहुत अच्छी बन गई हैं, कायद
0: हाँ
1: बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, तो यही लिए कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ना कुछ नवाचार होत रहा था भैया।
0: अरे बहुत हो गए भैया देखा के है कि जहाँ हम पहले साइकिल लग जाते रहे एकदम यहाँ तो चकरोड़ में फिसल के गिर पड़ा
1: हाँ
0: रहे।
1: नहीं
0: अब
1: सही
0: तो
1: बात।
0: देखी थे तो वहाँ एकदम फरफराए लिए अब ओम भैया जो ना थी तो मोटरसाइकिल वही फरफराते लेकिन गिर
1: नहीं
0: गया।
1: कभो कभो साइकिलों ले जाते हैं भैया,
0: हाँ
1: कहते हर चीज़ का बचाव थे
0: तो सही बात है भैया
1: ये।
0: चलो
1: तो
0: अच्छी बात
1: यही
0: है
1: तो भैया आज देखो कुछ विषय पर हम अपने पंचन की जानकारी सुनवा चाहते हैं,
0: बिल्कुल
1: वो
0: सुनाओ
1: जानकारी
0: इनमें तो
1: है
0: हम पंच ही के लिए बैठक की बैठक भाई करा करी थे
1: जो आज
0: जोन बा
1: का
0: नई जानकारी पंच बहन के दिन में।
1: बिल्कुल भैया जो आज का विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, जेके वार्ताकार हैं भैया सुनील कुमार पांडे, और तो आओ मिलके सुना जाए।
0: हाँ सुना जाए भैया बिल्कुल सुना जाए।
2: भारत की असली पहचान उसके गांव में बसती है। गांव केवल खेती किसानी का केंद्र नहीं, बल्कि यहाँ अपार संभावनाएं और पारंपरिक ज्ञान का खजाना भी मौजूद है। बदलते समय के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार की आवश्यकता और महत्व दोनों बढ़ गए हैं। नवाचार का मतलब केवल नई तकनीक अपनाना नहीं है, बल्कि स्थानीय समस्याओं का स्थानीय संसाधनों के आधार पर सरल और प्रभावी समाधान खोजना भी है। आज गांव में आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, जैविक खेती, सौर ऊर्जा, डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन बाजार और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इन नवाचारों ने किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण युवाओं और महिला

महिलाओं की भागीदारी ने भी विकास की गति को तेज किया है। देशज ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय ग्रामीण विकास का मजबूत आधार बन सकता है। यदि गांवों में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाए तो आत्मनिर्भर भारत का सपना और अधिक सशक्त होगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार केवल विकास का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की एक प्रभावी शक्ति भी है। ग्रामीण भारत में तकनीकी नवाचार और आधुनिक विकास मॉडल की अर्थव्यवस्था तथा जीवन शैली को नई दिशा दे रहे हैं। स्मार्ट कृषि, डिजिटल समावेशन, नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में हो रहे बदलाव न केवल किसानों की आय बढ़ा रहे हैं बल्कि ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों और नवाचारों के बढ़ते उपयोग से ग्रामीण भारत की तस्वीर तेजी से बदल रही है। आधुनिक तकनीकों की मदद से किसानों की पैदावार बढ़ रही है, खेती की लागत कम हो रही है और आय में भी सुधार देखने को मिल रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक और सटीक कृषि का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। किसान अब फसलों पर कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का सहारा ले रहे हैं जिससे समय और लागत दोनों की बचत हो रही है। इसके साथ ही खेतों में लगाए गए इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर किसान सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के बेहतर निर्णय ले पा रहे हैं जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार परिशुद्ध खेती यानी प्रिसीजन फार्मिंग किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। GPS सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकों की सहायता से किसान पानी, खाद और कीटनाशकों का जरूरत के अनुसार उपयोग कर रहे हैं। फसल उत्पादन बढ़ने के साथ साथ संसाधनों की भी बचत हो रही है। ड्रोन तकनीक भी खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ड्रोन के जरिए खेतों की निगरानी की जा रही है और फसलों में रोग या कीटों के हमले की जानकारी समय रहते मिल जाती है। इससे किसानों को नुकसान कम उठाना पड़ता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी किसानों के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। किसान अब मोबाइल के माध्यम से मौसम की जानकारी, खेती से जुड़ी सलाह और बाजार भाव आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। इससे उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता मिल रही है। कृषि क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और जैव उर्वरकों के उपयोग जैसी पद्धतियां किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। इन तरीकों से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिल रही है। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन यानी FPO किसानों को एक मंच पर लाकर उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इन संगठनों के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, ऋण और बाजार तक बेहतर पहुंच मिल पा रही है। कृषि क्षेत्र में काम कर रहे कई स्टार्टअप भी किसानों तक आधुनिक सेवाएं पहुंचा रहे हैं। ये कंपनियां किसानों को खेती से जुड़ी सलाह, कृषि सामग्री और बाजार से जुड़ने की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक तकनीकों और नवाचारों के बढ़ते उपयोग से कृषि क्षेत्र अधिक मजबूत, लाभकारी और टिकाऊ बन रहा है। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। डिजिटल समावेशन और ई गवर्नेंस भी ग्रामीण विकास के प्रमुख आधार बनकर उभरे हैं। कई ग्राम पंचायतें इसका उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं जहां स्थानीय वेबसाइट और सौर ऊर्जा संचालित कियोस्क के माध्यम से ग्रामीणों को 24 घंटे विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज अब घर बैठे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी प्रकार देश भर में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण

0: नागरिकों को बैंकिंग, बिल भुगतान, डिजिटल लेन देन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों के बढ़ते उपयोग ने किसानों और ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। सौर ऊर्जा के प्रसार से किसानों की पारंपरिक बिजली व्यवस्था और महंगे डीजल पंपों पर निर्भरता कम हुई है। सौर पंपों के माध्यम से किसान कम लागत में सिंचाई कर पा रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन की लागत में कमी आई है और आय बढ़ाने में सहायता मिली है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप किसानों के लिए किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन रहे हैं। इससे सिंचाई की लागत कम हो रही है और किसानों को बिजली की समस्या से भी राहत मिल रही है। साथ ही सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इससे फलों, सब्जियों तथा अन्य कृषि उत्पादों की बर्बादी कम हुई है और किसानों को अपनी उपज उचित समय पर बेचने का अवसर मिल रहा है, जिससे उन्हें बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित लघु उद्योगों और उद्यमों को भी बढ़ावा मिला है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना तथा बिजली बिलों में कमी लाना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं। कौशल विकास और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में किसान उत्पादक संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये संगठन छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक रूप से संगठित कर उनकी क्षमता बढ़ाते हैं और उन्हें सीधे बाजार, प्रसंस्करण इकाइयों और खरीदारों से जोड़ते हैं। केंद्र सरकार की 10,000 किसान उत्पादक संगठन गठन एवं संवर्धन योजना के तहत देश भर में हजारों FPO का गठन किया जा चुका है, जिससे किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधाएं मिल रही हैं। स्थानीय उत्पादों के मूल्यवर्धन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कृषि प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और भंडारण सुविधाओं के विकास से भी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद की है। इससे ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। परिणाम स्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और समावेशी बन रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक आधारित ये पहलें ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न संस्थाएं ग्रामीण नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के माध्यम से दुनिया भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किए जा रहे नवाचारों और विकास मॉडल से भारत सहित अन्य देशों को नई प्रेरणा मिल रही है। ग्रामीण विकास की यह नई यात्रा आने वाले वर्षों में भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की मजबूत आधारशिला बन सकती है।
1: राजेश भैया।
2: हाँ कृष्णा भैया।
1: देखो सुनील कुमार पांडे भैया कितनी अच्छी जानकारी दें कि अपने गांव में नवाचार कौन कौन तरीके से हो रहा है। अब देखो जैसे सोलर बिजली वाला बात बताए कि तो जोन बस सोलर जोन ऊर्जा है तो अपने गांव में लोग अब लगवाए के अपन बिजली भी बचत करते हैं और जोन अतिरिक्त बिजली होता है वो जोन बस सरकार के देते हैं तो उसे अपन पैसा पावत हैं। तो भाई देखो ये सब नई चीज़ें हैं जो अपने गाँव की तरफ पहुँच गए हैं।

0: तो भाई देखो, विकास तो होता ही है भैया, नवाचार अपने गांव में तो है ही है। तो भैया सुनील कुमार पांडे भैया की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया गौन नहीं डाले क्या हो का मुड़ी खजियावत है, हम देखा था कि जौन बा राजेश भैया देखा था हमारे मुंह हम
1: कहे भैया ढूंढ रहे रन गौन नहीं कौन बजाए दिन।
0: अच्छा अच्छा चलो भैया ठीक है,
1: देखो एक लोग भजन भैया ढूंढ के लाए हैं अपने पंचन को सुनावे खातिर, तो श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी बहनी देखो सुना रही हैं
0: लोक भजन,
1: बिल्कुल सुना जाए।

0: राजेश भैया।
1: हाँ कृष्णा भैया,
0: बड़ी नीक गौनाई सुनाया और जौन बार लोग भजन तो बड़ा जीव खुश हो गया। और
1: बिल्कुल
0: बाद चलो अपने खेती पाती की तरफ ही खुशी खुशी में भैया।
1: बिल्कुल भैया, कहे थे देखो सुबैया गए रहन।
0: हाँ?
1: अपने काम में अत्य टाइम मतलब गांव में बड़ा काम चल रहा है।
0: बिल्कुल भैया,
1: काम यूँ चल रहा है कि हम धान की रोपाई हमारी धड़ाधड़ चल रही है इतने टाइम। और
0: अच्छा।
1: साथ में एक के पहले मक्का भी बोई दिए भैया। कहे थे हम थोड़ा अगेती रहे थे कि जब अपन जब काम समय से करीब चालू करिए थे तो क्या होता है कि जो हमारे जो पीछे मतलब पास पड़ोस में रहते हैं वही धड़ाधड़ काम करब चालू कर देते।
0: अरे हम
1: देख देख
0: भैया देखी थे कि राजेश भैया गाड़ी आगे जावा करते हैं तो हम पीछे पीछे लगा रहे थे।
1: नहीं नहीं बिल्कुल भैया, कहा
0: तो,
1: से देखे रहा लगाए रहो।
0: हाँ तो हम तो यही हमारा देखो कबो कबो चला इतने साइकिल लेके कि देख ले राजेश भैया कौनो चोरी छुपा तो ना खेती कर रहे हैं हमें भी ना बताया।
1: नहीं बिल्कुल भैया, कहा से चोरी छुपा नहीं, अगर देखो एक दूसरे से देख के अगर कुछ करत हो तो वही भी सीखा मिलता था कि पड़ोसी का डाल रहा है कहते हमका काहे से फायदा।
0: सही बात है, सही बात है भैया, सही बात है। देखो अपने खेती पाती में हम पंच ऐसे ही करा करी थे एक दूसरे से सीख के एक दूसरे से देख कर पूछ के कि भैया देखो आपको यू जोन

0: धान का बीजा अच्छा है तो ये कहाँ से ले आ रहे हो, तो ये तो सही बात है कि आप खाद कहाँ से ले आए हो, पांस कहाँ से ले आओ।
1: नहीं भैया देखो हम
0: ये सब तो जानकारी चाहे भैया
1: बिल्कुल भैया सही कहो, कहे से हम आपको बतावें, हम तो जैसे कि ये किसान गोष्ठी भी गई, कृषि विश्वविद्यालय हैं और या फिर कृषि विज्ञान केंद्र हैं, मतलब वहाँ पे जाए के भी सीखा करे थे, तो हमसे आए के भी लोग पूछ लेते कि भैया का कहाँ पर कौन चीज
0: अच्छा, यही खातिर एक डायरी बांधे रहा करो तो हम देखी था। अच्छा यही डायरी
1: बिल्कुल भैया झोरले में पड़ी रहा था।
0: अरे बड़ी नीक बात है भाई, देखो अपने पंच भैया भी हम देखा करी थे ना, जो अपन बैठकी में सुना करे थी।
1: अच्छा
0: बहुत पंच भैया डायरी या कलम ले रहा करे थी, काहे के वैज्ञानिक भैया जो अपन नंबर बतावे थे वही सब नोट करे रहे थे। हम तो एक पंच भैया के देखे वो कम से कम 1200 नंबर नोट करे रहे, वही कहे कि सबका नंबर हमारे पास नोट है। और जोन बा अपने जो सुशील कुमार राय भैया बती यही कर रही थी ना, तो देखो अंतिम में नंबर
1: अच्छा, हमें याद आवा अभी एक दिन भैया बतावत रहे हैं खुद के, हाँ। सफल किसान आए रहे वही कहत रहे
0: हाँ, तो। बतावत रहे दिखावत रहे कि देखो इतना नंबर हम आपके बैठक ही से नोट करे है ना, और हम जब जरूरत पड़े था तो और लोगों की।
1: बिल्कुल भैया सही क्यों कहे से देखो अभी भी बतावत रहे कि प्रति बूंद अधिक फसल भी हम अपने अपनाइए थे।
0: सही बात है, देखो पानी जोन बा बहुत उपयोगी है भैया, हम पंच ऐसा खेती करी कि जौन बा भाई बरखा तो यहाँ साल कम है भाई, लेकिन आवे वाले समय में भगवान चाहे तो अच्छा बरखा हुई।
1: बिल्कुल
0: लेकिन हम पंचन के ऐसा चाहे कि अगर जौन बा खेती कर रहे हैं तो ऐसा खेती करी जौन पानी का कम खपत।
1: बिल्कुल भैया सही क्यों कहे से हम लोगों का यह ध्यान रखें कि मान लो हम अगर ज़्यादा पानी चाहे वाली फसल उगाए रहे हैं ठीक है, तो फिर पानी तो बर्बादी हुई जाते है, तो यही लिए कहा है मैं अगर पानी की बारिश ज़्यादा नहीं हुई रही तो हमका मतलब कि सूखा के प्रति जो मतलब कि कहा जाए सहनशील वाली फसलें होती हैं जैसे ज्वार बाजरा है इनका भी अपना है या फिर उर्द मूंग है इनसे भी कम पानी से भी काम चला हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात है, वो कुछ अपने धान का ऐसी प्रजाति आवत है ऐसा विधान आवत है कि अपन बो दो तो जौन बो में पानी कम लगा करता है। देखो वैज्ञानिक भैया बतावा करे थे अपने यहाँ, तो भाई देखो यहाँ समय खरीफ फसल में अपने यहाँ हम पंच बो रहे हैं तैयारी कर रहे हैं कुछ पंच भैया, अब ढेर पंच भैया बो दे हैं।
1: बिल्कुल भैया सही,
0: तो हमें जो फसली खेती कैसे की जाए इसे कुछ देखो आज जानकारी आप ले आओ ना भैया।
1: बिल्कुल भैया तो जानकारी है खरीफ में सह फसली खेती, तो जो जानकारी दे रहे हैं धर्मेंद्र कुमार सिंह भैया और इनसे बतकही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय जी, तो और भैया सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं, खरीफ में जहां सहफसली खेती करना चाहते हैं यानी एक ही खेत में एक से अधिक फसल का उत्पादन करना चाहते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के दौर में भी आप अभीष्ट उत्पादन प्राप्त करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से सहायक निदेशक ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। सिंह साहब ये बताएं कि जहां खरीफ में सफसली खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या कुछ संभावना है?
3: सर्वप्रथम किसान भाई एवं बहनों को नमस्कार। हाँ, जैसा कि अभी आप अवगत हैं कि मानसून में देरी हो रही है और खरीफ की बुआई चल रही है, ऐसी स्थिति में हमको सावधान होना चाहिए कि हम ऐसी फसल बोएं जो कि कम पानी में भी हो जाए और साथ ही साथ विविधकरण के रूप में बढ़ते हुए ऐसी फसल भी साथ में होनी चाहिए जो कि कम पानी में और एक फसल असफल हो तो दूसरी फसल भी पैदावार पूरी करके हमारी इच्छित आय को प्राप्त कर सके। इसके लिए सहफसली खेती अति उत्तम और वर्तमान समय में बहुत से ऐसे विकल्प हैं जहां सहफसली खेती कर सकते हैं,
2: जैसे
3: मक्का के साथ हम मूंगफली कर सकते हैं, मक्का के साथ हम उड़द या मूंग कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में अति कम पानी होती है वहां ज्वार बाजरा के साथ हम मूंगफली या उड़द मूंग कर सकते हैं।
2: और दलहनी फसलों की बात करें तो अरहर के साथ भी कई सा फसली खेती हो सकती है?
3: हाँ, जो परिवार की भूमियाँ हैं जहाँ पे बहुत कम पानी होती है वहाँ अरहर के साथ मूंगफली का एक अच्छा विकल्प माना गया है।
2: और जहाँ केले की बागवानी से जुड़े हैं किसान भाई बहन तो क्या वो भी कोई सा फसल ले सकते हैं?
3: हाँ अवश्य ले सकते हैं, चूँकि केले की भी पौध इस समय जून और जुलाई माह में लगाई जाती है और जुलाई माह में जो किसान बंधु लगा रहे हैं तो 3 से 4 महीने की फसल ऐसी होती है जो पौधे बहुत छोटे होते हैं, उनके अंतर्वर्ती क्षेत्र में अगर वो दलहनी फसल लगाएं जैसे उर्द मूंग या मूंगफली तो एक तरफ तो उनके नमी का संरक्षण मिलता है, खरपतवार कम लगते हैं, साथ ही साथ उनके द्वारा सह फसली में जो मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होती है उससे नाइट्रोजन मिल जाता है तो पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है केलों की और लागत कम हो जाती है।
2: तो जहाँ भी खरीफ में सह फसली खेती करनी है सिंह साहब, तो किसान भाई बहन खेत के चुनाव और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास करें?
3: समानता कोई खास करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि पानी न लगते हो, मतलब नीचे की भूमियाँ न हो, ऊपरवार भूमि में कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।

0: यानी उपहार खेत में सहफसली खेती करना आसान है,
1: आसान है और लाभदायी भी है।
0: तो जहां मक्के के साथ मूंगफली या उड़द और मूंग की सहफसली खेती करनी है तो कौन सी प्रजातियां चुने और अंतरण क्या होगा डॉक्टर साहब?
1: बेसिकली अगर मक्के के साथ करना चाहते हैं तो वर्तमान में बहुत अच्छी प्रजाति आई है NMMH 4140। इसकी उत्पादन मक्के में 80 से 85 क्विंटल तक माता है
0: प्रति हेक्टेयर, यानी ढाई एकड़ में।
1: अगर एकड़ की बात करें तो लगभग 32 से 35 क्विंटल तक हमारी मात्रा मिल जाती है। और ये बहुत अच्छा मक्के की फसल है, इसकी लंबाई भी अच्छी है और एक मक्के में 2 से 3 भुट्टे लग जाते हैं। अगर उसमें बात की जाए तो मक्के की दूरी जो है वह लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर रह सकते हैं,
0: यानी 2 से 2.5 फीट।
1: हाँ, 2 से 2.5 फीट,
0: यानी मक्के की दो लाइनें 2 से 2.5 फीट पर रखें और उसमें 2 लाइन उर्द मूंग या मूंगफली की कर सकते हैं
1: जी।
0: तो मूंगफली और उर्द मूंग की कुछ खास प्रजातियां चुननी होगी।
1: हाँ, मूंगफली की प्रजातियां बहुत अच्छी प्रजातियां आई हुई हैं। इसमें अवतार है, राज मूंगफली 4 है, गिरनार 6 है। यह प्रजातियां ऐसी प्रजातियां हैं जो कि कम समय लेती है और साथ ही साथ कम क्षेत्रफल में वृद्धि करती हैं, तो यह इनका फसल जल्दी ले सकते हैं और उत्पादन बहुत ही अच्छा है।
0: और उर्द मूंग में?
1: उर्द मूंग देखा जाए तो 55 से 60 दिन के अंदर एक आई है मालवीय जंग क्रांति, BHU बनारसी से तैयार, केवल 55 से 60 दिन के अंदर फसल तैयार हो जाती है। यह मूंग की बहुत अच्छी प्रजाति है और बहुत कम पानी में हो जाती है।
0: सिंह साहब, जहां मोटे अनाज में जैसे ज्वार बाजरा है तो उसके साथ मूंगफली या उर्द और मूंग की सफसली खेती करना चाहते हैं तो इसमें क्या कुछ करना है?
1: देखिए, ज्वार और बाजरा के साथ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्वार और बाजरा के पौधे बहुत लंबे होते हैं और ऐसी दशा में थोड़ी भी अगर हल्की पानी होती है तो मृदा का कटाव हो जाता है। अगर हम सफसली करें विशेष उर्द मूंग या मूंगफली की तो नमी संरक्षण मिलता है, मृदा कटाव रोकता है और नाइट्रोजन नमी का संरक्षण भी होता है और साथ ही साथ नाइट्रोजन की मात्रा मिलने से जो अनाज वाली फसल है उसको लाभ भी प्राप्त होता है।
0: यानी जो उर्द और मूंग की सफसली खेती होगी तो उससे नाइट्रोजन की मात्रा ज्वार और बाजरे और मक्के को भी मिलेगी?
1: जी, अवश्य मिलेगी। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे नाइट्रोजन मिल जाती है,
0: यानी वो अतिरिक्त उत्पादन है।
1: साथ ही उस फसल को सड़ा दें तो फसल अवशेष के माध्यम से मृदा में जीवांश की मात्रा भी मिल जाती है,
0: यानी खेत का हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा।
1: हाँ, अवश्य, जो मृदा जीवांश हीमोग्लोबिन ही कहा जाता है वो मात्रा बढ़ जाएगी।
0: तो ज्वार और बाजरा के साथ जहां मूंगफली उर्द या मूंग की सफसली खेती करनी है तो अंतरण क्या होगा?
1: देखिए, मक्का और ज्वार बाजरे में अंतरण लगभग वही होता है, 2 फीट से 2.5 फीट की दूरी रखिए, उनके बीच में 2 फसल रखिए,
0: यानी 2 लाइन रखिए,
1: 2 लाइन के बीच में रखिए आप।
0: और जहां दलहनी फसल अरहर है उसके साथ मूंगफली या उर्द और मूंग की सफसली खेती करनी है तो?
1: अगर आप अरहर कम अवधि की है तो 90 सेंटीमीटर रखी जाती है अंतरण, अगर लंबी अवधि की है 190 से 220 दिन की है तो वहाँ 120 सेंटीमीटर
0: 4 फीट
1: की दूरी रखते हैं और वहाँ पर 3 लाइन से हम मूंगफली की रख सकते हैं या 4 लाइन उर्द या मूंग की रख सकते हैं।
0: सिंह साहब, केले की बागवानी मध्य उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है तो शुरुआती दौर में जब बढ़वार कम रहती है तो अतिरिक्त फसल के रूप में क्या सह फसल ली जा सकती है?
1: अवश्य ली सकती है। जैसे मैं पहले कहा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की वजह से जो मुख्य फसल है उसको लाभ हो जाता है और जीवांश की मात्रा के बढ़ने से उनके उत्पादकता में वृद्धि भी हो जाती है। तो 6 फीट की दूरी पर हम केला बो सकते हैं और उनके बीच में हम 4 से 5 लाइनें आराम से हम ले सकते हैं, क्योंकि केले में फसल मिट्टी भी चढ़ाई जाती है।
0: तो जहां भी खरीफ में सह फसली खेती करने जा रहे हैं किसान भाई, चाहे मक्के के साथ मूंगफली उर्द मूंग, ज्वार बाजरा के साथ मूंगफली उर्द मूंग, अरहर के साथ मूंगफली उर्द मूंग या केले के साथ मूंगफली उर्द और मूंग की खेती करना चाहते हैं सह फसल के रूप में, तो फसल की भूख कैसे मिटाएं और बुआई में कौन कौन सी सावधानियां रखें?
1: देखिए, फसल की भूख मिटाने के लिए ऑलरेडी हम हल्की मात्रा नाइट्रोजन देते हैं जो शुरुआती पौधों की वृद्धि को हो सके। उसके बाद से जैसे पौधे हमारे लगभग 50 दिन के हो जाते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होने की वजह से ऑलरेडी वो नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है, लेकिन इन फसलों की वृद्धि के लिए पोटास और फास्फोरस की मात्रा होती है वो देनी होती है,
0: बेसल डोज
1: के रूप में दे दें और इससे अच्छा होता है। कई बार देखा गया जब जीवांश मात्रा मिलाते हैं तो उसमें पोटेशियम मिल जाती है, तो पोटास की मात्रा भी कम कर सकते हैं या उसे पर्णी छिड़काव के माध्यम से दे सकते हैं, तो फसल में मुख्य फसल की भाई लागत भी कम हो जाती है।
0: खड़ी फसल में और कौन सी आवश्यक देखभाल है?
1: खड़ी फसल में अल्टीमेटली आप सिंचाई की मात्रा हल्की करते रहें जिससे कि अंतर्वर्ती फसलों के भी पर्याप्त मात्रा पानी मिलते रहे। अधिक मात्रा पानी एक पर...

0: वह एक साथ ना करें।
1: और खुराक तो मुख्य फसल और सह फसल दोनों की देनी पड़ेगी,
0: एक ही खुराक में दोनों की फसल हो जाती है।
1: सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में सह फसली खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विभाग ब्यूरो कार्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हाँ किसान भाइयों बहनों, हमारा मोबाइल नंबर है 7839882107, 7839882107, 7839882107। और किसान बंधु अब कृषि विश्वविद्यालय कृषि भवन भी आकर आप संपर्क कर सकते हैं।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में सह फसली खेती के बारे में?
0: हम सभी किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध करेंगे कि जहाँ भी परिवार भूमि हो तो एकल खेती न करके सह फसली खेती अवश्य करें। इससे क्षति होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और फसल से हम अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: धर्मेंद्र कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जहाँ खरीफ में सह फसली

0: तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: हाँ किसान भाइयों बहनों, मेरा मोबाइल नंबर है 7839882107, 7839882107, 7839882107। और किसान बंधु अब कृषि विश्वविद्यालय कृषि भवन भी आकर आप संपर्क कर सकते हैं।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में सा फसली खेती के बारे में?
1: हम सभी किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध करेंगे कि जहाँ भी परिवार भूमि हो तो एकल खेती न करके सफसली खेती अवश्य करें। इससे क्षति होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और फसल से हम अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।
0: धर्मेंद्र कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जहाँ खरीफ में सफसली खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो कौन सी फसल का चुनाव करें, कौन सी उनकी उन्नत प्रजातियाँ चुनें और एक ही खेत में फर्दा फसल यानी एक फसल लेने के बजाय अगर मुख्य फसल के साथ साथ सह फसल भी ले लें यानी सफसली खेती कर लें तो आमदनी का एक अच्छा स्रोत कैसे बने, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राजेश भैया।
3: हाँ कृष्ण भैया।
2: देखो जौनबा कितनी अच्छी जानकारी रही कि अगर जौनबा भाई सह फसली खेती ले रहे हो तो कितना फायदा होता और अतिरिक्त जौनबा खाद पानी का जरूरत नहीं पड़ा तो एक ही में डाला तो दोनों को फायदा होता।
3: बिल्कुल भैया, काहे से देखो कभी दलहनी फसल उगाई लेते हैं, कभी मतलब की वो अखाद्य वाली फसलें रहती है,
2: बिल्कुल
3: उनके बीच में का एक कॉम्बिनेशन मतलब संयोग बन जाता है भैया।
2: बिल्कुल भैया, देखो हम पंच बहुत पहले से जौनबा अरहर के साथ जौनबा डाल दे रहे, उड़द डाल देते रहे, मूंग डाल देते रहे, ऊपर अरहर निकल गया नीचे उड़द हो जाते रहे तो ऊपर के लिए आवा जाता रहा।
3: अरे भैया यही इसलिए कहा जाता है ना, अरहर के साथ में अगर ज्वार बोली जाते हैं तो इतना उकट्ठा रोग से बचत हुई।
2: हाँ मिलवा फसल
3: यानी कि खरीफ में सह फसली खेती विषय पर जानकारी धर्मेंद्र कुमार सिंह भैया जो दी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो मतलब संचालन कार्यक्रम कर रहा है डॉक्टर सुशील कुमार राय जी का, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल भैया, एक चीज और है, चलो हम नए जगह नहीं चलत है आप पंचन के वो कहाँ
3: गए रहो का भैया?
2: हाँ जी भैया, हम महोत्सव चलत है ना अपने यहाँ लखनऊ।
3: अच्छा अच्छा, हाँ
2: पूरे देश विदेश के भैया इतना जो बागवान आए हैं, नया नया वेरायटी का आम देखे मिलते ना, वो देखो छोटका आम ऐसे गूलर जैसा कोनो कोनो आम तो एकदम हाथी हौदा आम देखे हम।
3: बिल्कुल
2: भैया, इलाका 2 किलो काम है।
3: बिल्कुल भैया,
2: तो बहुत अच्छा बड़ा आनंद आया है भैया। तो जौन जौन लखनऊ में आम महोत्सव हो रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पे, तो उसे संबंधित एक रिपोर्ट, रेडियो रिपोर्ट है, रियाज भैया ओके संकलन करे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो आओ सुना जाए।
3: बिल्कुल भैया,
4: उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया गया है, इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 जुलाई को किया गया और इसका समापन 5 जुलाई को होना है। तो आज 4 जुलाई को हम यहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ लोगों से हमारी बात हुई, आम के स्टॉल भी लगे हुए हैं और तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। हमारे साथ में जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर भी, और इनसे बात करते हैं।
5: डॉक्टर सीमा सिंह राणा, जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर। हमारे यहाँ जनपद से कल जो है उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक आम बागवान श्री सूर्यमणि यादव जी को सम्मानित किया गया, जिन्होंने 140 प्रजाति के आम के बाग लगाए हुए हैं। और आज हमारे यहाँ से कृषक भी जो है जौनपुर से विजिट करने आए हुए हैं यहाँ पर, जो विभिन्न प्रजाति के आम के प्रदर्शन को देख रहे हैं और वो बड़े ही उत्साहित हैं। और मीडिया में जो चल रहा है कि जौनपुर के किसान सम्मानित हुए हैं, तो इससे बहुत से किसानों का हमारे पास वहाँ से फ़ोन भी आया कि हम विभाग लगवाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शनी जो है और मोटिवेट करता है और दूसरे किसानों को कि इस क्षेत्र में हम बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ें।
4: कुछ किसानों से मेरी बात हुई है, इन्हीं में से एक किसान है, आइए इनका परिचय जानते हैं और जानते हैं कि कहां से आए हैं और इनका नाम क्या है।
6: मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, मैं लखीमपुर खीरी से आया हूं, मेरा रमिया भेड़ ब्लॉक पड़ता है। मैं आम के बाग 1 हेक्टेयर के करीब लगाया हूं, जिसमें कि दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, अम्रपाली है। मेरे पास यही 4 वेराइटियाँ लगी हुई हैं और ये आम महोत्सव जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ष मनाती है, और ये आम महोत्सव में हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे किसान आते हैं और यहाँ पर आ कर करके यहाँ पर अनेकों प्रकार की वैरायटी को, आम के फलत को देखते हैं, जिससे अनुभव होता है कि हम लोग कितने आगे हैं। और आप लोगों को मैं बताते चलूं कि आम महोत्सव देखने से ही पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमको कितना से अच्छा करना चाहिए, अपनी लैंड में कौन सी प्रजाति को लगाना चाहिए जिससे और हम अच्छा कर सकें। भारत देश से अनेकों देश में यहाँ से फल को, आम को भेजा जाता है, जिससे कि हमारे भारत देश का भी आम विदेशों में जा करके लोग इसका स्वाद ले।

0: हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
1: ये आपके यहाँ जो आम लगे हुए हैं, तमाम प्रजातियाँ आपने बताई, तो इस बार फसल का उत्पाद जो है कैसा है, फलत कैसी है?
0: इस बार आम का बोर तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन जब मार्च अप्रैल का जब तापमान बढ़ा उससे कुछ आम फलत कमजोर हुआ, तो थोड़ा सा कम पड़ा है गत वर्षों के बाद, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया मेरे बाग में खासतौर से।
1: एक और किसान हमारे साथ में है, आइए इनसे बात करते हैं।
2: हमारा नाम देश दीपक वर्मा है, ग्राम पोस्ट देवीपुर लखीमपुर खीरी, और हमारे पास बाग लगी है 150 बीघे, तो उसमें हर वैरायटी लगी है। यहाँ पर आए आम महोत्सव में हमको बहुत अच्छा लगा, और बागवानी के खेती के बारे में यहाँ लोग सर लोग बताया।
1: कौन कौन सी प्रजाति है?
2: दशहरी, लंगड़ा, चौसा, अरुणिका और अंबिका है।
1: एक और किसान हमारे साथ में है।
3: मेरा नाम जागीर सिंह है, मैं लखीमपुर खेरी से हूँ, और 6-7 एकड़ खेती हम लोग करते हैं, और अभी तक तो गन्ना और गेहूँ धान की फसल करती, इस साल कुछ बाग लगाने का सोचा है, इसीलिए जानकारी के लिए।
1: तो आम की आपके प्रजातियों की बात करें तो कौन कौन सी प्रजातियां आप लगाना चाह रहे हैं?
3: अभी तो जानकारी ही ले रहे हैं फिलहाल, बुक लिया है, बुक से देखेंगे, वो समझ में आएगा वो लगाएं।
1: और किसान हमारे साथ में है, आइए इनसे बात करते हैं।
4: मनोज कुमार तिवारी, ग्राम कुसुम्बी पड़ता है, जिला फतेहपुर है। बागवानी तो 1-1.5 एकड़ होगा, और खेती 6-7 एकड़ है। आम है, आंवला है, करौंदा है और नींबू।
1: आम में कौन कौन सी प्रजातियां आपके बाग में?
4: देसी में है और दशहरी है, और भी वैरायटियां हैं।
1: आम की प्रजातियों में और वृद्धि करना चाहेंगे?
4: जी हाँ, और वृद्धि करना चाहते हैं। दूसरा, उसमें जो कीड़े और ये लगते हैं, इनकी दवा और जो नहीं आते, फूल जो उसका नहीं आता, उसके लिए आए थे कि यहाँ पता चले कैसा क्या है, जानकारी लेंगे, काफी जानकारी मिली।
1: और एक और किसान हमारे साथ में है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये कहाँ से आए हुए हैं।
5: हमारा नाम पुत्तनलाल है, और हम फतेहपुर से आए हुए हैं, ग्राम बड़नपुर पड़ता है, और हम खेती करते हैं, किसान है, और हम आम की खेती भी करना चाहते हैं, तो उसी बारे में कुछ जानकारी चाहिए था हमें।
1: बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर हैं, चाहे नर्सरी की बात की जाए, तो आपको कौन सी ऐसी प्रजाति समझ में आई कि आप चाहते हैं कि आप यहाँ से लेकर जाएंगे और इसकी नर्सरी लगाकर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे?
5: 64 की वैरायटी ले रहे हैं हमारे पास, 1 बीघे लगवाएंगे। अभी हमारे पास दशहरी उपलब्ध है, इस समय दशहरी का पेड़ है मेरे पास।
1: एक और किसान हमारे साथ में है।
6: मैं विनय सैनी, मलिहाबाद, ग्राम नबीपना, जिला लखनऊ का निवासी हूँ। मेरे पास जो वैरायटी चाहे वो आपको मिलेंगी, अब वैरायटी आपको बतानी होगी पौधा कौन सा चाहिए। केसर चकापात है, हमारा मोदी मैंगो है, आया एक नया जो आपके सामने है, तोता फरी मिल जाएगा, सैमसन मिल जाएगा, स्वर्ण रेखा मिल जाएगा, रामकेला मिल जाएगा।
1: एक और किसान हमारे साथ में है, आइए इनसे बात करते हैं।
7: जी मैं धर्मराज पटेल, ग्राम सभा महेवा मरिया हूँ, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। बागवानी केले की भी करते हैं, आम की भी करते हैं, और जो है बागवानी के साथ साथ ये सब्जी की खेती भी करते हैं हम लोग, टमाटर वगैरह की भी खेती करते हैं। यहाँ पे बहुत से अच्छी अच्छी वैरायटी के आम आए हुए हैं प्रदर्शनी में, इसको मैं अपने यहाँ ले जाकर लगाना चाहता हूँ।
1: और एक और किसान हमारे साथ में है।
8: उमा शंकर पटेल, हम जौनपुर जिले से, ब्लॉक रामपुर, ग्राम महथेरा नयपुर है। हमने देखा कि यहाँ की जो वैरायटी है बहुत अच्छी हमको लगा, और इस वैरायटी को गाँव में लेकर जाकर लोगों को बताएंगे कि इससे हमें कितना फायदा होगा लगाने पर, इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि गांव में जमीन बहुत है। तो आम का जो वैरायटी देखें, और उसमें हम अपने मोबाइल में भी सेव कर लिए हैं कि आम की वैरायटी क्या है, क्या क्या चीजें हैं।
1: एक और महिला हमारे साथ में है, आइए इनसे बात करते हैं कि कौन कौन से उत्पाद ये बनाती हैं और बनाने में क्या क्या सावधानियां बरतती हैं।
9: मेरा नाम हलीमा है, लखनऊ से। आकांक्षा मसाला मठरी केंद्र जी, मठरी का सामान बनता हमारे यहाँ, मसाले का भी बनता, मठरी का भी बनता है, मठरी लड्डू बहुत आइटम है, आइटम का नाम कितना गिनवा है। मेरे वहाँ कोई मिलावट नहीं है, शुद्धता बहुत है, सामान का साफ सफाई है, और महिलाएं बहुत मन से काम करती हैं। बेसन है, हल्दी है, मिर्चा है, कुटा मिर्चा, धनिया, चाट मसाला, आम अचार, चटनी है, चाट मसाला, काली मिर्च, जीरा, मिर्चा, कश्मीरी मिर्च है, और मठरी का आइटम है, नमक पारा, गोंद पंजीरी, मसाला मठरी, खजूर, शक्कर पारा, दाल मोठ, पापड़ी। हमारे यहाँ 115 महिलाएं काम कर रही हैं।
1: एक और प्रतिभागी हैं जिन्होंने तमाम तरह की वैरायटी के आमों की प्रदर्शनी लगा रखी है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका संस्थान कहाँ पर, इनकी बागवानी कहाँ पर है, और ये कहाँ से आए हुए हैं।
10: पन्ना लाल है, मलिहाबाद से। आप इनकी नर्सरी देखते हैं जुगौर में, और वहाँ रंगीन वैरायटी पेड़ों से कलम भी रंगीन तैयार करते हैं। 25 वैरायटी टामी है, सेंसेशन है, अंबिका है, हुसनारा है, यही वैरायटी है। बागवानी में देख रेख करना पड़ता है, पानी भी देना पड़ता है।

0: लगता है, उसको प्रतिदिन देखना पड़ता है, यही सावधानी बरतना पड़ता है। कहते 20 एकड़ में है नर्सरी, हम देखते हैं गुठली से जमता है पौधा, वैसे उसको तैयार करते हैं एक साल के बाद ही उसमें कलम चढ़ाई जाती है, उसको पानी की देख रेख की जाती है, खाद पानी समय समय से दिया जाता है। किसान सब आते हैं, देखते हैं, खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, पौधा खरीदते हैं।
1: एक और महिला उद्यमी हमारे साथ में है।
2: हमारा नाम तारावती है, नौ धमरे में रहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में हम काम करते हैं, मैं सब प्रोजेक्ट बनाते हैं और वहीं से सारा सेल करते हैं।
1: क्या क्या आप बनाती हैं?
2: आम कैंडी, आम पापड़, आम अचार और आम फाके, वहाँ सब बनता है।
3: मेरा नाम सोभित कुमार है, केंद्र द्वारा उन्नाव में डेयरी यूनिट का भी काम देख रहा हूँ। अभी जो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं।
1: गृह उद्योग करने वाली एक महिला हमारे साथ में है।
4: मेरा नाम मालविका सिंह है, मैं फतेहपुर जिले से हूँ। मैं वहाँ पे हर वैरायटी का अचार, मुरब्बा, कैंडी, जो चीज़ें किसानों के पास उपलब्ध रहती हैं हमारे आसपास, उन्हीं चीज़ों को मैं किसानों से लेकर के उसका रूप बदल करके और किसी को अचार बनाती हूँ, किसी की कैंडी बनती है, मुरब्बा बनता है, चूरन बनता है, बुकनू बनता है, आम का पना है, आम का अमरस है, आम का खट्टा अचार, मीठा अचार, हर वैरायटी का प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, जिससे हमारे प्रदेश के, हमारे देश सभी लोग शुद्ध और अच्छा खाएं और जिससे स्वास्थ्य उनका अच्छा रहे। ये इकाई मेरी फतेहपुर जिले में है, माँ गायत्री फूड प्रोडक्ट। वहाँ पे 20 महिलाएं, आसपास के गांव की महिलाएं आती हैं हमारे पास, जिन्हें हम रोजगार देते हैं, जिससे वो अपना घर का खर्च भी चला लेती हैं और प्लस वो अच्छी चीज़ें बनाना भी सीख जाती हैं, कैसे खाद्य पदार्थों का रूप बदल के हम उसे लंबे समय तक चला सकते हैं।
5: इस आम महोत्सव 2026 में उत्तराखंड से अपना प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त निदेशक उद्यान श्री एम कुमार से हमारी बातचीत हुई, आइए इनसे बात करते हैं।
6: मैं डॉक्टर एन कुमार, संयुक्त निदेशक उद्यान उत्तराखंड। हमारा एक राजकीय उद्यान काशीपुर है, जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और खास करके वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है। वहाँ पर हम लोगों ने लगभग 35 से भी अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया है और उनको संवर्धन भी कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से वहाँ पर दशहरी है, लंगड़ा है, चौंसा है और पूसा से जो डेवलप्ड वेराइटी हैं जैसे अरुणिमा है और इसी तरीके की बहुत सी लगभग 8-10 वेराइटियों को हम लोगों ने कंजर्व किया है, अरुणिमा है, अरुणिका है, तो इस तरीके से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर एक प्रजाति जो बारहमासी है, जो हम लोगों ने वहाँ पर जस्ट अभी हमने उस पर ट्रायल किया है और तो उसमें साल में 2 बार फलत आ रही है। खास करके देखा यह गया जितनी प्रजातियां अधिकांशता वो सारी जो हमारी एक ही बार फ्रूटिंग करती हैं और हमारी जो हार्वेस्टिंग है इस समय मई और जून में होती है जिसकी, लेकिन ये प्रजाति ऐसी है जो हमारा इस समय भी फ्रूटिंग कर रही है। इसके अलावा जो सितंबर अक्टूबर में भी जो है इसमें फल हम हार्वेस्ट करेंगे, तो 2 बार फल आने का मतलब है कि हम जो है जस्ट डबल इनकम जो है किसान को दे पाएंगे। इसके अलावा मैंडेट ये भी हमारे गवर्नमेंट का है कि जो हमारा आम के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, वैसे तो हमारे पूरे उत्तराखंड में लगभग 21,000 हेक्टेयर में हम लोग क्षेत्रफल आच्छादित कर रहे हैं आम के मामले में, अलग अलग प्रजातियों का, वो हिल्स में भी है और प्लेन में भी है, तो उसमें मुख्य रूप से जो हमारा उत्पादन हो रहा है 1,14,000 मैट्रिक टन का उत्पादन अभी हो रहा है। तो इसको हम लोग जस्ट बढ़ाने के उसमें काम कर रहे हैं, जो है जो हमारी नई वेराइटियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, उसका हम अधिक से अधिक आच्छादन करेंगे। दूसरे जो रेगुलर प्रजातियाँ हैं उसको भी हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है किसानों को, उससे भी हम लोग जो है रूबरू करा रहे हैं ताकि लोग किसान ट्रेनिंग लेकर के और जो आम की बागवानी को आगे बढ़ाएं। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है किसान जो टेक्निकल चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा एक साउंड होगा और अपना जो आम के मामले में है तो वो पूरी तरीके से एक सेल्फ सफिशिएंट होगा, यानी आत्मनिर्भर होगा और उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ा जा सकेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के।
5: तो ये थी उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में प्रतिभाग करने वाले कुछ प्रतिभागियों से हुई हमारी बातचीत के संपादित अंश। आज की इस रेडियो रिपोर्ट में बस इतना ही, इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
7: कृष्णा भैया,
8: हाँ भैया, देखो ये उत्तराखंड, देखो आम महोत्सव में जितना मेहमान आए हैं ना, वो अपन अपन अनुभव बताया, वो कितना भैया देखो अच्छी चीज बताया कि क्यों आम का चार कैंडी लेके आवा है, क्यों अपने घर एक उत्पाद लेके आवा है, क्यों नया नया आम का वेरायटी लेके आवा।
7: बिल्कुल भैया सही कहो। तो ये की जो संकलन किए हैं रियाज अहमद भैया और प्रस्तुति रहे डॉक्टर सुशील कुमार राय जी की, तो
8: बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखो समसामायिक जानकारी हम पंच अपने बैठकी में जरूर देवा करी थे, और भैया तो चलो देखो ये काला सुन ली जाए और तब फिर भैया देखो
7: देखो तो, भैया टाइम नहीं है ज्यादा,
8: अच्छा समय तो

0: पता कहा था कि आज जोन बाला ना सुनाई क्या जो चलो काल सुना भैया देखो हम पंच तो बैठक में यही प्रयास करी था कि पंच भाइयन के और कुछ नवा नवा सुनावा जाए लेकिन जोन बा चलो तो ना समय है तो मौसम भर के समय तो है ये है मौसम समाचार बता दी जाए पंच भाइयन से। देखो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विभाग से जोन आज से लेके 7-10 तारीख तक मौसम पूर्वानुमान मिला है वो है पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों में हल्की मध्यम वर्षा होने के 4-5-6 के संभावना है और मौसम संबंधित कोनो चेतावनी ना है भैया 7 और 8 तारीख के गरज चमक के साथ वर्षा का कुछ संभावना है और भाई देखो जोन बा गरज चमक रहे तो अपन बच के रहो भैया।
1: बिल्कुल भैया
0: यही है मौसम का समाचार और विशेष कौन भैया चेतावनी ना
1: बिल्कुल भैया सही क्यों कहा ऐसे देखो अपन प्रोग्राम कई से लागत है अपने पंचन का यही के लिए अगर वो चिट्ठी मतलब चिट्ठी पत्री अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख के अपनी प्रतिक्रियाएं बता सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया बता सकते हैं ये तो खुला मंच है अपन पंचन का और पंच भाई इनका मंच है में।
1: बिल्कुल भैया तो एक के लिए पता नोट कर लें पता है मतलब कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड है 226001 और भैया बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कह सकते हैं ईमेल आईडी जो है farmandhome@gmail.com।
0: चलो भैया ठीक है तो gmail.com पे पंच भैया लिखें जो चाहें अपने संबंधित प्रक्रिया एक बात देखो घड़ी सारा करते है पंच भैया से लीजिए विदा।
1: जय हिंद।

लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की तीन दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 सदस्यीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर पहली बार लखनऊ पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने लखनऊ एयरपोर्ट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी उपस्थित रहे। इसके बाद श्री नवीन ने एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक रोड शो किया। इस दौरान जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने स्वागत के लिए प्रदेशवासियों और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया।
3: उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं। लखनऊ की धरती पे लोगों ने मुझे अभिमान दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी और पूरे लखनऊ के लोगों का अभिनंदन कर धन्यवाद करता हूं।
2: अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे

0: श्री नवीन विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अपने दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासों से 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर स्तर पर समय रहते निर्णय लिए, उभरते संकट का सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति तैयार की और देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कूटनीति और रणनीतिक उपायों से देश ने संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। श्री मोदी ने आज राजस्थान में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया।
1: पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं।
0: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा। 28 जून 2026 को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार ये बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष की स्वीकृति से कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी द्वारा बुलाई गई है। बैठक की कार्यसूची में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए त्याग पत्रों पर विचार किया जाना शामिल है। बैठक में भविष्य में राम मंदिर के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज महोबा में श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। लिखित परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2-2 पाली तथा आज 1 पाली में समाप्त हुई। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार परीक्षा में 88.77% अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान 44 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के प्रति आभार व्यक्त किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन भारत की सनातन चेतना का एक जीवंत प्रकाश स्तंभ है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने सार्वजनिक महत्व की भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इसके तहत अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति तथा शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी वादों की सुनवाई 3 सदस्यीय विशेष पीठ द्वारा की जाएगी। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: राजस्व परिषद के अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार इन मामलों पर विशेष रूप से गठित 3 सदस्यीय पीठ सामूहिक रूप से विचार करेगी। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और

0: प्रयागराज दोनों न्यायालयों के लिए अलग अलग 3 सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है। इन विशेष पीठों द्वारा प्रत्येक बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य पहल के तहत राजस्व परिषद के न्यायालयों द्वारा किसी वाद में अभिलेख तलब किए जाने पर सामान्यतः मूल अभिलेखों के स्थान पर संबंधित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रमाणित पूर्ण स्कैन प्रति के आधार पर ही न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 के दूसरे दिन आज जनभवन लखनऊ में मैंगो बायर सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह सम्मिलित हुए। इस अवसर पर आम निर्यातकों और आम उत्पादकों के मध्य MOU भी हुए। इस अवसर पर उद्यान मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है।
2: उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनके तैयार हो गए हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा।
1: महोत्सव के दूसरे दिन आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विज्ञान विभाग के अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रदेश भर से आए प्रगतिशील आम उत्पादक किसानों के बीच एक तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित राज्य के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों में कानपुर और आज सुबह टूंडला में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 88% अभ्यर्थी हुए परीक्षा में शामिल। प्रदेश सरकार ने राजस्व से जुड़े सार्वजनिक भूमि के मामलों के लिए लागू की नई व्यवस्था। लखनऊ और प्रयागराज में गठित 3 दिवसीय विशेष पीठ करेगी वादों की सुनवाई। और कानपुर तथा टूंडला में भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।
5: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। मैं हूं प्रवीण। आज के इस अंक में हम जानेंगे इस सप्ताह विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में हुए गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे फुटबॉल का विज्ञान, मैदान पर जादू या फिजिक्स का खेल विषय पर वार्ता। लेकिन सबसे पहले विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह क्या कुछ हुआ, जानते हैं शिवा राकेश से।
6: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड का 88% लक्ष्य क्षमता थ्रस्ट पर सफल हॉट टेस्ट करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया यह परीक्षण नए प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्शन सिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि भारत ने उस क्रायोजेनिक इंजन तकनीक में महारत हासिल कर ली है जो कभी उसे देने से इनकार कर दी गई थी। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN ने 29 जून 2026 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC को 4 साल के लिए बंद कर दिया है।

0: इसी महामशीन ने 2012 में गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन की खोज की थी। इस 4 साल के अंतराल को लॉन्ग शटडाउन 3 नाम दिया गया है, जिसका उद्देश्य इस मशीन को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पृथ्वी पर 1 साल तक चलने वाले चंद्रमा और मंगल ग्रह जैसे सिमुलेशन मिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस 1 साल के सिमुलेशन मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य, प्रदर्शन और पृथक वातावरण में रहने की क्षमता का अध्ययन करना है। विश्व शूद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ एवं यूपी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों एवं जन सामान्य में शूद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, उल्का पिंडो, ग्रह सुरक्षा तथा अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक सोच को विकसित करना था। 30 जून 1908 को साइबेरिया के उसका क्षेत्र में घटित ऐतिहासिक शूद्र ग्रह विस्फोट की स्मृति में प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है।
1: और अब बात फुटबॉल की। जब मेसी डिफेंडर्स को छकाते हुए गेंद को नेट में डालते हैं या रोनाल्डो हवा में ऊपर उछलकर हेडर मारते हैं तो दिल से एक ही आवाज निकलती है, यह तो जादू है। लेकिन क्या यह वाकई जादू है या इसके पीछे छिपा है विज्ञान का कोई गहरा राज, इसे समझने के लिए सुनते हैं यह वार्ता। वार्ताकार हैं विज्ञान संचारक और उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव दीपक कोहली जी।
2: नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच पूरे शबाब पर है। दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों की नजरें मैदान पर टिकी हैं। हर शानदार गोल, हर सटीक पास और हर बेहतरीन फ्री किक हमें रोमांच से भर देती है। फुटबॉल के खेल के मैदान पर जब कोई खिलाड़ी 30 गज की दूरी से ऐसा शॉट मारता है कि गेंद हवा में किसी अदृश्य सर्प की भांति लहराती हुई गोल पोस्ट के सुदूर कोने में जाकर समा जाती है तो स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक आश्चर्य से भर उठते हैं। उनके लिए यह किसी जादू से कम नहीं होता, किंतु विज्ञान की भाषा में यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि भौतिकी, गणित, जैव यांत्रिकी और मानव शरीर विज्ञान के नियमों का अत्यंत सटीक प्रदर्शन है। फुटबॉल केवल 2 टीमों के बीच खेले जाने वाला खेल नहीं बल्कि विज्ञान की अनेक शाखाओं का जीवंत प्रयोगशाला सदृश प्रदर्शन है, जहां हर पास, हर दौड़, हर टैकल और हर गोल के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक सिद्धांत कार्य करता है। फुटबॉल के विज्ञान की चर्चा उस प्रसिद्ध बनाना किक से आरंभ की जा सकती है जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। डेविड बेकम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और रोबाल्टो कार्लोस जैसे खिलाड़ियों ने कई बार ऐसे फ्री किक गोल किए हैं जिनमें गेंद सीधी न जाकर हवा में एक विचित्र घुमावदार मार्ग अपनाती हुई गोल में प्रवेश करती है। यह घटना मैग्नस इफेक्ट का परिणाम है। जब खिलाड़ी गेंद को उसके केंद्र से हटकर पैर के किनारे से प्रहार करता है तो गेंद के भीतर घूर्णन अर्थात स्पिन उत्पन्न हो जाता है। आगे बढ़ती हुई यह घूमती गेंद अपने दोनों ओर की हवा की गति में अंतर पैदा करती है। गेंद के एक ओर हवा अपेक्षाकृत तेज गति से बहती है जबकि दूसरी तरफ धीमी गति से। परिणाम स्वरूप दोनों ओर वायु दाब में अंतर उत्पन्न होता है और गेंद उच्च दाब से निम्न दाब की ओर मुड़ने लगती है। दर्शकों को यह कोई जादुई मोड़ जैसा दिखाई देता है जबकि वास्तव में यह द्रव गतिकी का अत्यंत ही सुंदर उदाहरण है। यही कारण है कि कभी गेंद गोलकीपर के हाथों की पहुंच से बाहर अचानक मुड़ जाती है और गोल में समा जाती है। फुटबॉल में गति और बल का संबंध भी उतना ही रोचक है। जब कोई खिलाड़ी हवा में आती गेंद पर वॉली शॉट लगाता है तब पैर और गेंद का संपर्क केवल 8 से 10 मिली सेकेंड तक रहता है। यह समय पलक झपकने में लगने वाले समय का भी एक छोटा अंश है, किंतु इसी क्षण में खिलाड़ी का पैर गेंद पर सैकड़ों किलोग्राम के बराबर बल आरोपित करता है। प्रहार के समय गेंद कुछ क्षण के लिए दब जाती है और उसकी संरचना में स्थित बहुलक पदार्थ ऊर्जा को संचित कर लेते हैं। अगले ही पल यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर गेंद को तीव्र वेग प्रदान करती है। विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के शॉट 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे अथवा उससे अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया सर आइजक न्यूटन के तीसरे नियम का प्रत्यक्ष उदाहरण है जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। खिलाड़ी का पैर गेंद को जितना बल देता है गेंद भी उतना ही प्रतिरोधी बल पैर पर लगाती है। यही कारण है कि एक शक्तिशाली शॉट के लिए केवल तकनीक ही नहीं बल्कि मांसपेशियों की शक्ति और शरीर के संतुलन की भी आवश्यकता होती है। फुटबॉल की गेंद स्वयं विज्ञान और अभियांत्रिकी का एक उत्कृष्ट नमूना है। आज जो गेंद हमें दिखाई देती है वह कई दशकों के तकनीकी विकास का परिणाम है। 20वीं शताब्दी में प्रचलित

पारंपरिक गेंदें 32 चमड़े के पैनलों को सिलकर बनाई जाती थी। उनकी सतह पर अनेक सीम होती थी जो हवा के साथ उनकी पारस्परिक क्रिया को प्रभावित करती थी। आधुनिक युग में फीफा विश्व कप जैसी प्रतियोगिताओं में प्रयुक्त गेंदें थर्मल बॉन्डिंग तकनीक से निर्मित की जाती हैं। इनमें पैनलों को सिलने के बजाय ऊष्मा और दाब द्वारा जोड़ा जाता है। कुछ आधुनिक गेंदों में केवल 14 अथवा 8 पैनल ही होते हैं। पैनलों की संख्या जितनी कम होती है, गेंद का आकार उतना ही अधिक गोलाकार और सममित होता है। सिलाई की अनुपस्थिति से सतह अधिक चिकनी बनती है, जिससे वायु प्रतिरोध नियंत्रित होता है और गेंद का व्यवहार अधिक अनुमानित हो जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा विंड टनल परीक्षणों में गेंदों का अध्ययन किया जाता है, ताकि यह समझा जा सके कि विभिन्न वेगों पर उनका एरोडायनामिक व्यवहार कैसा रहेगा। फुटबॉल केवल गेंद का विज्ञान नहीं है, यह मानव शरीर की क्षमताओं और सीमाओं की भी परीक्षा है। एक पेशेवर मिडफील्डर 90 मिनट के मैच में औसतन 11 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। यह सामान्य दौड़ नहीं होती, बल्कि इसमें तीव्र स्प्रिंट, अचानक रुकना, दिशा बदलना, कूदना और टक्कर खाना शामिल होता है। ऐसी परिस्थितियों में शरीर की ऊर्जा प्रणालियां निरंतर सक्रिय रहती हैं। जब खिलाड़ी सामान्य गति से दौड़ रहा होता है, तब उसका शरीर एरोबिक प्रणाली का उपयोग करता है, जिसमें ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न होती है। किंतु जैसे ही वह अचानक तेज गति से स्प्रिंट करता है, तो शरीर को तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता होती है और एनारोबिक प्रणाली सक्रिय हो जाती है। फुटबॉल को अक्सर पैरों का खेल कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह खेल दिमाग का भी उतना ही है। जब कोई खिलाड़ी पास प्राप्त करता है, तो कुछ ही सेकंड के हजारवें हिस्से में उसका मस्तिष्क अनेक सूचनाओं का विश्लेषण करता है। गेंद की गति क्या है, विरोधी खिलाड़ी कितनी दूरी पर है, किस दिशा में खाली स्थान उपलब्ध है, साथी खिलाड़ी कहाँ मौजूद है और अगला कदम क्या होना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मस्तिष्क तत्काल खोज लेता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार एक अनुभवी खिलाड़ी का मस्तिष्क पैटर्न पहचानने में अत्यंत दक्ष हो जाता है। वह मैदान की परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने लगता है और कई बार ऐसा निर्णय लेता है जो सामान्य दर्शक को चमत्कारिक प्रतीत होता है। यही कारण है कि महान खिलाड़ी अक्सर खेल को दूसरों से कुछ सेकंड पहले ही पढ़ लेते हैं। स्पेन और बार्सिलोना की प्रसिद्ध टिकी टाका शैली इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यह शैली केवल छोटे छोटे पास खेलने की कला नहीं, बल्कि ज्यामिति और गणित का अनुप्रयोग है। खिलाड़ी मैदान पर लगातार त्रिकोणीय संरचनाएं बनाते रहते हैं। किसी भी क्षण गेंद रखने वाले खिलाड़ी के पास कम से कम 2 पासिंग विकल्प मौजूद रहते हैं। इस प्रकार गेंद को छीनना विरोधी टीम के लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। गणितज्ञों ने यह भी पाया है कि त्रिकोणीय संरचना पासिंग नेटवर्क को अधिक स्थिर और प्रभावी बनाती है। यह रणनीति मैदान पर स्थान और कोणों के सर्वोत्तम उपयोग का उदाहरण है। फुटबॉल के जूतों की तकनीक भी विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शुरुआती दौर के भारी चमड़े के जूतों की तुलना में आधुनिक फुटबॉल के जूते अत्यंत हल्के, लचीले और वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए जाते हैं। कार्बन फाइबर, सिंथेटिक पॉलीमर और उन्नत मिश्रित पदार्थों का उपयोग कर ऐसे जूते बनाए जाते हैं जो खिलाड़ी को अधिक गति और बेहतर नियंत्रण प्रदान करें। जूतों के तलवे पर लगे स्टड्स की लंबाई, आकार और विन्यास को मैदान की सतह के अनुसार तैयार किया जाता है। गीली घास, कृत्रिम टर्फ या कठोर जमीन, हर सतह के लिए अलग प्रकार के स्टड विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य घर्षण और पकड़ के बीच आदर्श संतुलन बनाए रखना है, ताकि खिलाड़ी फिसले नहीं और दिशा परिवर्तन के समय अधिकतम बल उत्पन्न कर सके। आधुनिक जूतों में दबाव वितरण और चोटों की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए विशेष कुशनिंग तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है। फुटबॉल में गोलकीपर की भूमिका विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत रोचक है। जब कोई खिलाड़ी लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शॉट मारता है, तब गोलकीपर के पास प्रतिक्रिया देने के लिए अक्सर आधे सेकंड से भी कम समय होता है। इस अल्प अवधि में उसकी आंखें गेंद की दिशा, गति और स्पिन का अनुमान लगाती हैं तथा मस्तिष्क तत्काल निर्णय लेकर शरीर को आवश्यक संकेत भेजता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययनों से पता चला है कि विश्व स्तरीय गोलकीपर केवल गेंद को नहीं देखते, बल्कि शॉट मारने वाले खिलाड़ी के शरीर की मुद्रा, पैर की स्थिति और कूल्हों की दिशा का भी विश्लेषण करते हैं। यही कारण है कि वह कई बार गेंद के पैर से छूटने के पहले ही सही दिशा में छलांग लगा देते हैं। इस प्रकार गोल बचाने की कला केवल अनुभव का परिणाम नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क की अद्भुत प्रसंस्करण क्षमता का भी प्रमाण है। फुटबॉल में प्रौद्योगिकी की भूमिका अब केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि निर्णायक प्रक्रियाओं का भी अभिन्न अंग बन चुकी है। गोल लाइन टेक्नोलॉजी इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। गोल पोस्ट के आसपास स्थापित उच्च गति वाले कैमरे और सेंसर गेंद की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखते हैं। जैसे ही पूरी गेंद गोल

0: रेखा को पार करती है, एक सेकंड के अंश भर में रेफरी की घड़ी पर संकेत पहुंच जाता है। इसी प्रकार वीडियो असिस्टेंट रेफरी प्रणाली कई कैमरों से प्राप्त दृश्यों का विश्लेषण कर विवादास्पद निर्णयों की समीक्षा करती है। इसके पीछे कंप्यूटर विजन, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और उच्च गति डेटा संचार जैसी अत्याधुनिक तकनीकें कार्य करती हैं। विज्ञान ने खेल को अधिक निष्पक्ष बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि इसके उपयोग को लेकर बहस आज भी जारी है, फिर भी यह स्पष्ट है कि आधुनिक फुटबॉल में तकनीक अब केवल सहायक उपकरण नहीं बल्कि खेल की विश्वसनीयता का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। वर्तमान समय में फुटबॉल डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में प्रवेश कर चुका है। खिलाड़ियों की जर्सियों में लगे GPS सेंसर उनकी गति, दूरी, हृदय गति और त्वरण का लगातार रिकॉर्ड रखते हैं। कैमरा आधारित ट्रैकिंग प्रणालियां मैदान पर प्रत्येक खिलाड़ी की स्थिति को प्रति सेकंड अनेक बार रिकॉर्ड करती हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रशिक्षक यह समझते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कब थक रहा है, किस क्षेत्र में अधिक दौड़ रहा है और किस रणनीति से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां विरोधी टीम की रणनीतियों का विश्लेषण कर भविष्यवाणियां भी करने लगी हैं। फुटबॉल के वैज्ञानिक पक्ष का एक और रोचक आयाम उसकी सामाजिक और शैक्षणिक उपयोगिता में दिखाई देती है। आज विश्व के अनेक देशों में फुटबॉल को केवल मनोरंजन या प्रतिस्पर्धा के साधन के रूप में नहीं बल्कि विज्ञान शिक्षा के एक प्रभावी माध्यम के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भौतिकी के शिक्षक मैग्नस प्रभाव, संवेग संरक्षण, ऊर्जा रूपांतरण और प्रक्षेप्य गति जैसे सिद्धांतों को समझाने के लिए फुटबॉल के उदाहरणों का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार गणितज्ञ पासिंग नेटवर्क, संभाव्यता सिद्धांत और डेटा विश्लेषण के अध्ययन में फुटबॉल के आंकड़ों को शामिल करते हैं। खेल विज्ञान की प्रयोगशालाओं में फुटबॉल खिलाड़ियों की गतिविधियों का अध्ययन कर मानव शरीर की कार्यप्रणाली, मांसपेशियों की दक्षता और निर्णय लेने की मानसिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझा रहे हैं। इस दृष्टि से फुटबॉल केवल एक वैश्विक खेल नहीं बल्कि विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के बीच एक सशक्त सेतु भी बन चुका है जो प्रयोगशाला के ज्ञान को मैदान की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ता है। जब अगली बार कोई खिलाड़ी मैदान के बीचों बीच से गेंद को हवा में घुमाता हुआ गोल पोस्ट के ऊपरी कोने में पहुंचा दे तो उसे केवल एक शानदार गोल मानकर तालियां न बजाइए। उस क्षण के भीतर न्यूटन के नियम, मैग्नस इफेक्ट, द्रव गतिकी, ज्यामिति, जैव यांत्रिकी, न्यूरोसाइंस, पदार्थ विज्ञान और डेटा विश्लेषण जैसे अनेक वैज्ञानिक सिद्धांत एक साथ सक्रिय होते हैं। फुटबॉल की वास्तविक सुंदरता इसी में है कि वह विज्ञान को सूत्रों और प्रयोगशालाओं से निकालकर करोड़ों लोगों के सामने जीवंत कर देता है। दर्शकों को जहां जादू दिखाई देता है वहीं वैज्ञानिकों को प्रकृति के नियमों का अद्भुत नृत्य दिखाई देता है। वास्तव में फुटबॉल केवल पैरों से खेले जाने वाला खेल नहीं बल्कि विज्ञान द्वारा संचालित एक रोमांचक और गतिशील संसार है।
1: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप रोनाल्डो, मेसी या हमारे सुनील छेत्री को मैदान पर कोई कमाल करते देखें तो समझ जाइएगा कि पैर तो खिलाड़ी का है लेकिन गाइडेंस अल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन का है। तो आज के विज्ञान जगत में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रवीण को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: विज्ञान जगत कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम शामे अवध। लीजिए इसमें सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल को फिल्म विवाह में।

0: हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं।
1: अच्छा अच्छा, वही जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर हैं।
2: जी जी,
1: हाँ।
0: और हमारी भाभी जी भोपाल की हैं।
1: अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है।
2: आप लीजिए ना।
1: अरे आप यहाँ आइए, चलिए आइए आइए, प्रेम से बात कीजिए।

0: इस गीत के साथ ही शाम अवध कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। लीजिए सुनिए डॉक्टर ललित मोहन जोशी की वार्ता सहकारिता से सह अस्तित्व।
1: सहकारिता तो सबसे पहले कुछ मैं ये चाहूँगा कि इसके बारे में स्पष्ट करूँ कि इसका संदर्भ क्या है। अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो उसका जो कुल उत्पाद होगा वो कम होगा। अगर सब मिलके किसी काम को करेंगे तो समय भी कम लगेगा और उसकी लागत भी कम आएगी और उसका टोटल जो उत्पाद होगा वो अधिक होगा। मुख्यतः अगर संक्षिप्त में कहें कि साथ मिलकर ही हमारा वजूद और विकास संभव है। अकेले इंसान या गांव देश की तरक्की मुश्किल है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए और आवश्यक है। हमने वेदों में भी संगच्छध्वं संवद्धं सुना है और जैसा हम जानते हैं इसका अर्थ हुआ साथ चलो, साथ बोलो। प्राचीन भारत में गांव के फैसले पानी खेती सब मिलजुल कर किया करते थे और इससे क्या होता था कि जो आदमी का अहम है वो ख़त्म हो जाता है और लोगों को एक साथ चलने की बात करते हैं। और वर्तमान प्रधानमंत्री आज के संदर्भ में सबका विकास सबके साथ की बात करते हैं अर्थात सब लोग मिलकर करें। और आपने देखा होगा इसकी भूमिका को और स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री जो भारतवर्ष के हैं वो अभी विभिन्न देशों के दौरे कर रहे हैं और आपको मालूम है कि कोविड के बाद हमारे देश में आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती अगर वो सब सहयोग ना करते एक दूसरे का। इन्होंने फ्री में कितने लोगों को मेडिकल सुविधाएं दी। तो ये सहकारिता एक अद्भुत नमूना है और विभिन्न जगह जाकर कंट्रीज़ में जाकर वो क्या करते हैं कि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं या हमारी जो स्ट्रेंथ है वहाँ की स्ट्रेंथ है उनको पूल करते हैं। तो उससे क्या होगा जो हमारा सह अस्तित्व का बात है और एक

जुटता की है, देश में आपसी सामंजस्य की बात है, लोगों में एक साथ चलने की बात होगी। अब स्पष्ट हो गया कि सहकारिता का मेन सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें। हम अगर सुखी रहेंगे, हम परिवार से स्टार्ट करते हैं। आप परिवार का मुखिया अगर केवल अपने ही हित की बात करे और अपना ही कमाए खाए तो क्या उसका भला होगा? और वो अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, परिवार में जितने लोग हैं वो सबके वेलफेयर की बात करता है, कल्याण की बात सोचता है। इसी प्रकार हर सदस्य जो है वो अपना अपना भूमिका अदा करते हैं तो वो परिवार सुदृढ़ होता है। इसी का उदाहरण हम प्रकृति ले सकते हैं, जो नेचर है अद्भुत उदाहरण है। जो पंच तत्व हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, है ना, ये सब जो भी उत्पाद करते हैं, जैसे सूरज जो गर्मी देता है, क्या वो गरीब अमीर का भेद करता है? नहीं करता। तो गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, जिसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो किसान है, उसको भी बराबर रूप से प्रकाश देता।

जो नेचर है अद्भुत उदाहरण है, जो पंच तत्व हैं क्षिति जल पावक गगन समीर, है ना, ये सब जो भी उत्पाद करते हैं, जैसे सूरज जो गर्मी देता है, क्या वो गरीब अमीर का भेद करता है? नहीं करता। तो गरीबों के लिए भी अमीरों के लिए भी, जिसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जो किसान है उसको भी बराबर रूप से प्रकाश देता है। इसी तरह वायु है, सब ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, पक्षी पशु मनुष्य। और दूसरी तरफ आप मधुमक्खी का उदाहरण सबसे अच्छा है, मधुमक्खी जब आप कोई उस पर पत्थर डालते तो सब मिलकर उस पर टूट पड़ेंगे, या जो शहद भी बनाती हैं सब मिलकर एक जगह बनाती हैं। उसी तरह चींटी को आपने देखा होगा, एक लाइन से जाती हैं, कहीं खाना मिलता है तो वो लेती। तो हमें प्रकृति से भी सीखना है, अस्तित्व बनाए रखने के लिए अगर हमें बढ़ना है तो हमें सहकारिता की मूल सोच को सुदृढ़ करना होगा और बनाना होगा। सहकारिता से व्यक्तित्व का अस्तित्व भी बना रहेगा, आप मानसिक शांति मिलेगी। परिवार में अगर आप इंडिविजुअल हैं, कलह होगा तो अशांति होगी। इसी तरह गांव में, कम्युनिटी में, देश में, है ना। अगर देखिए विदेशों में इस समय आप देख रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक किसी एकाधिकार के लिए युद्ध चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर भारतवर्ष की जो नीति है वो सहकारिता बेस्ड है। हम कहते हैं एक सबका विकास करना है, सबकी जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उनको आपस में बांटना है। तो इससे क्या होता, मानसिक शांति आएगी, देश के लोग खुशी रहेंगे और स्ट्रेस नहीं होगा। इसी तरह से पहचान और समानता मिलती है, हम किसी भी चीज़ को सुदृढ़ करना है उससे हमारी आइडेंटिटी और पहचान बनी रहती है और हमें आदर भी मिलता है। आज जो पद्मश्री है, पद्म भूषण, जो भी सम्मान मिलता है, देखिए एक व्यक्ति जो समाज की सोच रखता है, और भगवद गीता भी इसी चीज़ को कहता है कि आप सबसे पहले अपने लिए तो कर्म करो, लेकिन उससे बाहर की सोच करके, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फले सुकदाचनम, और दूसरे फल की चिंता मत करो। और सही जो कर्मयोगी है, जो कर्म का सिद्धांत है, भगवद गीता में अध्याय 2 और 3 में भगवान ने बहुत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। और कर्मयोगी राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्तमान सरकार है उसने एक अभियान भी चलाया है, जिसके अंतर्गत हम सीनियर ऑफिसर्स को और सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो हम आपस में जो है सबको लेकर चलने की भावना की बात करें। और अकेलेपन से मुक्त, स्ट्रेस कब होता है, जब आप घर में तनाव में होंगे, फैमिली में सामंजस्य नहीं होगा, गांव में आप एक अपना ही लगाएंगे, लोगों की बात नहीं देंगे, तो उससे स्ट्रेस होगा। तो अगर इसीलिए हम स्ट्रेस में भी एक दूसरे के साथ बात शेयर करते हैं और प्रसन्नता लाने की कोशिश करते हैं, समाज का अस्तित्व, सहकारिता से समाज का अस्तित्व भी बना रहेगा। जितने भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं, आपने देखा होगा उनमें सहकारिता शब्द है, सबको साथ लेकर। सबसे बड़ा उदाहरण 1942 में गुजरात का सहकारी समितियां मॉडल जो है अमूल का, आज वहाँ पर उन्होंने डेयरी बनाई और अमूल का जो उत्पादन होता है, मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ गया भी, और उसमें कुरियन साहब ने इनिशिएटिव लिया और आज वो पूरे दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बृहद दुग्ध उत्पादन डेयरी सेक्टर का है, जो कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा उदाहरण है। सामाजिक समरसता और भेदभाव खत्म होती है। हम वहाँ दूध का कलेक्शन है, वो चाहे गरीब हो, चाहे किसी जात का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, वो अपने दूध सरकार कलेक्ट करती है डिफरेंट कलेक्ट सेंटर पर, तो वहाँ पर भेदभाव भी खत्म हो जाता है, हमें नहीं पता किसका दूध है क्या है। इसी तरह से आपदा में जो डिजास्टर होते हैं, आपने देखा होगा वेनेजुएला में भूकंप आया और तुरंत भारत ने वहाँ पर मेडिसिन भेजी और सामान भेजे, जिससे लोगों का जो इस आर्थिक संकट से निबट सके, कई देशों ने मदद की। तो ये सहकारिता की भावना है, और प्रतिस्पर्धा विकास देता है, अगर कंपटीशन है तो डेवलपमेंट देता है, जिसको पूंजीवादी जो देश हैं वो करते हैं, और सहकारिता क्या है, स्थायित्व की लोग ले जाता है, सस्टेनेबिलिटी लाता है, जो यूएनए के प्रोग्राम में भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। आज की ज़रूरत क्या है, अब हम बात करें आज की ज़रूरत क्या। स्टार्टअप आपने देखा होगा, एक बहुत बृहद रूप से इस कार्यक्रम

0: को चलाया गया है, कितने नवयुवकों को रोजगार मिल गया, लोगों ने एक स्टार्टअप शुरू किया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक में हो चाहे किसी इक्विपमेंट का हो, और उसमें कई लोग जुड़े, कई लोगों को रोजगार मिला, उनकी आय बढ़ी और वो सरकार पर अवलंबित न होके उन्होंने लोगों को रोजगार देना शुरू कर दिया। इस तरह से विकास किया, अपना भी किया, देश के विकास के, देश के टोटल आउटपुट में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सहकारिता मॉडल है। पर्यावरण, पर्यावरण की बात करें तो अगर हम एक दूसरे के रिसोर्सेस को यूज करेंगे तो आपके देश के रिसोर्स का दोहन नहीं होगा, संसाधनों का दोहन नहीं होगा। हम बहुत अधिक खनन कर देंगे तो क्या होगा, जमीन अनुपजाऊ होगी, बहुत पेड़ काट देंगे। अगर आप प्रकृति से लेते हैं तो उसको पेड़ काटते हैं तो लगाइए भी, सब मिल के लगाइए, तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा और डेवलपमेंट होगा। अब सोचें हम इससे क्या होता है। देखिए, एक अगर बात करें तो सहकारिता आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था और उन्होंने दांडी मार्च किया, जनता के सहयोग के बिना वो असंभव था, तो देश में स्वतंत्रता आई। श्वेत क्रांति, अभी आपसे हमने बताया 1946 का जो गुजरात का मॉडल है, जब हम किसी के सुख दुख में भाग लेते हैं तो हमें अपनी पहचान भी मिलती है और सभी एक दूसरे के लिए जरूरी का भाव होते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता सहकारिता से सह अस्तित्व। वार्ताकार थे डॉक्टर ललित मोहन जोशी। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें सुनिए गजलें। कलाकार हैं कमाल अहमद खान।

अभी आप कमाल अहमद खां की आवाज़ में सुन रहे थे गज़लें। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति के पर, करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
3: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
4: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से।

सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: तीसरी कसम फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।

0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840

करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम

0: में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 बजे पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global

0: Digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे.
0: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized that chips produced at the Sanand plant will cater to diverse industrial applications and will be exported to global markets, including the United States, Japan and Europe.
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है.
3: Today India's third semiconductor plant is being launched.

0: international debut for India. Vaibhav made his debut at the age of 15 years and 99 days, surpassing the long-standing record held by Sachin Tendulkar, who made his India debut at the age of 16 years and 205 days. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG Semi-Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in Spate. And in men's cricket, India set a target of 191 for host England in second T20 in Manchester, where Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई सामान की बरामदात 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सतह पर पहुंच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है, कई दरिया तोगयानी पर हैं। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी बैन-उल-अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के जदीद तर्ज के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट ओसेट प्लांट का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आलमी टेक कंपनियों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वहां बड़ी तादाद में मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यह कदम भारत के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इनकलाब में अगला मरहला है, जिसकी बदौलत भारत को मोबाइल फोन तैयार करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुल्क का रुतबा पहले ही हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सानंद में सीजी सेमी ओसेट मरकज से न सिर्फ अंदरूनी मुल्क चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे आलमी सतह पर सेमी कंडक्टर वैल्यू चेन निज़ाम में भारत की पोजीशन में इजाफा होगा और तकनीकी खुद किफालत को भी फरोग हासिल होगा। वजीर आजम ने इस एतमाद का इजहार किया कि इस तारीखी प्रोजेक्ट से सानंद सेमी कंडक्टर के एक दरख्शा आलमी मरकज के तौर पर उभरेगा। जनाब मोदी ने इसे विकसित भारत का नक्शराह और मेक इन इंडिया का दूसरा कदम करार दिया। मस्कूरा प्लांट में मुतनव्व अफरादी कुव्वत की सताइश करते हुए वज़ीर आज़म ने कॉम्प्लेक्स को एक मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर्स और पेशावर अफराद आलमी डिजिटल मईशत को तकवीत पहुंचाने की खातिर एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि इस उभरते हुए इको निज़ाम से मसनूई जहानत और नए सिलसिले की टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत के नौजवानों को मजीद आगे बढ़ने के वसी मौके हासिल होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सानंद का प्लांट सालाना 20 करोड़ चिप्स तैयार कर सकेगा। जनाब मोदी ने पैदावार बढ़ाकर सालाना 500 करोड़ चिप्स तैयार करने का मुस्तकबिल का बड़ा निशाना तय करने पर सीजी सेमी को मुबारकबाद दी।
2: सीजी सेमी का ये प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो

0: सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। आज हम इसके कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी।
1: इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि मुल्क में इस साल के आखिर तक 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स काम करने लगेंगे। मजकूरा शोबे की तेज रफ्तार पेशरफ्त को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि सानंद मरकज में भूमि पूजन की तकरीब से लेकर कमर्शियल पैदावार का सिलसिला शुरू होने तक सिर्फ 27 महीने लगे।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: जनाब अश्विनी वैष्णव ने जोर देकर कहा कि सानंद प्लांट में तैयार होने वाले चिप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ सनअती शोबों में किया जाएगा और उन्हें अमेरिका, जापान और यूरोप समेत आलमी मार्केट्स में भी बरामद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में 1,05,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिससे रियासत में बुनियादी ढांचे, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और रोजगार के मौके पैदा करने को बड़ी तकवीत मिलेगी। दिन भर के अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। इसके बाद जनाब मोदी ने बालोतरा जिले में पचपदरा के मकाम पर मुल्क का सबसे जदीद तर्ज का ग्रीन फील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मुल्क के नाम वक्फ किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या मादनियात के लिए एक ऐसा सनअती प्रोसेसिंग प्लांट है जिसे साफ सुथरी कच्ची जमीन पर नए सिरे से बनाया जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरबी एशिया की महाज़राई से 21वीं सदी का तवानाई का सबसे बड़ा बहरान पैदा हो गया था, लेकिन भारत ने बरवक्त फैसलों, मौसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मुहतात बंदोबस्त के जरिए इस चैलेंज पर कामयाबी के साथ उबूर हासिल किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: जनाब मोदी ने कहा कि बहरान के दौरान दुनिया के मुल्कों के साथ भारत के दोस्ताना ताल्लुकात का अहम रोल रहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार ने आलमी सतह पर उथल पुथल के बावजूद खाना पकाने की गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होने दिया।
0: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरीज के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
1: जनाब मोदी ने इस मौके पर तकरीबन 54,000 नौजवानों को तकर्रुरनामे भी सौंपे, जिन्हें राजस्थान सरकार के मुख्तलिफ महकमों में भर्ती किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख को शुरू होगा और 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बताया कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने की सरकार की तजवीज को मंजूरी दे दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब रिजिजू ने कहा कि इस इजलास में कौमी अहमियत के हामिल मामलात पर बामकसद बहस मुबासे और फैसलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत की नुमाया तरक्की को ये कहते हुए उजागर किया कि मुल्क की दिफाई बरामदात रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई हैं। नई दिल्ली में मीडिया के एक निजी इदारे की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि माली बरस 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से जबरदस्त इजाफा तकरीबन

0: 57 गुना है और इससे मेक इन इंडिया दिफाई प्लेटफॉर्म में बढ़ते आलमी एतमाद की अक्कासी होती है।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: वजीर दिफा ने कहा कि माली बरस 2025-26 में सालाना दिफाई पैदावार भी अब तक की सबसे ज्यादा बुलंदी 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक पहुंच गई, जो 2014-15 की सतह से तकरीबन 3 गुना है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की वसीतर हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब सिंह ने मेक इन इंडिया पहल के तहत मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चरिंग की तौसी, मोटर गाड़ियों के बरामदात में इजाफे, अंदरूने मुल्क तैयार करदा रेल इंजन और डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती को उजागर किया। गुजश्ता दहाई में मुल्क की तरक्की के बारे में बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत ने किल्लत का इजाला किया, मौके बढ़ाए और वर्क कल्चर में यकसर तब्दीली पैदा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की पॉलिसी के जरिए विकसित भारत की मजबूत बुनियाद कायम कर रही है। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की इत्तलात सामने आने पर टेलीग्राम ऐप को नोटिस जारी किया है। सरकारी जराये के मुताबिक सरकार ने टेलीग्राम को हिदायत दी है कि चोरी छुपे हासिल की गई फिल्मों और ओवर द टॉप ओटीटी प्रोग्रामों के खिलाफ बिला ताखीर इकदामात किए जाएं। जराये ने मजीद बताया कि मस्कूरा प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करे। इंडोनेशिया के सदर की दावत पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का ये चौथा और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसूल दिए जाने के बाद पहला दौरा होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी इंडोनेशिया के सदर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे, जिसमें कलीदी शराकतदारी के तहत अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। जकार्ता में वजीर आजम का वहां आबाद भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तम से खिताब का भी प्रोग्राम है। इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी वजीर आजम के दौरे की मुंतजर है। जकार्ता में इंडिया क्लब के सदर सिद्धार्थ तपाड़िया ने आकाशवाणी से बात करते हुए भारत और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत दोस्ती को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस आला सतही रबते से ये बात नुमाया होती है कि दोनों ममालिक एक दूसरे को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने इस बात पर पुरउम्मीदी का इजहार किया कि दोनों ममालिक बुनियादी ढांचे, तिजारत, दिफा, ज़राअत, कुदरती वसाइल और दीगर शोबों में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमरीका के 250वें यौम आज़ादी पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और वहां के अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात कलीदी साझेदारी से आगे बढ़कर हैं, जो जमहूरियत, कानून की अमलदारी और अपने अवाम की लामहदूद सलाहियत के मुश्तरका एतमाद पर मबनी है। सनअती माहरीन ने कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम रातों रात मुतारिफ नहीं किया गया, बल्कि ये एक सोचा समझा मरहलेवार और साइंस पर मबनी अमल है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की साबिक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम 2018 में सिलसिलेवार तबादला ख्याल और मुतालिका फरीकों के सलाह मशवरे के लिए लोगों के सामने रखा गया। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे रियासत भर में मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। मुंबई और उसके मजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुंबई, थाने और पालघर में स्कूलों को बंद करना पड़ा। पालघर जिले के हिस्सों से सैलाब किसी सूरत हाल की खबर है, जिससे सड़क और रेल ट्रैफिक मुतासर हुआ है। रायगढ़ में अहम दरियाओं में पानी की सतह बढ़ गई है। मुसलसल बारिश से कोल्हापुर में पंचगंगा और दीगर दरियाओं में भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की 6 रोजा सरकारी आखिरी रसूमात का सिलसिला आज से तेहरान में शुरू हो गया। इसमें हजारों सोगवार शिरकत कर रहे हैं और ईरान के मरहूम रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में दूसरे T20 बैन अलावा क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड की जीत के लिए 191 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक इंग्लैंड ने 5 ओवर्स में 3 विकेट पर 52 रन बना लिए थे। इससे कबल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन बनाए। इससे पहले वैभव सूर्यवंश

0: भारत के लिए अपना पहला बैन अलावामी मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए। वैभव ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में अपना पहला मैच खेला। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सानंद में सीजी सेमी के आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट प्लांट का इफ्तिताह किया ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने बरवक्त फैसलों, मुअसर सिफारतकारी और कौमी वसाइल के मोहतात बंदोबस्त के जरिए मगरबी एशिया बहरान पर कामयाबी के साथ अबूर हासिल किया। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 20 तारीख से लेकर 13 अगस्त तक होगा। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासर हुई है। और मर्दों के क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत ने दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड के सामने 191 रन का निशाना रखा। वैभव सूर्यवंशी बैन अलावा में क्रिकेट में कदम रखने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार, सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना संवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर सायास ही याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
4: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट सानुम वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है, तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट, भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं।

0: कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था, ऐसा दूत जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख ना जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ, हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहां से जाकर भी यहां से अलग नहीं होगे। यहां की वायु, यहां के मेघ और यहां के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था।

0: जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।
3: मेघ, मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही, पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
4: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है, हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद, कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
5: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके

0: साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
0: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थीं जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसके जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी ही अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी, आप जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें भी आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज खिलाड़ी नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है जिसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हू हू करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उनपे बुंदिया चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है, उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में है और बड़े कड़क आदमी है, तो इससे भी वो मांगती है कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इससे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के कशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें, कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहां बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी

0: चिड़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशरफी देने को तैयार थे, लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो क्या लिखते हैं कि मैं कहीं से, मुझे दो आने कहीं पड़े थे या मिल गए, और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से दो आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली। ये सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ। वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन यह है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक वानगी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन यह है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं, बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे, उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।

को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को सुनने में। तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार सृष्टि सारी वह डावा डोल हुई, प्रलय कारिणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभि बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है, निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी, सुरसर स्नाता राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर से बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, श्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, यह वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्मत्त यूनान जानता था न मगध के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को

0: भारत के उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने। वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था। आज खड़ा है वह विपन्न आहत्सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
1: दिनकर राष्ट्र के हितकर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज रात प्रस्तुत है ख्याल गायन। कलाकार हैं पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। किराना घराना के दिग्गज कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद वाहिद खां का हाथ थाम कर जिस सांगीतिक विरासत की शुरुआत हुई थी उसने युगों का सफर तय किया और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खां जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
1: टुनाइट इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी प्रेजेंट ख्याल रिसाइटल बाय Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan, the doyens of Kirana Gharana, has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite

0: कलरफुल एंड पॉपुलर।
1: आज रात पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा।
0: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha.
1: Khayal Gayan ke is karyakram ki shuruaat Pandit Arnob Chattopadhyay raag Yaman ke saath kare.

0: ख्याल गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal followed by Drut Ek Tal.

0: अब पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। खयाल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्यलय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज खयाल रिसाइटल विथ राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: ख्याल गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाहा। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए

0: डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated

के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी इस सभा के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:50 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।